0: बेबी को बेस पसंद है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रावण मास अपने पूरे उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। भगवान शिव की आप उपासना कर रहे हैं। भगवान मृत्युंजय हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में महामृत्युंजय कह देते हैं। और महामृत्युंजय कैसे हैं? शिवपुराण में महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए कहा गया कि हस्ताम भोजयुगस्तकुंभयुगलाद उद्धृत्य तो यम सिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधतम् स्वांके सकुं भौकरौ आक्षश्रृंग मृगहस्तमम्बुजगतम् मूर्धस्त्रचन्द्रस्रवत् पीयूषार्दतनुं भजे स गिरिजम् त्र्यक्षम च मृत्युंजयम्। जो अपने दो करकमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकाल करके उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तिष्क को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए और उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका पूरा का पूरा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान महामृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज राजनंदिनी उमा भी विराजमान हैं, हम उनका निरंतर चिंतन करते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव महामृत्युंजय शिव की आराधना करनी चाहिए। श्रोताओं, भगवान शिव और आपका कल्याण करे। श्रावण मास चल रहा है।

0: हे भगवान, हे रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप और भव देवताओं को नमस्कार है। सर्वाय क्षित रूपाय नंदीश्वर भये नमः। ईशाय बसवे तुभ्यं स नमः। स्पर्शमयात्मने ही नंदी और सुरभि कामधेनु, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वीधारी सर्व को नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान शिव आपका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। सुभाषित त्रिवेणी, सत्य की महिमा, द ग्लोरी ऑफ ट्रूथ। नायम लोकस्तिम न परो न च पूर्वां च तारयेत् कूतम एवं जनिष्ठयास्तु मृषा वाद्यम परायते। जो झूठ बोलने वाला है उस मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही, वह अपने पूर्व जनों की भी नहीं तार सकता, फिर भविष्य में होने वाली संतति का उद्धार तो कर ही कैसे सकता है। न ज्ञानतये दानम नित्यमास्तम यति ही यथा सत्यम परम लोके तेह्यम पुरुषार्थलभम्। पुरुष श्रेष्ठ परलोक में सत्य जिस प्रकार जीवों का उद्धार करता है, उसी प्रकार यज्ञ, वेदाध्ययन, दान और नियत भी नहीं तार सकते हैं। तापसी याति चिनर्तिति चरित्यन्ति यच्चतपः शते शतवस्त्रं ते सत्यांतं विषयते। लोगों ने अब तक जितनी तपस्या की है और भविष्य में भी जितने करेंगे, उन सब को 100 गुना या 1,00,000 गुना करके एकत्र किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध होता। सत्यमेकांक्षम ब्रह्मा सत्यमेकांक्षम तप सत्यमेकांशम यज्ञम सत्यमेकांशम श्रुत। सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही एकमात्र

0: अक्षय तप है। सत्य ही एकमात्र अविनाशी यज्ञ है। सत्य ही एकमात्र नाश रहित सनातन वेद है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राम दूताय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। आज फ्राइडे 28 अगस्त, हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आज के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

त्रिपुरार दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाला है। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही की वीर्य से उत्पन्न है। तज

तारा, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु भगवान शिव को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगण लगे कर नमक खीस, यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु रक्षा की न मुनीश। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तीन कीन्हा, सकल सुरन विविध फलु दीन्हा। यह सब समाचार शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। भेजग विदित दक्ष गति सोई जसी कछु शाम।

कहानी। तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में इसका वर्णन किया। आगे की कथा हम इसको यहीं पर आज पूर्ण विराम देते हैं। आगे की कथा में सती माता की मृत्यु के पश्चात तब वही पार्वती माता के रूप में उत्पन्न होते हैं। आज इसको पूर्ण विराम देता हूं। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।

प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। श्रावण मास के दौरान आपने बहुत से कार्यक्रमों को सुना, स्थानीय पंडित पंडिताओं द्वारा और भारत से आए हुए हमारे विशेष विद्वानों द्वारा भी। आज हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। आपने ईश्वर की प्रार्थना, उपासना और स्तुति में यह महीना बिताया होगा। हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस श्लोक में हमने ईश्वर को माता, पिता, बंधु, सखा और देव कहकर संबोधन किया। श्रोताओ, इस श्लोक का आधार ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 98वें सूक्त का 11वां मंत्र कहता है, त्वम ही न पिता वसु त्वम माता शतक्रतु बभूविथ अधाते सुम्न मीमहे। इस ऋग्वेद की ऋचा में ईश्वर को माता पिता दोनों शब्दों से पुकारा गया। माता कहते किसे हैं? माता ने हमें जन्म दिया, जिस तरह परमात्मा ने सबको जन्म दिया है, वो परम माता है। हमारी भौतिक माता, जन्म देने वाली माता, हमें उत्तम उत्तम शिक्षाएं प्रदान करके हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। उनकी शिक्षाओं के कारण ही हम सुखी होते हैं। इसी प्रकार माता परमेश्वर ने हमको रचकर, जान देकर, वेद जान के माध्यम से हमारा निर्माण किया, हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाया। क्योंकि कहते हैं, जाने न बुद्धि की शुद्धता होती है, बुद्धिर जाने न शुद्धति। यदि जान न होता तो बुद्धि शुद्ध नहीं होती और मनुष्य सीधे रास्ते पर चल नहीं सकता। इसलिए हमने परमात्मा को

इस मंत्र में माता शब्द से पुकारा। परमेश्वर को माता के अतिरिक्त पिता भी कहा गया। दयालु परमात्मा हमारे पिता भी हैं। जिस तरह हमारे पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करके हमें सुखी बनाया, वैसे ही परमपिता परमात्मा हमारे पालक हैं। हवा देकर हमें सांस देते हैं, प्राण देते हैं, सूरज का प्रकाश देकर हमारी आँखों को ज्योति देते हैं, आकाश के द्वारा हमारे कानों को सुनने की शक्ति देते हैं, जल देकर हमारी प्यास बुझाते हैं, तरह तरह के अन्न जल से हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी भूख शांत होती है, हमारी प्यास मिटती है, सब प्रकार का रस देकर हमारे शरीर का अंग अंग परमात्मा बनाते हैं। इस मंत्र में उन्हें पिता कहा गया। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक रतो बुध। फिर कहा गया वसो, वही परमात्मा हमको बसाते हैं। यह संसार दिया है, एक बहुत बड़ा घर है हमारे लिए। इस घर में परमात्मा ने हमको बसाया हुआ है। ऋग्वेद कह रहा है शतक रतु, श्रेष्ठ बुद्धि से तरह तरह के कर्म करने वाले हम बने। ईश्वर से यह प्रार्थना करें, अधाते सुम्न मि महे, अर्थात हे परमेश्वर, हम आपसे सुख की कामना करते हैं, सुख दीजिए। इस प्रकार हमने परमात्मा को इस मंत्र में संबोधित किया। धन्यवाद।

पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेनसिच्यति उतो तद्यद्य विद्याम यतस्तत्परिशिच्यति। ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा द्वारा प्रस्तुत वेद मास अर्थात श्रावण मास के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम में मैं आचार्य बितुला सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं श्रवण करने के लिए धन्यवाद। यह मंत्र जो मैंने अभी प्रस्तुत किया उसका भाव इस प्रकार से है, यह संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी परब्रह्म की उपासना हम सब लोग करें। श्रोताओं हम सब लोग का अर्थ होता है अर्थात हम सब लोग सनातनी प्रसिद्ध हैं। सनातन वैदिक धर्म, सनातन का अर्थ होता है जो कभी पुराना नहीं होता, वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान पूर्वक, और धर्म का अर्थ होता है शरीर और आत्मा की उन्नति करना। अर्थात सनातन जो कभी पुराना नहीं होता तो है वेद मंत्र, वेद मंत्र कभी पुराना नहीं होता तो वेद मंत्रों से ज्ञान पूर्वक शरीर और आत्मा की उन्नति करना सनातन वैदिक धर्म कहता है। पूरे एक मास हम सभी लोगों ने वेद मंत्र का श्रवण किया, हमें पूर्ण आशा है विश्वास के साथ कि आप जो गहलोत राजपूत महासभा का प्रयास रहा आपकी सेवा में वेद मंत्रों से आपके जीवन के उत्थान के लिए आप लोगों ने जिसे ध्यानपूर्वक श्रवण किया उसी प्रकार से अपने जीवन में उस भाव को अर्थात मंत्र वेद मंत्र के आदेश को आप उतारेंगे, अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देंगे, इस आशा विश्वास के साथ सदैव गहलोत राजपूत महासभा आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी, जिससे कि आप अपने जीवन को सरलतापूर्वक वेद के अनुसार आगे ले चलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, वेद का यह आदेश है जो आप प्रतिदिन अपने पांच महायज्ञ को न छोड़ें अर्थात संध्या करना, अग्निहोत्र करना, माता पिता की सेवा करना, अन्य जीव जंतु की रक्षा करना और विद्वानों का सत्कार करना, यह वेद के अनुसार जीवन है।

जो हमें कर्मकांड में आ जाता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग इसको अपने जीवन में स्थान देते चलें। और भूलना नहीं, 16 संस्कार भी हमारा जो है जीवन के उत्थान को जो है भली भांति आगे ले चलता है, इसको भी अपनाएं। इस पूरे श्रावण मास के अंतर्गत हमारा यही प्रयास रहा श्रोताओं कि आपके जीवन वेदमय हो, आपके घर में ओम का ध्वज हो और यज को आप कभी ना छोड़ें, यज को अपनाए रखें। यज ही वह माध्यम है जो सदियों सदियों से ये होता रहा है। हमने जाना सत्ययुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग में भी हम कर रहे हैं। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कार्यक्रम को अपनाया, श्रवण किया। आशा है पूर्ण विश्वास के साथ भविष्य में आपका साथ रहेगा। ओम शांति शांति शांति।

0: हृदयं शोकं तन्ते निर्वापयामसि।
1: इस सब को पवित्र करने वाले परमेश्वर, हमारे हृदय से ईर्ष्या रूपी मैल को दूर कीजिए। ईर्ष्या रूपी दुर्भावना हमारे मन में स्थान न ले। ईर्ष्या रूपी विकार भयंकर अग्नि के समान जलाने का कार्य करता है। ईर्ष्या रूपी दुर्भावना हृदय में शोक, मोह, लोभ और शत्रुता उत्पन्न करती है। हे ईश्वर, ऐसी ईर्ष्या रूपी दुर्भावना से हमें दूर रखें। आपकी कृपा से समस्त बाधाएं दूर हो।
0: ओम या ओषधी पूर्वा जाता देवेभ्यः स्त्रियुगं पुरा मनेनु बभ्रूणाम् अहंशतम धामानि सप्त च।
1: इस संसार में स्वास्थ्य बढ़ाने वाली औषधियाँ जल, थल, वन एवं पर्वतों में पहले से ही विद्यमान हैं। मनुष्यों को जानना चाहिए कि अलग अलग स्थानों में जो औषधियाँ होती हैं वे सब जीवों के कल्याण के लिए ही हैं। सोमलता, गिलोय आदि औषधियाँ धरती पर सुरक्षित रहती हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। अतः परिपक्व औषधियों को वैद्यक शास्त्र के अनुसार अनुकूल विधान से सेवन करें। जैसा वैद्य बतावे वैसा ही प्रयोग करें। इस प्रकार सेवन की गई औषधियाँ शरीर के सब अंगों में व्याप्त होके शरीर के रोगों एवं दोषों को छुड़ाकर शरीर को बलवान बनाती हैं और सुखों को शीघ्र विस्तार करती हैं।

सूर्य की तेजोमय किरणें समुद्र एवं नदियों से जल खींचती हैं। वह जल वाष्प एवं बादल बनकर संसार के लिए हितकारक सिद्ध होता है। बादल जल में परिवर्तित होकर अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करके सबको सुख देता है। गौ आदि कल्याणकारी पशु जल द्वारा उत्पन्न पदार्थों से सुखी होकर सबको सुखी करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे के सहायक और परोपकारी होना चाहिए।

0: सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। शुक्रवार 28 अगस्त के पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। राखी के धागे में बंधा है प्रेम, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। आज देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बदलते दौर में ये पर्व सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने तक सीमित नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान, सपनों और अधिकारों की रक्षा का संदेश भी दे रहा है। मॉरिशस में रविवार 30 अगस्त रात 10 बजे तक ऊंची समुद्री लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के दौरान बादल घिराएंगे और रुक रुक कर बारिश होगी, खासकर टापू के दक्षिणी हिस्सों और सेंट्रल प्रांत वाले इलाकों में, और ऊंचे जुआर उठने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण पश्चिम की ओर से एक ठंड और जोरदार एंटीसाइक्लोन मास्कारनीस टापुओं के करीब आ रहा है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच सकती है। पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों में समुद्र का पानी निचले क्षेत्रों में घुसने व बाढ़ के उतरने की भी आशंका है। आपको हम याद दिला देते हैं कि आज शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये खगोलीय घटना मॉरिशस से तथा रोड्रिग सैन ब्रांडो और अगालिगा से भी दिखाई देगा। आज सुबह 5:22 से शुरू होकर 11:04 तक चलेगी ये आंशिक चंद्रग्रहण मॉरिशस में दिखाई देगा। पुएंटिसनी में पब्लिक तट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। 4 नए साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं और सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने वाली संरचनाएं हटाने के लिए निवासियों को 7 दिन का नोटिस दिया गया है। मॉरिशस में 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फ्रांस के राजदूत फ्रेडरिक बोंटेम अपने पद से विदा हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी अलेक्सिस लुआई सितंबर के मध्य में मॉरिशस पहुंचेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। मलागासी कारोबारी मामी गवातोमांग की जमानत याचिका पर कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में सुनवाई जारी रही। बचाव पक्ष ने 307 दिनों से हिरासत में चल रही गवातोमांग की अंतरिम रिहाई के पक्ष में दलीलें दी, जबकि FCC के कार्यवाहक मुख्य जांच अधिकारी ने फरार होने का जोखिम अधिक बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद 910 लोग अब भी लापता हैं और संपर्क से बाहर हैं, जबकि 258 शव बरामद किए जा चुके हैं। राहत और बचाव अभियान के बीच बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 होने की खबर है और नए सिरे से बाढ़ आने की आशंका भी बनी हुई है। इसके साथ ये पहला फ्लैश समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। मौसम का हाल मॉरिशस और रोड्रिग्स तथा सैन ब्रांडो के लिए आज शुक्रवार 28 अगस्त 2026

हिस सको। सुबह 4 बजे से जोरदार हवाओं और ऊंचे जुआड़ उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो रविवार 10 अगस्त रात 10 बजे तक जारी रहेगी। दक्षिण पश्चिम की ओर से एक ठंड और जोरदार एंटीसाइक्लोन मास्कारनीस के टापुओं के करीब आ रहा है। हवा दक्षिण पूर्व से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा और दिन के दौरान धीरे धीरे बादल घिराएंगे और रहकर बारिश होगी। विशेषकर दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सुबह के समय हवा बहेगी और धीरे धीरे जोर पकड़ती जाएगी। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। आपको हम याद दिला देते हैं कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट महसूस की जाएगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। जरूरी जानकारी, जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे उड़कर आने वाले मलबे से बेहद सावधान रहें, ऊंची इमारतों और अन्य ऊंचे ढांचों पर जाने या वहां किसी भी तरह की गतिविधि से बचने की सलाह दी गई है। क्रॉसविंड यानी आड़ी दिशा से चलने वाली तेज हवाओं के दौरान सड़कों पर वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली ऊर्जा से भरपूर ऊंची समुद्री लहरें मास्कारनीस टापू समूह की ओर बढ़ रही हैं और समुद्र की स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। प्रभावितियों से आगे समुद्र लगभग 3 मीटर ऊंची लहरों के साथ उग्र रहेगा। सुबह समुद्र की स्थिति और बिगड़कर बहुत उग्र हो सकती है, जबकि लहरों की ऊंचाई 4 से 6 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। इन ऊंची लहरों के कारण खासकर ज्वार के समय समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। आज आपको ये भी बता देते हैं कि मछुआरों, लेजर क्राफ्ट संचालकों और आम जनता को समुद्र में न जाने की कड़ी सलाह दी गई है। साथ ही ऊंचे ज्वार के दौरान इन तटीय इलाकों के समुद्र तटों पर जाने से भी बचने को कहा गया है। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहतरम मोहतशम सामईन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से पूरी एमबीसी टीम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी समागतों की नज़र है उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर। आपका मेज़बान निसार अख्तर दिले बेकरा से आपको खुश आमदीद कहता है। सामईन, फ़िलहाल दुनिया का गोशा गोशा, गलियां, कूचे, गांव, शहर सब एक ही मुसर्रत में डूबे हुए हैं। हर जबान पर मुबारकबाद है, हर दिल में शादमानी है, हर महफिल में चरागा है। और क्यों ना हो, हम उस अजीम हस्ती की विलादत बासादत का जश्न मना रहे हैं जिनके लिए ज़मीन सजाई गई, आसमान सवारा गया, जिनकी आमद ने जुल्मतों को नूर में बदल दिया, जिन्होंने इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखाया, टूटे हुए दिलों को सहारा दिया, मोहब्बत रहमत का ऐसा पैगाम अता फरमाया जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशगले राह है। वो रहमत आलमीन है, वो मोहसिन इंसानियत है, वो ताजदार मदीना करार कल्बो सीना सरवर कौन मकाम खातमुन्नबीन जनाब मुहम्मद।

मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हर लम्हा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से महकेगा, क्योंकि ये महफिल उनके ज़िक्र की है जिनका ज़िक्र खुद अल्लाह करता है। आइए सामईन, इन बाबरकत लम्हात का बाकायदा आगाज़ कुरान

पहले कायनात में एक फूल खिला था जिसकी पाकीजा खुशबू जमाने में फैली। उस गुल की खुशबू सदियां गुजर जाने के बावजूद कम नहीं बल्कि तेज से तेजतर होती चली आ रही है और इंशाअल्लाह ज़वजल ता कयामत होती रहेगी। वो गुले बेमिसाल और कोई नहीं बल्कि रहमतल आलमीन सैयदुल मुरसलीन आकाए दो जहां दिल बरे जाना सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, फिलहाल हम जश्न-ए-ईदे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। ये सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि शुक्र का भी दिन है। हम सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना करारे कल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फख्र करते हैं, जिनके अखलाक ने दुश्मनों को दोस्त बनाया, जिनकी रहमत ने यतीमों को माँ की मोहब्बत दी और जिनका नूर आज तक दिलों को मुनव्वर करता है। सामईन, आइए अब जामा मस्जिद गुडलैंड्स के खतीब व इमाम मौलाना नईम नूरी नजमी दामत बरकातहु मालिया के खताब से मुस्तफीज होने की सआदत हासिल करें। इंतहाई तवज्जो के साथ समात फरमा।

समझते रहोगे, लेकिन एक बेअदबी की वजह से अल्लाह सुबहानहु व ताला तुम्हारे सारे आमाल को ख़त्म कर देगा, सारे आमाल ख़त्म हो जाएंगे। अगर नबी की आवाज़ पर आवाज़ को बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। आप देखें ज़रा, निशानियों को मिटाने वालों ने मिटाने की लाख कोशिश की, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन खुदा की कसम आज भी सुनहरी जालियों पर ये आयत आज भी लिखी हुई है, आज भी ये आयत लिखी हुई है। हैरत होती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, तो अब इसका क्या मतलब है कि नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, ला तरफ़ अस्वातकुम, अब इसका क्या मतलब है? तो जवाब मिलेगा, जिस तरह हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में अदब ज़रूरी था, आज बादे विसाल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ज़रूरी है। और दीन है क्या, दीन है क्या, इसको समझो। तो फरमाया गया, अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन कंप्लीट अदब का नाम है। और हैरत उस वक्त भी होती है अगर कोई शख्स किसी बड़े इंसान को लेटर लिखे, कोई प्रोफेसर है, अगर उसे लेटर लिखा जाए तो लेटर के शुरू में ही हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड, यानी आप देखें जिसको दुनिया के लोगों ने ओहदा दिया उसका हम अदब कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड। और जो अल्लाह सुबहानहु व ताला का महबूब है उसका हम अदब नहीं करते, उसका अदब हम नहीं कर पाते। ये हमारा दीन है जो हमें हर चीज़ का अदब सिखाता है, माँ का अदब, बाप का अदब, उस्ताद का अदब, बड़ों का अदब, हर किसी का अदब सिखाता है। अगर कुरान का मुताला करें तो सबसे ज़्यादा अदब अल्लाह सुबहानहु व ताला ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया है। मैं आपको बताऊँ, एक सहाबी रसूल हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला, इनकी आवाज़ थोड़ी बुलंद थी और कुदरती तौर पर इनकी आवाज़ बुलंद थी, लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो फिर उसके बाद से अपने आप को आपने कमरे में बंद कर लिया, बाहर नहीं निकलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या बात है, साबित बिन कैस नज़र नहीं आते? सहाबा ने तलाश किया, गए मुलाकात की तो देखा कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। पूछा क्या बात है, तो साबित बिन कैस कहते हैं मैं तो जहन्नमी हो गया। क्यों? इसलिए कि ये आयत मुबारक नाजिल हुई है कि नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, और मेरी आवाज़ तो बहुत बुलंद है, तो मैं तो जहन्नमी हो गया। सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साबित बिन कैस के बारे में बताया कि वो तो ऐसा कहते हैं। अल्लाह अकबर, क़ुरबान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका फरमा दे, इन्नका लस्त मिन अहलिन नार वलाकिन्नका मिन अहलिल जन्ना। ए साबित बिन कैस, तू जहन्नमियों में से नहीं है, तू जन्नतियों में से है। हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, आवाज़ कुदरती तौर पर बुलंद ही थी, लेकिन अब जब भी हुजूर की बारगाह में बात करते हैं तो आवाज़ बहुत धीमी आवाज़ में बात करते, आवाज़ बुलंद नहीं होती थी, क्योंकि इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद कभी उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया। इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद आप देखें, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते तो ऐसे बात करते जैसे कान में बात करते हैं, और बाज़ सहाबा तो मुँह में पत्थर रख लेते कि कहीं हमारी आवाज़ बुलंद ना हो जाए। और क़ुरान मुक़द्दस में फरमाया, जिसने आवाज़ पस्त की, इन्नल्लज़ीना यगुद्दून अस्वातहुम, यानी कि जिसने हुजूर का अदब किया कि आवाज़ अपनी पस्त रखी, इन्नल्लज़ीना यगुद्दून अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना नमतहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़्वा, तो ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तकबे के लिए चुन लिया है, यानी ये वो दिल हैं कि जिसमें तकवा होगा, जो अपनी आवाज़ को पस्त रख

0: रखते हैं, हुजूर की बारगाह का अदब करते हैं। और तकवा क्या है? तकवा यानी अल्लाह से डरना है, यही तकवा है। तो अब जिसके दिल में हुजूर का अदब होगा उसी को ये तकवा हासिल होगा, यानी वो हुजूर के अदब करेगा और हुजूर की बारगाह में कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए वो अल्लाह से डरेगा, उसको ये तकवा हासिल होगा। ज़रूरी है कि हम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब करें। अदब सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। अदब से इंसान बड़ी कामयाबियां हासिल कर लेता है। और किसी ने कहा है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। जो अदब वाला होता है वही कामयाब होता है, और जो बे अदब होता है वो कभी कामयाब नहीं होता। और फिर जो हुजूर का अदब करे, जो हुजूर का अदब करेगा वो कभी अपने माँ बाप की बेअदबी नहीं करेगा। जो हुजूर का अदब करने वाला होगा इंशाअल्लाह वो वालिदैन का भी बाअदब होगा। जो हुजूर का अदब करने वाला होगा वो उलमा का भी बाअदब होगा। जो हुजूर का अदब करने वाला होगा वो औलिया अल्लाह का भी बाअदब होगा। और जिसने हुजूर का अदब नहीं किया तो फिर वो वालिदैन का भी अदब नहीं करेगा, वो ना किसी आलिम का अदब करेगा और ना किसी वली अल्लाह का अदब करेगा। तो हुजूर का अदब सबसे ज़रूरी है। सामईने इकराम, अपने बच्चों को हुजूर का अदब सिखाएं कि अल्लाह सुबहानहु व ताला ने हमें क़ुरान मजीद में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया, कि हमें आवाज़ को बुलंद करने से मना फरमाया, तो फिर दूसरे और कलिमात हम किस तरीके से हुजूर के बारे में बोल सकते हैं, कितना अदब हुजूर का हमें करना चाहिए। अल्लाह सुबहानहु व ताला हमें और आपको आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूब अदब करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। और अदब के साथ जब आप रब की इबादत करेंगे, हुजूर की अदब के साथ जब आप अल्लाह सुबहानहु व ताला की इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होगी। अल्लाह सुबहानहु व ताला हमें और आप सबको अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: बे करे दिलरुबा बनकर आया, रूहे अर्ज़ो समा बनकर आया। बे करे दिलरुबा बनकर आया, रूहे अर्ज़ो समा बनकर आया। सब रसूल खुदा बनकर आए, वो हबीब खुदा बनकर आया। सामईन, उर्दू मजलिस सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने समात फरमाया मौलाना नईम नूरी नजमी दामत बरकातुह मालिया का एक खताब, जो जामा मस्जिद गुडलैंड्स के खतीब व इमाम हैं। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को हमारे लिए बायस खैर व बरकत बनाए। यकीनन आपके ये कीमती कलमात हमारे लिए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत पैगाम है। आइए सामईन इस बज़्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाते हुए ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलायजा फरमाइए।

मोहतरम सामईन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत महज एक बच्चे की पैदाइश न थी। ये वो वाकया था जिसने आलम वजूद को असल पहचान दी। वो आवाज़ जो मक्के की खामोश फ़जाओं में गूंजी, वहीं जो बाद में पूरी दुनिया का तराना हयात बन गई। इस महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश हमें ये दर्स देता है कि अगर ज़िंदगी को गुलजार बनाना है तो उस गुलाब के रास्ते पर चलना होगा जिसकी खुशबू आज भी दुनिया के अंधेरों में रोशनी फैला रही है।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमें अपने बच्चों के दिलों में भी यौमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, मोहब्बत और अजमत पैदा करनी चाहिए। अगर बच्चों के सामने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान करेंगे तो बच्चों में

में विलादत की अहमियत का एहसास पैदा होगा। उन्हें नातखानी से मोहब्बत होगी, तिलावत से मोहब्बत होगी। इस तरह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही वो खुशियां मनाएंगे और ये अमल बच्चों की आदत का एक हिस्सा बन जाएगा। सामईन, अल्लाह तबारक व ताला हमारे बच्चों के दिलों में सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

क्या जमीन क्या आसमान, हर सिमट छाया नूर है। सामईन कराम, वो मकान बड़ी बरकतों का खजीना है जहां दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। उस मिट्टी की क्या बात है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पाकीजा जिस्म वाले खैरुल अनाम की जाय विलादत होने का शर्फ बख्शा। वो मुबारक मकान हर साल माहे रबीउल अव्वल को पीर के दिन खोला जाता है। लोग उस मुकद्दस मकाम पर बरकतें लेने के लिए दाखिल होते हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हाजिर होकर जिक्र व अज़कार करते और मीलाद शरीफ की महाफिल सजाते हैं।

ए जमी तुझे क्या खबर हम फकीरों को क्या मिल गया। ए जमी तुझे क्या खबर हम फकीरों को क्या मिल गया। दौलते दो जहां मिल गई दामने मुस्तफ़ा मिल गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हर खूबसूरत सफ़र की तरह आज की ये नूरानी महफिल भी अपने अख्तिताम को पहुंच रही है, मगर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती। ये खुशबू दिलों में रहती है, रूहों में बसती है और ज़िंदगी के हर लम्हे को रोशन करती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें मुहब्बत मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, निस्बत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, अखलाक मुस्तफ़ा, ग़ुलामी मुस्तफ़ा, याद मुस्तफ़ा और शफ़ागत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इसी खूबसूरत दुआ के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। अगले जुम्मे को फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: आवो अम्मारी साथी।

प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है कि जिस रिश्ते में मिठास हो, जिस रिश्ते में मधुरता हो, वही रिश्ता सच्चा कहलाता है। बिना कोई भेदभाव, बिना कोई ईर्ष्या और बिना कोई लाभ से जो भी रिश्ता निभाता है, वही सच्चा रिश्ता कहलाता है। आइए, आप सभी को रक्षाबंधन की मंगल कामनाएं। इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना से।

श्रोताओं, रिश्तों की इस सुंदर संसार में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नाम का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ही एक पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का रिश्ता, और इसे प्रेम, विश्वास तथा रक्षा के संकल्प का पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल कलाई पर बांधा जाने वाला एक धागा नहीं है, यह उस भावना का प्रतीक है जो कहती है तुम मेरे अपने हो, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है और तुम्हारी रक्षा का संकल्प मेरे हृदय में है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक अत्यंत भावपूर्ण कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी

से संबंधित है। मान्यता है, मान्यता के अनुसार एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तत्काल अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। वह कोई विशेष रेशमी धागा नहीं था, ना कोई विधि विधान था, बस था तो एक बहन का स्नेह और अपने भाई के प्रति चिंता। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उस स्नेह को अपने हृदय में संजो लिया। और जब महाभारत के समय द्रौपदी को संकट का सामना करना पड़ा, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा करके उस स्नेह का प्रतिदान किया। यही इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है। रिश्तों में दिया गया प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चे स्नेह का एक छोटा सा धागा भी समय आने पर अटूट विश्वास का बंधन बन जाता है। कहते हैं हम अपने कर्मों से ही पहचाने जाते हैं, धागों या कोई उपहार से नहीं। जिसने आपका साथ दिया है, समय आने पर उसका साथ देना आपका कर्तव्य है। कर्तव्य के अनुसार जो भी अपना कर्म करता है वही सच्चा रिश्ता कहलाता है।

रक्षाबंधन हमें स्मरण कराता है कि रिश्ते अधिकार से नहीं आदर से गहराव होता है। भाई का कर्तव्य केवल बहन की रक्षा करना नहीं अपितु उसकी स्वतंत्रता, सम्मान और सपनों का सम्मान करना भी है। और बहन का प्रेम केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं अपितु भाई के सुख दुख में उसके साथ खड़े रहने में भी है, क्योंकि राखी कलाई पर बांधी जाती है। लेकिन

उसका अर्थ सीधा हृदय में बसता है। जिस प्रकार से द्रौपदी भोली भाली थी, कभी कभी जीवन के उस पड़ाव में कुछ समझ ना आए तो गोविंद ही थे जिन्होंने उन्हें मार्ग दिखाए। वही पहली वजह बुझा कर भी उन्होंने द्रौपदी को समझाया, परंतु उसका हमेशा प्रभु के साथ रहना और प्रभु उसके भोलापन को समझना, यही तो भक्ति है।

कहते हैं जब हम गोविंद गोविंद पुकारते हैं तो गोविंद किसी न किसी रूप में अवश्य अवतरित होते हैं, क्योंकि गोविंद संसार के कण कण में समाये हुए हैं। बस बुलाने में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, अपनापन और भोलेपन होगी तो वो अवश्य आएंगे। जिसके मन में प्रेम हो, करुणा हो, गोविंद वही बसते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। आप सभी को रक्षाबंधन एक बार फिर से अभिनंदन और मंगल कामनाएं आप सभी को, और साथ में विंती नाहुला जी जो हैं साथ निभा रही हैं, उनके पूरे परिवार और जो भी लोग आज रक्षाबंधन मना रहे हैं उन सभी को मंगल कामनाएं। चलिए पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रही।

一直心酸小孤燕，半枯干的枝节，于窗边发展。

听众朋友，今天的汉语普通话好歌送给您的节目将要接近尾声，主持人又要跟大家说再见了。

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अशिता नमस्कार।
1: एक बार फिर नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। एक धागे में पिरोया हुआ स्नेह, सम्मान और विश्वास का अटूट पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में मनाया जा रहा है। बचपन की रूठने मनाने से लेकर बड़े होने पर एक दूसरे की रक्षा सम्मान करने का ये पर्व बहुत हर्ष उल्लास के साथ देश भर में भाई बहने आज मना रहे हैं। और आज के दिन हर वो भाई अपनी बहन की रक्षा करने तथा हर वो बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही है। और इसके चलते हम आप सभी लोगों को एक बार फिर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं। अन्य खबरों में, नेशनल यूथ पार्लियामेंट की 5वें संस्करण का शुभारंभ आज शुक्रवार सुबह किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सेशेल्स की नेशनल असेंबली की स्पीकर अजागेल एनेस्टा, सरकार के कई मंत्री और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सत्यजीत बुलेल मौजूद थे। कल तक चलने वाली इस कार्यक्रम में 14 से 23 वर्ष की आयु के युवा सांसदों की भूमिका निभाएंगे। वे सदन की कार्यवाही के नियमों का पालन करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बहस करेंगे और अपने विचारों का समर्थन करेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने वर्ष 1991 में संसद में अपने शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने समान अवसर सुनिश्चित करने और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शागुस द्वीप समूह का मुद्दा अगले महीने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठ सकता है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम से इस मुद्दे पर सवाल उठा सकता है। मामला मई 2025 में हुए समझौते को लागू करने में हो रही देरी से जुड़ा है। इस समझौते के तहत शागुस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को वापस किए जाने का प्रावधान है। वहीं जेगुगोशा स्थित सैन्य अड्डे को लेकर एक विशेष व्यवस्था की गई है। खेल के मैदान पर प्रदर्शन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी खेल संगठनों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। इसी उद्देश्य से युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से कल यानी 27 अगस्त को मोका के एल्वेशिया यूथ क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला में सुशासन, पारदर्शिता और वित्तीय प्रक्रियाओं के उचित प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य खेल महासंघों और संगठनों में बेहतर कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना

0: और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है। कार्यशाला के जरिए खेल संगठनों के अधिकारियों को वित्तीय प्रक्रियाओं और सुशासन से जुड़ी अच्छी प्रथाओं के बारे में जागरूक कराने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर हम रुख करते हैं नेपाल की ओर। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार नेपाल तिब्बत सीमा के पास बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। बढ़ते पानी से बनी एक नई झील के तटबंध टूटने की आशंका के चलते बचाव कार्य रोक दिए गए थे। नेपाल पुलिस के अनुसार अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 475 हो गई है। हिमालयी सीमा क्षेत्र में बाढ़ से भारी तबाही के 48 घंटे से अधिक समय बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल सरकार ने लापता 500 विदेशी नागरिकों के नाम जारी किए हैं। इनमें भारत के 178, अमेरिका के 65 और ब्रिटेन के 33 नागरिक शामिल हैं। तिब्बत में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 550 से अधिक लोग लापता हुए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि तिब्बत के ये आंकड़े नेपाल में जारी आंकड़ों से अलग हैं या इनमें कुछ नाम शामिल हैं। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। साथ रहिए, हम सुन पाएंगे श्रोक समाचार। श्रोक समाचार सुनिए। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 साल के 95 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिलाल कावलीसाव, जिन्हें मौसम दालपुरी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सती कावलीसाव के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड बोबासा में रू सेंट जेम्स, ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रू सेंट जेम्स पोर्ट लुइस में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती स्वाम्बो पैदाश्रम रामदोस की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे एरियनसन बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सबसे पहले उनके घर पोर्ट लुइस ले जाया जाएगी, फिर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि। अंतिम संस्कार 1 बजे के लिए निर्धारित हैं। क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन सभी को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वागत है आप सबों का हमारे इस प्रोग्राम में जो हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं लेकिन आज का प्रोग्राम हो रहा है खास कर 11 मिनट हुए हैं यस मैं हूं विदिता आपका साथ देने आए हैं लेकिन मैं अकेले नहीं हूं भाई मेरे साथ पूरी टोली है अब हमारी टोली आपको पता है महीने में एक बार आपको लेकर कहीं जाते हैं स्टूडियो के बाहर कहां जा रहे हैं चलिए उनसे मिलने का समय हो गया है तो सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ लेडी सुशील रिक्रिएशन सेंटर पॉइंट ऑफ पीमा में हो रहा है विद तिहासिन एसोसिएशन तो यहां पर पूरी टोली साथ में है चलिए देखते हैं नीतू
1: हेलो वेदिता यस पूरी टोली में नीतू के साथ है गिनिशा साथ में उषा नमस्कार
2: नमस्कार आप सभी को और वेदिता को भी और सारे लिसनर्स को और जितने ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे बैठे हैं आपका स्वागत है और आज हम यहां पे आए हैं खासकर आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती और मनोरंजन करने के लिए
1: जी हाँ सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ आज हम आए हैं एट लेडी सुशील रिक्रिएशनल सेंटर पोएतो पीमा इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास तो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है नमस्ते सबको के मामा खूब जोली जोली
2: खाना नहीं खाना तो उन्होंने खा लिया लेकिन उनकी नमस्ते ज्यादा जोश से नहीं निकली नमस्ते
1: देखो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है ना तो चलिए आज हमने के टीम आज तोहर संगे आयल है जा और दू बजे ले तोहर संगे रहब जा गावब जा नाचब सा खेल हो तनी सुन गेम सब हो माने कि यहाँ पर हम लोग मस्ती करने आए हैं और जो खुशी के पल है वो बांटने आए हैं गिनी
2: और अगर खुशियों की हम बात कर रहे हैं तो आपको भी उषा को भी और जितने भी आप सभी लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं हमारे पूरी रेडियो टीम की तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन अभिनंदन ढेर सारी शुभकामनाएं सो उषा आपका भी स्वागत है
3: जी हाँ नमस्कार आप सबको और घर पर

0: बैठे हुए हमारे सभी श्रोताओं को हम नमस्ते कहते हैं। आप हमें सुन रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी आप जान जाएंगे। और यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, जैसे कि हमने कहा नीतू है, मैं हूँ, गिनिशा है, दीपशिका है और हमारे पूरे टीम है यहाँ पर। तो बस आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे साथ।
1: एंड जी हाँ, आप तो रेडियो

0: चलिए शुरुआत करते हैं खूबसूरत गीत उषा आप ही की आवाज में।
1: सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, तालियां जरूर बजाना, अगर गुनगुनाना है, गाना है, नाचना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है?

0: थैंक यू।
1: तो चले जी, जोरदार तालियां हो जाए उषा के लिए, तालियां। खूबसूरत खूबसूरत गाने तराने आज हम पेश करेंगे, उषा ही नहीं हमारी नीतूषा भी आप लोगों के लिए दिल खोल के आज गाएंगे। और गाने के साथ साथ और भी कुछ होने वाला है,
2: एक गेम। हाँ जी, अभी एगो गेम होए तगिनी, कौन गेम होए और कितना।
1: लेकिन गेम शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, अभी हम गेम शुरू करेंगे, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। आपको यहाँ पे आना है, गेम में पार्टिसिपेट करना है, खेलना है। और हमारे पास कार्ड्स हैं, वी हैव वाउचर्स। हम आपको गिफ्ट भी देंगे, जो जीतेगा उनको गिफ्ट भी मिलेगा। एक वाउचर है फ्रॉम जेठा तुलसीदास, विल बी गिविंग यू अ वाउचर जेठा तुलसीदास की तरफ से, जहाँ पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी चलिए, मुझे चलो 6 7 8 कितना 8 बंदे चाहिए। लेडीज़, मैं देख रही हूँ लेडीज़ बहुत है यहाँ पे, तो आप

0: हर इस पेशेंट के लिए मुझे आठ लेडीज है ना चाहिए, एट लेडीज चाहिए. मैं बोल रही हूँ और सब ऐसे बैठ के मुझे देख रहे हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आया.
1: देखिए आज हम लोग आ जाओ, आ जाओ
0: आंटी, आंटी आप देखो देखो ये होते हैं ना आंटी,
1: इधर से
0: आ जाओ आप भी आ जाओ
1: चाची,
0: ना आंटी,
1: चला चाची चला.
0: कभी कभी क्या होता है ना कि उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब आप दोबारा खेलते हैं, दोबारा हम पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे गेम में, तो हम अपनी जो बचपना है ना फिर से वो जी लेते हैं. तो वही महसूस कराने के लिए हम आप लोगों के लिए कुछ गेम लेकर आए हैं. और अभी आंटी जी आ जाओ, आप क्यों शर्मा रहे हो, आ जाओ ना. एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और चाहिए आठ, एक और आ जाओ ना आंटी, आ जाओ. नहीं
1: प्लीज,
0: बोलते मैंने अभी बिरयानी खाई है, मैं सुस्त हो गई हूँ, मैं क्यों उठूँ.
1: नहीं
0: आ गए आंटी, बैग रखो, बैग रखो आंटी, बैग रख लो. ठीक है तो आ जाओ नीटू जी, आप भी आ जाइए.
1: मैं भी,
0: हाँ जी. नहीं आप, हम एक्सप्लेन करेंगे ना कि कैसे करना है. ठीक है आप लोग जो है ना एक सर्कल बना दीजिए, राउंड बना दीजिए, सर्कल सर्कल बनाइए. आपको ये गेम पता है ना, बचपन में हम बहुत खेलते थे कि इसकी टोपी उसके सर, ये वाली टोपी उनके सर. गेम का रूल है हम म्यूज़िक चलाएंगे, आपके सिर पे टोपी ऐसे हम पहनाएंगे, आपको इनके सिर पे पहनाना है. ये नहीं कि छू के ऐसे निकालना है, नहीं, पहनाना है, फिर आपको निकाल के दूसरे को पहनाना है. और जब म्यूज़िक रुक जाएगी, जिसके सिर पे म्यूज़िक जब रुकेगी, अगर आपके सिर पे होगा टोपी तो आप OUT आउट हो जाएंगे. ठीक है तो डम तैयार है, चलिए लेट्स बिगिन. आप थोड़ा सा पास आ जाइए. ठीक है चलिए म्यूजिक शुरू करते हैं. जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी

0: आंटी आप आउट हो गए। एक्चुअली पता है आंटी क्यों आउट हो गई? जब टोपी उनके सिर पे आ रहे थे उन्होंने सोचा मेरे बाल खराब हो गए, और रहे मेरे बाल खराब हो गए। कोई बात नहीं, इन सब के बारे में नहीं सोचना, गिफ्ट के बारे में सोचो, एंजॉय कीजिए। चलो म्यूजिक। जल्दी जल्दी जल्दी ओ यू टी आउट, आप भी आउट हो गए। चलो सर्कल को थोड़ा और कम कर लीजिए। म्यूजिक।
1: अब्दुल्ला के पीले पीले अब्दुल्ला के झूले झूले अब्दुल्ला के
0: पूरा पहने झूले अब्दुल्ला के। ओहो आप तो आउट हो गए। ये वाली आंटी है ना ऐसे खड़ी है, मेरे सिर पे कब आएंगे टोपी? जब टोपी आ गए तो बोलते ये ले बहन तुम्हारे सिर पे टोपी। इतने कूल ना खड़ी है ये आंटी, मजा आ रहा है। चलो डो म्यूजिक।

0: जल्दी छोकरी
1: जल्दी जल्दी जल्दी
0: शहर के छोकरी अनले मैं जाने का फासा गांव के छोकरी ने
1: ओ ओ आंटी तो आउट हो गई। पता आंटी आप इतने लंबे हो, ये इतनी छोटी है ना हाइट में, ऐसे वेट कर रही है टोपी अभी अभी आएगा मेरे सिर पे। चलिए म्यूजिक।

0: के झूले झूले अब दूल्हा के, अब दूल्हा के झूले झूले अब।
1: ओहो आंटी तो आउट हो गई। थैंक यू आंटी जी।

0: आंटी तो आउट हो गए. कौन किसके सिर पे था? ये आंटी के सिर पे था ना. जब म्यूजिक बंद हो गया किसके सिर पे था टोपी? इनके सिर पे. थैंक यू सो मच आंटी. आपका नाम?
1: प्रेमिला.
0: आप कहाँ से हो?
1: सुयाक से.
0: सुयाक से तिरासिन. तो आंटी जी आप तो जीत गए. सबको आपने टोपी पहना दी आज. तेरासिन में भी सबको टोपी पहनाते रहते होंगे ना. तो चलिए ये पूरे है जो हमारे रेडियो मनोरंजन की तरफ से है. और ये है एक वाउचर जो आपको मिला है फ्रॉम जेठा तुलसीदास. आप वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. टोपी मुझे वापस दे दो और आप बैठ के एंजॉय कीजिए. थैंक यू सो मच. तो ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे. ढेर सारे गेम्स और ढेर सारे कडोज और है हमारे पास.
2: देखो अभी शुरुआत है. वे लोग शायद कहते हैं चिमित चिमित है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीता चला जाएगा ना, उनकी मस्ती, उनका जो जोश है वो देखना. अभी के लिए इनमें से एक साहब है, आप है मिस्टर बशीर. आप आइए. उस दिन उनसे बात हो रही थी, मैं और दीपशिखा उनसे बात कर रहे थे. बात करते करते उन्हें गाना शुरू किया. मैंने कहा भाई बस कीजिए, आज गाएंगे. तो चलिए मिस्टर बशीर के लिए जोरदार ताली हो जाए और वो एक बहुत ही खूबसूरत गीत गाएंगे.

0: शिर के लिए इनकी रानी कौन बनेगी सपनों की पता नहीं, लेकिन आपने सबका दिल जीत लिया। बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, वी आर लाइव फ्रॉम लेडी सुशील रामगुलाम रिक्रिएशनल सेंटर पॉइंट ऑफ पीमा विद टेरासिन एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। और यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, हमेशा गाने गाते हैं गिनी उषा एंड वगैरह। तो चलिए, यहाँ पर और भी गाने हैं, मैं देख रही हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं ही हूँ
1: जी। वैसे अभी जो भाई साहब ने गाना गाया है, रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत है ना, तो बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे आपके बीच में और टैलेंटेड लोग हैं, आप गाना चाहते हैं, तो बेझिझक आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं और यहाँ पर हम सुनेंगे नीतुषा की प्यारी आवाज़ में एक प्यारा सा गाना।
0: देखो, कई लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही है, तो एक भाई बहन का गाना आप सभी के नाम और जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं सबके लिए।
1: तो नीतुषा के लिए एक जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू।

0: धन्यवाद। तो चलिए, कभी हम गा रहे हैं, कभी आप हमारे साथ जुड़े हुए, यही है अपनों का प्यार, ये सुहाना सफर। और हर सफर पर हम निकलते हैं हर महीने के आखिरी जो शुक्रवार है गिनी, और कितना मजा आते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े मन की आप हमारे बुजुर्ग, आप सबका आशीर्वाद मिलता है।
1: हेलो जी,
0: जी हम भी आपको सुन रहे हैं जी।
2: बिल्कुल जी, जैसे नितुषा ने बोला है कि हम निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, हमें वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग हमें हमेशा रेडियो पे ही सुनते रहते हैं, लेकिन जब आमने सामने से हम मिलते हैं ना, तो प्यार और ज़्यादा भर जाता है। और एक्चुअली जैसे कि हमने कहा ना कि आज रक्षाबंधन है, आप लोगों ने मना लिया, भाई बहनों के साथ मना लिया रक्षाबंधन, कोई बात नहीं, हमारी कलाई अभी भी खाली है, कोई बांधना चाहेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो हमारे पूरे टीम की तरफ से फिर से एक बार सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, रक्षाबंधन अभिनंदन। गाना तो हम गा रहे हैं और आप लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं, अभी क्या करना है, गाना है या गेम कर ले?
0: आप गाएंगे?
2: मैं? अरे मेरी जान। ये इतने प्यार से बैठे यहाँ पे, क्यों भगाना है उनको?
0: तो एक बार फिर मिस्टर बशीर को बुलाते हैं।
2: ओके जी,
0: चलिए।
2: उषा किसकी बारी है?
0: यूपी कप कौन गाएगा इन दोनों में से? चलिए मिस्टर बशीर को बुलाते हैं पहले, फिर उषा आप उसके बाद गाएंगे, और फिर गेम्स होंगे कि नहीं?
2: ठीक है, ओके।
0: तो चलिए, हमने सुना है कि ये गाना आपको बहुत ही पसंद है, और जब भी गाते हैं यहाँ पर सब लोग तालियां बजा बजा कर आपको सराहते हैं, ऑफ माइक ही गा रहे हैं। चलिए

0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
1: क्या बात है जिस तरह से लिखे जो खत तुझे, किसकी तरफ इशारा कर रहे थे आप?

इनका दिल टूट गया क्योंकि इनको देख रहे थे लिखे जो खत तुझे, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड यस

0: के बाद जैसे कि हमने कहा था, अब उषा कौन सा गाना गाएगी? उषा,
1: चांदी जैसा रंग है तेरा,
0: मेरे जैसे बाल। चले जोरदार तालियां हो जाए। जी हाँ, यह है सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, लेडी सुशील रिक्रिएशनल सेंटर पॉइंट ऑफ पीमा विद टेरासिन एसोसिएशन, ऑफ कोर्स इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आप लोगों ने वाह वाह नहीं किया, साथ में करें वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: लेकिन सोने जैसे बाल कोई मिला यहाँ पर मुझे?
0: हाँ हाँ, गोरी भी है सोने जैसे बाल भी है उषा, वो गोरी भी है,
1: गोरी भी है सोने बाल जैसे है,
0: सब कुछ
1: एक
0: है।
1: तो ही धनवा, लेकिन कोई कंगाल नहीं है
0: यहाँ तो सब धन वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा प्यार आप लोग लेकर आए हैं आज हमारे लिए। चलिए, गाना तो हो गया, पहले खाना हो गया, उस बाद में गाना हो गया, अब क्या करें, नाचें? लेकिन अभी मैं सारे अंकल को बुलाना चाहूँगी। अंकल, मुझे 6 अंकल्स चाहिए। जैसे मैंने अंकल का नाम ले लिया ना, इस वाले अंकल ने ऐसे किया, अरे इतने मोटे ताज़े हटके गिन्नी खरी है यहाँ पे, आप आ जाइए, आओ ना अंकल, अभी आओ। नहीं, प्यार से बोल रही हूँ, आओ जाओ ना अंकल, चलो हैंडसम आ जाओ ना मेरे साथ। अच्छा, पैरों में दर्द है, कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ, चलो आप चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी हम लाइव है रेडियो पर, बाद में बात करेंगे। अंकल जी अभी आ जाओ ना। नहीं, सब नाना, देखो सारे लेडीज कितने मतलब हमारे साथ डांस कर रहे हैं सब कुछ, और आप तो आ जाइए। अरे चाचा, चाचा भी नहीं आ रहे, मामू, हैंडसम, इधर देखो, लुक एट मी, इधर, चलो आप भी आ जाओ, आ जाओ। सबके घुटनों में दर्द है, ये क्या बात हुई, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप मुझे मना मत करो, आप इतने हैंडसम हो, आ जाओ। चले कितने हो गए, 1-2, आप भी आ जाओ ना। अरे शर्मा क्यों रहे हो, चलो आज रक्षाबंधन है, बहन समझ के आ जाओ, बहन समझ के आ जाओ ना मेरे साथ, ये अच्छी बात नहीं है, सबको प्लीज़ प्लीज़ बोलना पड़ रहा है। चाचा जी, अरे चाचा किससे बात कर रहे हो, उससे मैंने चाचा जी को बोला, ऐसे करके ना वो बात कर रहे हैं, चाचा जी किससे बात कर रहे हो, बात करते करते मुझे बोलता है उससे। अरे यहाँ पे आप आ जाओ, आप, ये गलत बात हुई है ना, आप लोग हमें यहाँ पे बुलाया, आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और मना कर रहे हैं, आप आ जाइए, गलत बात है, आ जाओ। आप इनको क्यों बोल रहे हो, आप खुद चलो ना, नहीं डांस मैं सिखाऊंगी ना, चलो 4 हो गए, आप भी आ जाओ। क्या हुआ? अच्छा, आपकी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप मुस्कुरा रहे हो, अच्छा आपका भी ऑपरेशन हुआ है? मेरा भी ऑपरेशन हुआ है डांट का, इसलिए मैं हंसूंगी नहीं आज, कोई बात नहीं, इन चारों के बीच में आपस में कर लेते हैं, कार्डो भी मिलेगा इनको, गिफ्ट भी मिलेगा ऑफ कोर्स, इट्स पावर्ड बाय जेठा तुलसीदास, जेठा तुलसीदास की तरफ से आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा। आपको नाचना आता है थोड़ा सा? ऐसे मत बोलो जैसे घर पे किसी को नचाते नहीं हो और खुद नहीं नाचते हो, बीवी नहीं नचाते आपको? आपका नाम क्या है?
2: सैन।
0: सैन किस नैन, और आपका?
3: मेरा नाम है बशीर।
0: बशीर, बशीर साहब, एक मिनट है, आपका नाम?
2: सेल्वम।
0: सेल्वम और?
4: नादेन।
0: नादेन, तो आप जरा जस्ट फॉलो मी है, मैं जो जो दिखाऊंगी आपको वो करना पड़ेगा। घर पे जब गाजों जो होते हैं ना बड़े हो जाते हैं तो उसको सिजाई से कैसे काटते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तभी तो नाचना पड़ेगा ना, ठीक है, इट विल लुक लाइक आप डांस करोगे। जब आपका बल्ब जो है ना घर पे वो थोड़ा जल जाता है तो बाद में बीवी जब बोलती है कि अजी सुनते हो बल्ब चेंज करो, जो विषय वाले होते हैं तो ऐसे करते हैं ना, लेकिन हमारे स्टाइल कुछ अलग है, ऐसे, ठीक है। और झाड़ू कैसे लगाते हो, झाड़ू? हाँ देखो।

0: रेखो रेखो ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको कहीं पे भी लगाना है, यहाँ वहाँ हर जगह म्यूजिक बजेगा, आप बस सुन लेना, मैं बोलूँगी झाड़ू लगाओ बालिए, तो आप झाड़ू लगा लेना, मैं बोलूँगी ग्लोब तो स्टार्ट ऐसे विसे, ठीक है, और गाजो बोलूँगी कुपे तो कुपे, ठीक है, चले म्यूजिक जो सबसे अच्छा करेगा उसी को गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, चले म्यूजिक बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए डम डम डम डम डम। आपका नाम क्या है भाई साहब?
1: सेल्वम।
0: सेल्वम ऐसे जरूर लगाता है, अरे चक्कर आएगा भाई साहब, ऐसे मत लगाओ, इधर उधर सब कितना गंदगी भरा है ना, यहाँ पे साफ करो। आप एक एक घर में, अलग अलग घरों में रहते हो ना, पड़ोसी तो नहीं है ना, तो अपने अपने घर में लगाओ ना, ठीक है। म्यूजिक बालिए बालिए बालिए कस्ते रहें बालिए बालिए ओए होए।

रुको रुको रुको, ऐसा लग रहा है सिर्फ मेरे घर का बल्ब बुझ गया है, सब मेरे ही पीछे आ रहे हैं चेंज करने के लिए। अरे अपने अपने घरों में जाओ ना, मेरे यहाँ क्यों आ रहे हो? मैंने कहा विषय सब मेरे पीछे आ रहे हैं, जैसे मेरा बर्थडे विषय हो गया। ये क्या बात हुई, ऐसे मत करो, मेरे भी घर वाले हैं, बुरा मानेंगे। चलो म्यूजिक।

रुको रुको रुको, आप अकेले आए हो? आपकी बीवी आई है आपके साथ? अकेले आए हो? आपकी बीवी है घर पे है? अगर उन्होंने देख लिया ना, वो बोलेंगे मेरा सुपरमैन है ये। मैंने बोला विसे दोनों हाथों से। वाह बेटा वाह, आप विषय का काम करते हो? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, पता नहीं। ठीक है, और आप तो खंबे जैसे खड़े हो, एक ही हाथों से करते हो। ये क्या बात हुई, एक ही हाथों से लगे रहो मुन्ना भाई? अरे दोनों हाथों से भाई, गिर जाएगा आपका बल्ब। जोर से पकड़ना, ठीक है? चले म्यूजिक। कुपे कुपे कुपे कुपे, कुपे।

यहाँ पे एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है. पहले मैंने बोला विसे तो मेरे पीछे विसे विसे करके आ गए. अब मैंने बोला कूपे तो मेरे पीछे पीछे मेरे ही पैरों में गाजू भरे हो गए क्या है? ये क्या बात हो गई अंकल जी? और अंकल को ना बड़ा प्रैक्टिस है, जो लंबे लंबे वाले लेब होते हैं ना, फूसी को लेकर ऐसे ऐसे करके काटते हैं. अरे सिजाई दिया है हाथों में. अच्छा, और कमर कमर ऐसे ऐसे, बिल्कुल जी. और बाकी लोग जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं. इतने मस्ती हम कर रहे हैं ना यहाँ पे ऑन टिकटॉक और एंट्री रेडियो मनोरंजन. चलो आप ना कॉन्सेंट्रेट करो, गिफ्ट भी मिलेगा जो अच्छा काटेगा, अच्छा विषय करेगा और अच्छा झाड़ू मारेगा. ठीक है, म्यूजिक.

रुको रुको रुको भाई साहब, आप उसके पीछे पीछे क्या कात रहे हो? ये आपके पीछे, वो आपके पीछे, ये तीनों एक दूसरे के पीछे पीछे चक्कर कात रहे और पता नहीं क्या कात रहे ऐसे। क्या हुआ? आपने क्या देखा उसके पीछे जो उसके पीछे पीछे जा रहे हो? आपने क्या देखा? आप इसके पीछे क्यों आ रहे हो? हमने बोला गाजों भरे हो गए, लेब भरे हो गए, लेब को काटने इसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? ये गलत बात है ना, आप ज़रा बाद में ध्यान रखना है। चलो ये लास्ट राउंड है, ठीक है? अब आप लोग देखेगा ज़रूर, फिर मुझे बताना कि किसने सबसे अच्छा किया है, ठीक है? गिफ्ट उसी को हम देंगे। म्यूजिक विसे विसे विसे दोनों हाथों से विसे विसे विसे विसे टूपे टूपे टूपे टूपे

0: अंकल्स के लिए जो बहुत ही प्यार से यहाँ पे आए हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा स्लो मोशन में काटते हैं, झाड़ू लगाते हैं। इनको तो मैं नौकरी बिल्कुल नहीं दूंगी, ठीक है। आपका नाम मैंने कट कर दिया है। वैसे प्रोफेशनली आप लाइफ में क्या करते हो?
1: I don't know what you say.
0: Oh, what do you, which work do you do? What do you do in life?
1: I speak English.
0: Okay, I am eating English now. हाँ, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है ना हिंदी में है ना भाई, इसलिए हिंदी में बात करते हैं। काम क्या करते हो? कितावाय कौन सा
1: कावाय
0: करते क्या हो?
1: पुली
0: पुल काटे हो? ऐसा काम मुझे मिलेगा? मुर्गी काटे हो? काटते हो? ओ, आपसे तो दूर ही रहना पड़ेगा। आप बैठ सकते हैं भाई साहब। मुझे देख के ये बार बार इशारा कर रहे हैं, काटते काटते। आपसे तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और आप क्या करते हो लाइफ में?
2: प्रो के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, सब भाई बहन के रक्षाबंधन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रिश्तों की डोर से बंधा ये प्यारा सा त्यौहार, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ता हमेशा ही प्यार और खुशियों से भरा रहे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के पांचवा संस्करण का उद्घाटन आज सुबह राष्ट्रीय सभा में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सभा की स्पीकर उपस्थित रही। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 76 युवा संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होंगे और लोकतंत्र तथा सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझेंगे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट युवाओं को अहम और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं। युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने युवाओं से जीवन में जो भी कार्य करें उसमें दृढ़ विश्वास, साहस और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। अब प्रत्येक नागरिक ये जान सकेगा कि स्टेट एज पेंशन के तहत उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। ये नई पेंशन व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू होगी। अधिकारियों ने कल आधिकारिक रूप से SEP एस्टिमेट नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन नागरिकों को अपनी संभावित पेंशन राशि का अनुमान लगाने में मदद करेगा। ये एप्लीकेशन स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। इसके अलावा इसे सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज से मौसम में बदलाव दिखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना भी है। पूरे द्वीप में तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। समुद्र में भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में 4 से 6 मीटर ऊंची शक्तिशाली लहरें उठने की संभावना है। और नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर बुधवार को हुए भीषण भूस्खलन और मलबे के सैलाब के बाद कम से कम 482 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1400 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण इलाके में भारी तबाही हुई है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। विल्नव मेबर्ग में 97 साल की 97-year-old बीबी जुबैदा रसूल सईब, बीबी जुबैदा रसूल सईब पैदाइश नाम टोरोबाली जो जुबैदा से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे इनके मकान विल्नव मेबर्ग से निकाल कर दफनाने के लिए रिवियर डी क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। हुटवायाल बोबासे में 76 साल की 76-year-old श्रीमती बिडवंती स्वामबर, श्रीमती बिडवंती स्वामबर पैदाइश नाम रामदोस जो पहले नंबर 11 रुई सेंट जेम्स पोर्टविस रहती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज बल्कि कल शनि

0: शनिवार को दिन के 10 बजे एलियन सन्स होट वायल बोबासें से उठाकर दाह संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 एम। अस्तोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 साल की 95 यो ओल्ड श्री हरिलाल कोयलेसर जो डोलपुरी पानी मौशों से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सती कोयलेसर के मकान अस्तोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआगोज गुडलैंड की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 1 पीएम। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: थैंक यू
1: बहुत बहुत धन्यवाद. आपको अच्छा लग रहा है आज हमारी टीम एमबीसी टीम एमबीसी रेडियो टीम आपके पास आए हैं. अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा था. हमने के अच्छा लगा था आप लोगों के देख के ऐसे झूमत हो वजह हमने संगे गावत हो वजह यही तह सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. और वो आज खास तोहर लगे आयल हैजा पोएतो बीमा लेडी सुशील रिक्रिएशन सेंटर में और हैजा परी हमने के जन पहुँचने हवन जज जेठा तुलसीदास उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. चले एक और गीत आज.
0: जी हाँ, हम एक गाना सुनने जा रहे हैं. किसकी आवाज में?
1: आपकी आवाज में
0: नहीं,
1: मिस्टर बशीर
0: बशीर की आवाज में. आ जाइए, उनके लिए एक जोरदार तालियां प्लीज. और आप क्या गाने वाले हैं मिस्टर बशीर?
1: अच्छा, एक गाना है आप ही की जो लिस्ट है यहाँ पर हमने तैयार की है. तो चलिए मिस्टर बशीर के लिए जोरदार तालियां हो जाए.

0: बात है मिस्टर बशीर।
1: थैंक यू।
0: अभी नजरें उधर चली गई है बिगिनी।
2: इन्होंने बुलाया। हाँ जी, आपने बुलाया, आपने बोला जरा पास आ जाओ तो चैन आ जाए। आपको चैन आया कि नहीं?
1: आया, जरूर आया।
2: कितना चैन आया?
1: बहुत चैन आ गया।
2: ओहो, अभी गाते गाते मैंने देखा उस तरफ बोलते हैं जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आपको आना चाहिए था मैडम, इतने प्यार से, इतने जोश से जो बुलाया जरा पास आओ, वो आई नहीं, मैं आ गई। पहले तो इन्होंने मुझे खत लिखा, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि पास आ जाओ।
1: मैंने बुलाया, मैंने खत लिखा, वो नहीं था यहाँ, वो आसपास हुआ, कैमरा में देख रहा है।
2: ओके, चलो ठीक है, तो ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे बशीर साहब के लिए। एक्चुअली उनको देख के जैसे मैं अंदर आई, मैंने उषा को बोला ये छोटा महमूद नहीं लग रहा हमें?
1: मैं महमूद नहीं हूँ, मैं जितेंद्र हूँ।
2: कौन है?
1: सब लोग पुकारते हैं मुझे जितेंद्र।
2: जितेंद्र, जितेंद्र, जितेंद्र।

आती है मुझे. देखो सबके सामने इन्होंने आज ऐलान कर दिया, चिट्ठी भी लिखा और बुलाया भी और महबूबा भी बोला. थैंक यू सो मच जितेंद्र जी. और अभी ये थोड़ी देर में फिर उनको बुलाएंगे. थैंक यू, ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. एंड चलिए जी, फिलहाल के लिए अभी दीपशिका मुझे बोल रही थी कि फिर से गे

0: क्या नाम है, योगिनी हमें देख रही है फ्रॉम आइलैंड, आप आ जाइए, आप भी आ जाओ ना। नहीं कौन आंटी जी, आइए आइए, इस बार टोपी नहीं पहनाऊंगी मैं, वादा करती हूँ। आइए सिक्स लेडीज चाहिए, आप भी आ जाइए जल्दी जल्दी से। और टू ऑफ दोस जो हमें सुन रहे हैं ऑन रेडियो, आपको याद दिला दे कि आप हमें देख सकते हैं लाइव ऑन टिकटॉक आर एन थ्री रेडियो मनोरंजन, जहाँ पे है वी आर लाइव, यस फ्रॉम लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर फ्रॉम पॉइंट टू पीमा, जहाँ पे वी आर सेलिब्रेटिंग, यस रोज तो हर एंड ऑफ द ईयर जो लास्ट फ्राइडे होता है मनाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। अरे मुझे कम चाहिए, अभी आज बहुत सारे मॉडल्स मिल गए, आ जाओ और भी आ जाओ। चलो आपका नाम क्या है मैडम जी?
1: सरोजा।
0: सरोजा, और आप?
2: माला। उमा।
3: विमाला।
2: वेदी।
0: मैं थोड़ी आपको मारने, आप वेदी हो? हाय वेदी, हाउ आर यू? और स्टूडियो में वेदिता बैठी है वहाँ पे, और आपका नाम?
3: प्रेमिला।
2: शीला।
3: तंगेची।
0: शीला की जवानी, और आप?
3: तंगेची।
0: तंगे तंगे। चलिए लेडीज तो आ चुके हैं, और आपका नाम क्या है मैडम?
4: मेरा नाम सबसे बढ़िया आंटी।
0: आंटी रियली में आपका नाम आंटी है? आंटी आंटी आंटी कैसे हो, डबल आंटी हो गए। चलो आप थोड़ा पीछे हो जाइए, अभी हम एक गेम शुरू करेंगे। आप लोग देखते हैं ना टीवी पे मॉडल्स कैसे चलते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस मॉरिशस, अभी देखते हैं कौन बनेगी आज मिसेज लेडी सुशील राम गुलाम। ठीक है, आपको पता है ना कैसे चलना है, ऐसे मटक मटक के, ऐसे मटक मटक के यहाँ तक आना है, फिर ऐसे मुझे नहीं पता कौन से वाले अंकल को फ्लाइंग किस भी करना है तो कर लीजिए, मैं तो सबको करना चाहती हूँ, ठीक है कर सकते हो। फिर यहाँ आराम से है, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पे आप आएंगे फिर देखेंगे, ऐसे वेव करेंगे, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा वॉक चाहिए मुझे जैसे आज आप लोग मिस वर्ल्ड हो। अरे बचपन में कुछ तो ख्वाहिशें रह गई होगी ना जो पूरी नहीं हुई?
2: से नहीं होगी।
0: क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? ना सुनना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, अब आप उतर चुके हो मैदान में। ठीक है, म्यूजिक चलेगी एंड देन यू आर गोइंग टू वॉक। ठीक है, इधर से टांगे से शुरू करेंगे, टांगे वाली, टांगाले, टांगाले, आपका नाम टांगाले? नाचती है, नचाऊंगी अभी, रुक जाओ। चलिए अभी देखेंगे कि कौन बन सकता है आज मिसेस एल एस आर लेडी सुशील राम गुलाम। ठीक है, म्यूजिक शुरू हो जाए। अच्छा मैं करके बताऊं, ऐसे ना, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, आहा, ठीक है, और ऐसे सबको बाय भी करना है, और फिर ऐसे ऐसे, ये मेरा ये तुम्हारा, ये मेरा तुम्हारा, ठीक है। चलो आप शुरू हो जाइए, म्यूजिक क्लाप क्लाप, तालियां हो जाए।

रुको मैडम, रुको रुको, डाउन डाउन डाउन। उनका नाम क्या है? रुको, म्यूजिक रुक चुकी है बहन, वेट। आप जब चल रहे हो ना तो मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हो मन में कि इसने मुझसे क्या करवाया? मैं अच्छे वाली बैठी थी, खाना खा के एंजॉय कर रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? किया मैंने आपको डिस्टर्ब? नहीं। तो चले म्यूजिक पर जाए, चलो चल जाए, चल जाए।

अभी तो बोल रहे थे कि मैं शर्मा गई, मुझे नहीं करना है, फिर बोल रहे आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड टुडे, मैं ही हूँ मिस वर्ल्ड। हाय हाय मैडम जी, अभी तो आप शर्मा रहे थे, क्या हो गया? चलो

हमारे इतने सारे मॉडल्स ने अभी कैटवॉक भी किया हमारे लिए, डांस भी किया, लेकिन जज बनेंगे आप लोग। आपको हमें बताना है कि किसने सबसे अच्छा किया। क्या आपको लगता है आंटी जी ने अच्छा किया? ज्यादा थे, कोई आवाज नहीं आई। इन्होंने इन्होंने इन्होंने इन्होंने इन्होंने इन्होंने इन्होंने इन्होंने ओहो, हमारी ब्यूटी क्वीन। चलिए म्यूजिक हो जाए, ब्यूटी क्वीन फिर से एक बार दिखा दीजिए ना, वही म्यूजिक, सेम म्यूजिक, अभी फिर से चल के दिखाना। चलिए वंस मोर वंस मोर वंस मोर। ये टांगाले है ना, चलिए टांगाले के लिए जोरदार तालियां हो जाए। म्यूजिक

0: Thank you.
1: हेलो, जब भी हम आते हैं पता नहीं डोम हमारे माइक को बंद क्यों कर देते हैं। जोरदार तालियां हो जाए उषा के लिए। आप लोगों के दिल को चैन आया? अच्छा लग रहा है आपको? मैंने सुना नहीं, मैंने एक सवाल पूछा, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? चले इस तरफ आप बताइए, अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। दम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल दम नहीं आया। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? इतने कम लोग और इनकी हाँ हाँ, और आप लोग इतने सारे लोग हाँ, ये गलत बात हुई। चलो देखेंगे अभी है, जब नितुषा गाएगी कि उसके बाद आप लोगों, अभी उषा आई थी ना दिल को चैन दिलाने के लिए, आप क्या लेकर आए हो?
2: देखो मैं सबको

0: बुलाने वाली हूँ।
1: तो देखते हैं नीतूषा के गाना गाने के बाद आप लोग आएंगे या नहीं, इस कुर्सी से उठ पाएंगे या नहीं, ठीक है?
0: चलो
1: चलो देखते हैं, आप उठाते लेते हैं उनको, हाँ या ना, ठीक है? तो जोरदार तालियां फिर से एक बार हो जाए उषा के लिए।

0: देखो देखो
1: देखो
0: सब आएंगे, आप भी आना, जो हमें टिकटॉक पर देख रहे हैं आप भी आना, आइए चलिए।

0: ये होती है मस्ती, यही होता है सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, जहाँ पर गिनी हमेशा कोरस करती है। देखा आज इसको गवाही दिया हमने। मोनिका भी गा चुकी है, क्या बात है उषा।
1: हम बोलते रहते हैं कि हमारे बीच में मेल सिंगर नहीं है। तो आज की निशा है वो मेल वॉस करेंगे। तो कैसा लगा आपको? और यहाँ पर मैंने देखा बहुत से लोग हेजिटेट कर रहे हैं डांस करने के लिए, वो डांस नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी कुर्सियाँ पर बैठकर हिल रहे हैं। पता है बैठना नहीं है आपको, उठकर यहाँ पर आकर डांस करना होगा, नाचना होगा हमारे साथ, क्योंकि अभी तो कम समय रह गया है। हमारा प्रोग्राम अभी 20 मिनट में ख़त्म होने वाला है, और अगर आपने आप लोगों ने डांस नहीं किया ना तो आप बहुत मिस करोगे और बाद में पछताओगे, बोलोगे हाय हमने क्यों नहीं डांस किया उन लोगों के साथ।
0: सेगा अभी एक भोजपुरी गीत हो चाची,
1: भोजपुरी गीत
0: चले शुरू करते हैं। तो चले भोजपुरी गीत की ओर ही बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर चला हाइजा परी उषा बोला था दादा के पोसल पासल, चला दादा कौन ची पोसले होवन अभी जाना आप सा।
1: उरल जाला लर कची रैया ओरा, चला दादा के

आजा हाइजे रह जा, हाइजे रह जा, नहीं जा सा, नहीं जा, हाइजे रह जा। अभी हमने शुरू कर दे लीजा, तो कैसे तोहरा जाय देव सर बोला था।

0: धन्यवाद बाप, बहुत बहुत धन्यवाद। चला गोरवा के तुम सुस्ता द बैठा था निसुन, हम एगो गेम करब सर, एगो गेम गिनी गिनी। इधर प्यास प्यार की खुशबू आ रही, क्या है, क्या लाए हो, छोका लगाने वाली हो। चले अगर आप लोग समझे नहीं क्या करने वाले हैं, वापस हम लोग बचपन में, हमने अपन बचपन में गिनी ले जाए। कौन ची करी, ओकर हाथ में चम्मच बाते, प्याज बाते, कौन ची करिया नी चोकरिया बुझाल, कौन ची करी।
1: मुझे दो आंटियां चाहिए और दो अंकल। अभी देखते हैं लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। अभी जो नहीं उठे ना उनको ही उठाऊंगी। आंटी जी इधर देखो जरा, आंटी आंटी मैं हूँ। अरे भाई इतना मुंह फिर रहे मुझसे, चलो बाद में देख लूंगी, अभी माइक ऑफ करने दो। आप आ जाइए ना, कोई तो आ जाओ यार, दो लेडीज और दो जेंट्स चाहिए। नीटू मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जाऊँ ना।
0: आले आले दो लेडीज,
1: दो लेडीज, दो लेडीज।
0: हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, ये प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, आप फटाफट आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज,
1: जल्दी कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये लाइव है ऑन टिकटॉक, लाइव है रेडियो के ऊपर, और बाकी जो हमारे लिसनर्स रेडियो पे हमें सुन रहे हैं,
0: रेडियो मनोरंजन,
1: आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन टिकटॉक, द शो इज लाइव RM3 रेडियो मनोरंजन। मुझे दो प्यारी प्यारी लेडीज चाहिए और दो जेंट्स चाहिए। अरे आ जाओ, या चार लेडीज भी चलेगा। मुझे आप लोगों का हाथ चाहिए, मैं गब्बर हूँ, हाथ चाहिए।
2: दादी अपना हाथ दे दो,
1: आ जाइए। टांगले आ गई, हाँ हाँ टांगले जी आप भी आ जाइए। एक और चाहिए, एक और लेडी,
0: एक और, छह और मिल गई, एक और प्लीज।
1: टांगले बोलते हैं उफ गर्मी लगी है, आज हम आपके जूस निकाल रहे हैं मैडम, जूस। एक आपके लिए प्याज, एक आपके लिए, एक चम्मच आपके लिए। हाँ करी बनाएंगे ना अभी, प्याज के करी, आपको पता है ना कि करना क्या है। मुझे दे दीजिए एक, ठीक है, इस पे रखो, ऐसे रख दीजिए, म्यूजिक चलेगा, ठीक है, ऐसे पकड़ना है और ऐसे चलना है, बिल्कुल हाथ आगे सीधा रखना है, चलना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे रुकना है। स्कूल में खेलते थे ना ऐसे, देखो उनकी प्याज गिर गई, उनकी प्याज गिर गई वहाँ पे अभी से, और फिर से चल के वापस आना है, ठीक है, लेकिन हाथ पूरा सीधा रखना है। और नहीं नहीं चम्मच को ऐसे जहाँ मैंने पकड़ा है ना बिल्कुल ऐसे छोड़ो, देखो आप भी देखिए जो टिकटॉक पे देख रहे हैं, ऐसे पकड़ना है सीधा, ऐसे ऐसे लेके चलना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, चम्मच को ऐसे पकड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं गिरेगा, आपको यहाँ पे पकड़ना है उसको। समझ में आ गए मैडम जी, चलो सब अपना प्याज रेडी कर लीजिए। नहीं यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ चम्मच, यहाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, थोड़ा और पीछे मैडम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यहाँ और थोड़ा सा, बिल्कुल एक साथ चलना है तो इस तरफ चलते हैं ना दीपशिका, इस तरफ चलते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए।

यहां से आंटी जी, यहां से आंटी जी, मैडम जी, आंटी बुलाया तो उनको सुनाई नहीं दी, मैडम जी एथे, अभी आप प्यार से पकड़ सकते हो उसको, ठीक है? हाँ, अभी बिल्कुल यहाँ पे कोने में पकड़ लीजिए, यहाँ कोने में आप इधर आ जाइए, आप भी ये लाइन देख रहे हो, लाइन, ठीक है? हम बोलेंगे 1 2 3 गो, चलना है, आप इस तरफ और थोड़ा सा आ जाइए क्योंकि वो मैडम वरना टेबल में टकरा जाएगी, ठीक है? बिल्कुल कोने तक जाना है, वहाँ पे जाके मुड़ के वापस आना है, ठीक है? इधर आ जाइए आप, बाकी हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं ऑन रेडियो, आप हमें फॉलो कर सकते हैं कि हम क्या गेम खेल रहे हैं एट LSR पॉइंट ऑफ रिक्रिएशनल सेंटर, जी हाँ, ऑन टिकटॉक RM3 रेडियो मनोरंजन। डॉम इज रेडी, चलो म्यूजिक, 1 2 3 गो। चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो, स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट रखो, हाथ स्ट्रेट, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी से उठा लीजिए, हाथ जो है स्ट्रेट रखना।

0: आप जीत गए। आपका नाम?
1: शीला।
0: शीना?
1: शीला।
0: अच्छा, शीला की जवानी बोलो ना, तब समझ में आता है हमें। अच्छा लगा, आपके तो प्याज भी गिर गए थे वहाँ पे। आपने उठाए, आप तो बड़े बहुत ही चंटक निकले भाई। मतलब घर में कोई एक प्याज भी गिर नहीं सकते आपके घर में, ठीक है। हाथ को हमेशा सीधा रखना है। आपको बचपन की याद आ गई टांगाले जी?
1: हाँ।
0: अच्छा लगा?
1: हाँ, अच्छा लगा।
0: किसके साथ खेलते थे बचपन में?
1: किसके साथ?
0: हाँ। तो मैं थोड़ी थी आपके साथ, ऐसे मेरे को देखा जैसे डांट रहे हो मुझे। मैं प्यार से पूछ रही हूँ, आपकी फ्रेंड का क्या नाम था बचपन में?
1: फ्रेंड नहीं,
0: नहीं पहले। बड़ी दुख कहानी है उनकी। इनकी कहानी बड़ी दुखी है। आप बचपन में ऐसे खेलते थे? मैंने बात करूंगी इनसे, मैं बात करती हूँ, ये मुझे डांट रही है, ये शर्मा आ गई। आप खेलते थे बचपन में ऐसे? किसके साथ?
2: मेरे भाई के साथ, दीदी के साथ।
0: और आप?
2: मेरे भाई के साथ।
0: भाई के साथ, मज़ा तो आया होगा। आज ये वाली ये मैडम जो है शीला, वो जीत गई है, तो उनको हम एक वाउचर देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेशन के लिए। बाकी सब ने अच्छा अच्छा किया, ये आपके लिए जेठा तिल सुरास की तरफ से, ठीक है। थैंक यू, मुझे मेरे प्याज वापस दे दो।
3: सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी। इसी के साथ गिनी आज का ये जो सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। इनका प्याज वापस कर दा, हाँ, जाके पकैयन खा सांझ के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, एक गिनीशा, उषा, डोमिनिक, हमारी जो टेक्निकल टीम है, दीपशिका है, और जितने भी वेदिता स्टूडियो में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिसिस पाउडो जो यहाँ पर इंचार्ज है, यानी कि लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर, और तेगासिन जो एसोसिएशन है, यहाँ पर आप लोग आए, आज इतना मज़ा आया कि नहीं।
0: वाकई में बहुत ही मज़ा आया। आप लोग जब भी साथ देते हैं ना ऐसे, तो हमारे दिल को भी अच्छा लगता है। हमारे पूरे रेडियो टीम की तरफ से, MBC टीम की तरफ से, आप सभी लोगों को, आपके परिवार वालों को रक्षाबंधन अभिनंदन। और अभी नेक्स्ट हम फिर कहीं और जाएंगे, एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जो लास्ट फ्राइडे होगा, लेकिन वो कहाँ पे होगा, नेवर नो, सरप्राइज। सो आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: जी बस हम उम्मीद करते हैं जो भी गाने हमने गाए आप लोगों के लिए, जो भी गेम्स हमने आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है, बशीर भाई को बहुत पसंद आया होगा, उनके लिए जोरदार तालियां। और ऐसे ही हम करते रहेंगे, और
3: आप आइए प्लीज, बशीर साहब आइए यहाँ पर, आओ आओ,
4: जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि वो एक अकेला है जिसने गाया है।
3: आपको एंटरटेन किया अपने गानों से। और हाँ, जाते जाते हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जेठा तुलसीदास हमारे पार्टनर को भी, और यहाँ पर आपको मिल रहा एक वाउचर, तो डेफिनेटली आप जाकर कुछ ले सकते हैं अपने लिए। बहुत धन्यवाद, ऐसे गाते रहिए और सबका ऐसे एंटरटेनमेंट करते रहिए। तो आज का ये सफर गिनी समाप्त
0: समाप्त। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली बार कहीं और।
3: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, बाय बाय।
5: थैंक यू सो मच।

0: टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी बहुत कमाल का ज़बरदस्त एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए सुहाना सफ़र आपके अपनों के साथ और हमारी पूरी टीम ने क्या मस्ती की है। हाँ वहाँ पर वेदी, यहाँ पर वेदिता, क्या बात है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारे बारे में भी सोचा। वैसे आप लोगों के साथ हम भी यहाँ पर स्टूडियो में डांस कर रहे थे, शायद आपको नज़र नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए तो ऐसे ही कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे आपसे हमारी पूरी टीम। फिलहाल अभी के लिए हम अगले गाने के साथ बढ़ने जा रहे हैं 2 बजे के समाचारों की ओर, उसके बाद सुहाना सफर प्रोग्राम को जारी रखेंगे।
1: You're listening to RM3 Radio, मन

0: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। आज भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करती हैं। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जॉन रिकॉर्डो आचान को जुलाई 2013 में ओकुले में ईशान कुआ को जानलेवा हमला करने के मामले में 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। घटना के समय ये मसाज थेरापिस्ट 23 साल का था। असाइजेस की अदालत में जज प्रमिता गुडियाल चितू ने सोमवार को ये सजा सुनाई। शान कुमार चुलन, जो मिटुन से ज़्यादा जाना जाता है, ने आज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। गांजे की तस्करी के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। आज सुबह रेडियो पर एक फ्रेंच प्रोग्राम के दौरान विदेश मंत्री रितेश रामफल ने बताया कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों में कोई भी मॉरिशन शामिल नहीं है। इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और कई अभी भी लापता हैं। मंत्री ने नेपाल की स्थिति पर दुख जताया और कहा कि नेपाली कामगार मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं और जहां तक मॉरिशस की ओर से संभावित मदद का सवाल है, मंत्री रितेश रामफल ने कहा कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा के बाद ही सामने आएगी। इस समय नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा सहायता हासिल करने की कोशिश कर रहा है और टिबेट की ओर स्थित पानी का बांध एक बार फिर टूट गया है। इस घटना के बाद बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने तत्काल नोटिस जारी कर बचाव और राहत कार्यों में जुटे सभी सुरक्षा कर्मियों और आम जनता से तुरंत सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। विल्नव मेबर्ग में 97 साल की 97-year-old की मिसेज बीबी जुबैदा रुसल साहिब, पैदाइश नाम तुगबाली और जो जुबैदा से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनासा आज शाम 4 बजे उनके घर विल्नव मेबर्ग से उठाकर रिविया डे क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

बन के साथ ही प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना जुदा नहीं होंगे बस साथ देने आए हैं और मोहब्बत का नगमा आपके लिए लेके आए हैं एक से एक बढ़ के आप लोग विदिता का साथ दे रहे हैं और यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए सुहाना सफर जी हाँ दो घंटे तक आपने काफ़ी मस्ती की अब चलिए कुछ रोमांटिक गीतों के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं और आपके साथ गुनगुनाते हैं

0: Dublin Free Radio. Radio.
1: चलिए तो अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं. फिल्म का नाम है दर्द.

मैंने चांद देखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाना आपके लिए रफी साहब की आवाज में। चलिए इसी के साथ ये सुदास जी की आवाज में ये गाना भी आपको पसंद आएगा।

चलिए जी, यहाँ पर गाना तो आपने ये सुधा साहब की आवाज़ में सुन लिया, अब चलिए लता जी की आवाज़ में एक और प्यारा सा गाना हो जाए। सभी हमारे जितने प्यारे प्यारे श्रोता हैं इस समय हमें सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। प्यार से लेके आए हैं आपके लिए गाने।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: You're listening RM3 Radio.
1: चलिए जी, यहाँ पर खूबसूरत गीतों के सफर में अब एक और गाना आपको हम नजर फरमाते हैं आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है शराबी और ये गाना हमारे तमाम उन सभी लिसनर्स के लिए जिस समय साथ दे रहे हैं हमारे

चलो जी, इसी गाने के साथ अब हम बढ़ते अगले गाने की ओर जो हमें ले जा रहा है 3 बजे के समाचारों की ओर। फिर आपसे आज के चर्चा कार्यक्रम में मुलाकात होगी। अभी के लिए आ गया दीजिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और रक्षाबंधन पे बहुत बहुत बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, स्पेशली हमारे भाई संजय के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। और हम उनसे कहना चाहते हैं कि दिल के किसी कोने में अगर कोई जगह बाकी है ना, तो वो जगह हम उसको उस पर अपना नाम लिखवाना चाहेंगे। बहुत सारा प्यार आपके लिए संजय भैया, एंड बाकी हमारे सभी लिसनर्स को एक बार फिर हैप्पी रक्षाबंधन।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं गीता जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का पांचवां संस्करण आज सुबह राष्ट्रीय सभा में शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और स्पीकर शगिन अमीरुद्दीन जिफ्रा भी मौजूद थी। दो दिनों के दौरान 76 युवा संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होंगे ताकि वे लोकतंत्र और सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। नेशनल यूथ पार्लियामेंट युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का मंच देता है, साथ ही उन्हें अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिलता है। आज सुबह प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का मुख्य मुद्दा मॉरिशस के युवा स्नातकों का विदेश जाना और प्रतिभाओं के देश से बाहर जाने की समस्या थी। इसमें प्रतिभाओं को देश में बनाए रखने और युवाओं की शैक्षणिक योग्यता तथा उद्योग की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने उनसे कहा कि जीवन में वे जो भी काम करने का फैसला करें उसे दृढ़ विश्वास, साहस और इच्छा शक्ति के साथ पूरा करने का प्रयास करें। आज भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का त्यौहार है जो हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करती हैं। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। शान कुमार चुलन, जो मिटन से ज्यादा जाना जाता है, ने आज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। गांजे की तस्करी के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। और विदेश खबरों में, तिब्बत की ओर स्थित पानी का बांध एक बार फिर टूट गया है। इस घटना के बाद बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने तत्काल नोटिस जारी कर बचाव और राहत कर्मियों में जुटे सभी सुरक्षा कर्मियों को और आम जनता से तुरंत सतर्क रहने की अपील की है। और अपने पिता हैरल्ड फाइव के निधन के बाद किंग हाकन आठ ने नॉर्वे की गद्दी संभाल ली है। हैरल्ड फाइव 35 वर्षों तक नॉर्वे के राजा रहे। आज तड़के ओस्लो के राष्ट्रीय अस्पताल में उनका निधन हो गया, जहां उनका एक दुर्लभ खून संबंधी बीमारी का इलाज चल रहा था। इसके साथ है संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। विल्नर्व मेबर्ग में 97 साल की 97 ईयर ओल्ड की मिसेस बीबी जुबैदा रसूल साहिब, पैदाश नाम तोगोबाली और जो जुबैदा से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर विल्नर्व मेबर्ग से उठाकर रिविया डे क्रियोल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: Or, phir

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्ते। आज के चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम आपको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमारे बीच हमारे आज के जो अतिथि हैं वो हमारे साथ है कपिल देव रघुनंदन जी का, जो हमारे वकील है, उनका स्वागत करते हैं। कपिल देव जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
0: हमने के कार्यक्रम में स्वागत बा
1: शुक्रिया।
0: रक्षाबंधन की बहुत बहुत बहुत शुभकामना।
1: और हमने बोलती सकी हमने के सब बहन के रक्षे भाई अभिनंदन,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के जो हमने के कार्यक्रम बाय करमाए आप हमें के एगो विषय दे रहे हो इंडिविजन।
1: हाँ जी,
0: हाँ ना। तो ये जो आज के हमने के विषय बा एकर नाता कौनची से बा और कौन सी गर्भ जांच।
1: अरे पहला चीज ये कौन सी है ये इंडिविजन, जैसे हमने बन से अंग्रेजी तो बोल रहे हैं इंडिविजन में है क्रियोली में या फ्रांसे में इंडिविजन। इंडिविजन के एगो एग्जाम पहला दे ला सोकर देता है में अनमन एगो माँ बाप का कर ले बा गातू है पकड़ ले बा अभी वो गातू का पकड़ ले बा उकर से बुझो

0: दस गोलाई का बा तो वो गतवा जो माँ बपुआ पकेले बा वो बाटे खोजता उकर दस गोलाइकुआ में हर लईकुआ के जोन बा उकर उकर भाग बा उगतवा में।
1: अच्छा
0: अरे तो दूसरा चीज अब गातों के छोड़ देला सर, अब हमने देखी ना सर ई एजिविजियों का जब एगो परिवार माँ बाप ही तो परिवार है, माँ बाप जे कब गुजर जाला तो वो जो ओकर जीबिया छोड़ के जाला तो वही जीबिया वहाँ ये जमीन हो घर हो कुछ हो तो वो दिखबा वो एजिविजियों में हो बा। मतलब कि हर ओकर लड़का के ओकर भाग बा ओकर हक बा उ जीबियावा में उ मटिया में या घर हुआ में।
1: यानी कि हम ई समझत हैं कि एगो माँ बाप कितना जमीन खरीद ले बा या तो फिर ओकर जायदाद बा लाभों पर जितना ओकर पैसा बा ओकर लुत्तो बा तो जबले माँ बाप लोग रहलन सा लड़का लोग अपन अपन घर बना के चल गएलन सा अब उ लोग के जोन घर माटी रगल बा हौ के उकर कैसे लापताश बोले जाला उकर लापताश होई।
0: हाँ अभी हाँ यही देखब सर खूब बोल लगा मैं जोन चीज छोड़ के चल गल बा माँ बपुआ उही में हर उकर लड़का के दसों गो लड़का रही तो दसों के उकर भाग बा उ जमीनवा में और भाग कैसे आजीरे सब के पार बा में पार एगाल बा।
1: अच्छा हाँ ये पूछे के रही कि जब पार मिला था तो पारवा एगाल रहेला कि हाँ। माँ बाप मरे से आगे बोल देवे लंसा कि कौन ची मिले के बाद
0: ई नोमालमा कब मर गई लंसन हाँ। तो उलोग कुमा जे उलोग के वश्यत कुमा जे उलोग के पताज नहीं करे कर हाँ। ले रहे लंसन हाँ। है कानून बोलेला कि हर माँ बाप के चाहेला नहीं देखे कि बेटा है या बेटी है उकर पागरे मिले के चाहेला में हमने के कानून में ई में फिर बीवा एगो डिस्टिंक्शन बोलेला जब एगो माँ बाप एगो लड़कुआ के ज्यादा खुशी रही या वो लड़कुआ ओके देख ले बा ओके कुमार देखभाल कर ले बा उसकी एक कार ओकर जो जीविया बा वो लड़कुआ के दे दे दूसर के कम दे दे।
1: अच्छा तो ये सब लिखल बा।
0: हाँ लिखल है कानून हम तो आई ला खाली जो कानून में लिखल बा उतना बरिस से आके स्पीके करीला में खाली एकरे नाम कोचिते जिस्पुनिब
1: तो एकर में आजे माँ बापवा जोन बा मान ला उकर दू गो लड़का बा एगो लड़कुआ वालों के देखभाल करलक सब कुछ करलक और एगो लड़कुआ जोन बा मारने को मारू लड़का निकल गल कुछ नहीं करता तनी धमकी दे माँ बाप के मारे इधर उधर करी तो माँ बाप के उकर उकर उकर उकर हक बा कि जितना उकर जमीन जायदाद बा वो एक गो लड़कुआ के दे
0: नहीं एक गो दे नहीं सबकी दे में एगो के कम भी दे ये है।
1: अच्छा
0: समझलन प्लास में विषय मत
1: लेकिन चाहेला ऊ लड़कुआ कैसनो रही ओके चाहेला दे के
0: कैसनो रही पूवील कानून बोले ला
1: उकर लड़का
0: नहीं उकर लड़का है मैं कभी लड़का के कुमा जे बाकिस जहाँ माँ बपुआ के मार ले बा जहाँ माँ बाप के उकर लागो छिपले बा कि ओके मुआई के लेते सियो रहल बाईस अभी तो दिग्गत का हुआ था हमने के सोसाइटी में आज ही जैसे हुआ था तो ई में ओके सकेला नहीं हो दे
1: हाँ ई ई ई के हमने के जो जज बा ओ देसी दे हो
0: नहीं नहीं वो नहीं देसी दे वेला देसी दे होएला का कानून बोलेला।
1: अच्छा
0: जब कानून आवेला तब वकील ओकर केस डालेला ओकर लाकुर के आगे एक्सप्लिके करेला जीज के देखो ये ऐसे होल बा अरे एगो बोली के काल कुमा जे एगो लड़का रहल ओकर है माँ बाप के अब उ पार मांगता दूसरा भी हई मांगता दूसरा लोग सके अपन भाई लोग बोले के नहीं देव सर वो तो एगो वकील के अब दे तो के बोली ना कि जानेला ये भैया हमर माँ के मुआई के कुमा जी हई कर ले रहल पाठ में जैसे मुझे बोला सर वो कि मुआई के रहल वो किस्त आ रहल किस्त आ रहा लाकुर में वो पपीवा जिस में वो आके उठा के फेंक दे कराबो के तो कराबो का उल्ला केस हुआ ले हुआ जिजुआ खुशी रही नहीं खुशी रही कब ऐसा नहीं वो केस हो गल बा तो ओके कुमा जी चाहेला अबाइड करे के कौन सी कानून बोलेला कानून जिस का करेला माजिस्ट्रेट उलो खाली अप्लाई करेला जोन कानून लिखल जनरली जो भी हमने बतियात हैं सर खाली अप्लाई होल जला नहीं कि कुमार जो अपन निदेश से डाली वो नहीं तब दुखमत तब ये होया करी जब अब जोन कानून बा ओके एंटीअपरेट करेला एगो जीज एगो मजिस्ट्रा आरे ओकर फैसला देवेला जैसे ओकर प्रेवू मिलेला
1: यानी कि कानून के दायरे में रख के चहला फैसला ली की जोन कानून में लिखल बा होवे चहला अबाइड करी
0: अबाइड करी के तो यहां देखला का होल हाउ लाइक

0: डिस्पोनिब एगो बुट से एक कार मटिया से जोन बा छोड़ के तीन कार हुआ एक कार मटिया के जे के ओके मन हुई दे के जे के बताइए तो मतलब हम मदमुआ के सिबुजों के मन बात दे के सखी दे दे दूसरा ओके मन हुई एगो दुनाशो करके बोलिए अरे हई हई में जन्म में तो बहुत मजा कमैली पैसा रहल हौ जन्म के का करते हैं हमके मन बा भूमि दान दे के भूमि दान तो सबसे बड़ा दान है आदमी बोले हई तो पुस्तक बताए हम नहीं बताई मैं तो हुआ का करी तो जाके एगो बुत माठी एगो शिवाला हुई चैच हुई लिगलीज हुई मोस्क हुई बोले नहीं एगो बुत हम अपन जोन हमर हल हमके कानून जोन बोलेला उ कौन सी सकब हम करे उ मटिया उतना बुतवा से चलो हम एगो दे दिला तो हिया लैको लोग नहीं सके कुमा जे हई उपजिक्ति करी वो कर दुआ है वो बुतवा से कुछ करी।
1: अब जोन माटी बोला थोड़ा दान करे के इत पहले से परेला जान ले के कि हाँ इतना माटी बा है मटिया के दान करे के बा तो अपन वसीहत बनाई कि हमारे लड़का लोग के पताजे कर भाई से चीज बा जमीन बा कुछ बा है पताजे करत है और यही जोन रगल बा बोला एक करवा जोन बा हम दान करब या कोई की देवब तो ई सब जोन बा मरे ले आके वसीहत चाहना बना दे के गो
0: नहीं एक चीज सखी करे अब ओकर कुमा जे है मन हुई आली एगो बोली के कुमिया त वसीयत त नहीं बनाई ले बा ना पसिया त लइकवा लो के दे नहीं देले देले ही नहीं बा उ लोग के पार आज ही देखत है से एज विजन अभी देले नहीं बा मैं उ लोग के मिलबे करी जब मां बापवा गुजर जाए पस ओकर त लइका है मैं हौ बुटवा जोनो के मन रही दे सैफ उ सकी जाके कुमा जे गो नोतेर के देख के गो तेस्तामा करे के
1: अच्छा
0: तेस्तामा कब हुएला अविगे आवेला एगो ओकर वालिया हुएला जब आदमिया गुजर जाला
1: अच्छा
0: तो ओकर कुमा जे कब जीते ही रहल जाके कुमा जे है एगो नोतेर के देख के बोले हमके मन बा एगो तेस्तामा करे के हौ घरवा उ मटिया हम कुमा जे हमके मन बा दे दे के ऊ है दुनाशों के सिपा ले सही के शिवाला के या हौ मडमुआ के
1: हाँ
0: तो सखी ऊ कुमा जे दे कब ऊ मर जाए तब ऊ तेस्तामा ऑपरेशन में हो गया
1: लेकिन तो, लेकिन मरे से आ गया जो तिस्तमावा नहीं कर ले बा
0: हाँ,
1: अब मान ला सोच ला कोई के बोले बा कि हम जमीन मा देव
0: हाँ,
1: कोई के हाँ, या तो फिर ओकर को दूसरा लड़का रहे पत्नी रही या तो फिर ओकर हाँ, कैसे बोला कि दान करे को जाता लेकिन आज उ करे से आगे तिस्तमावा करे से आगे आज ओकर देहांत हो गल अब मान लो कोई के बोले बा जबानी बोले बा कि हम देव तो जब ओकर देहांत हो गल तो कोई नहीं सकी बोले कि हाँ है जो जमीन मा बा ये हमर है बोले हम के दे के
0: हाँ, कोई न ना ओके मिल बो करी
1: ना कोई के मिली
0: नहीं मिली
1: यानी कि तेस्तामावा जरूरी है आज तो हर मन बा कोई के दे के तोरा चाहला जीते ही में तोरा चाहने को तेस्तामा कर दे के कि देखा भाई है जोन जमीन मा बा है जमीन मा पर हम है फलना के देवे खो जाता है
0: हाँ,
1: और या तो फिर हम कोई के दान करे खो जाता है लेकिन ऊँचा ना पहले से कर दे के
0: हाँ अरे एक बार नहीं मैं सीजो हमें नहीं बताते हैं एक मिनट की जैसे बोला हुआ एक बार बार नहीं है दादा दादा हो गया को छोटा लड़का हुई छोकड़ी हो या गो छोकड़ा हुई तो ओके बड़ी खुशी रहेला बा दादा लोग ऐसे या हाँ, नाना भी हो गया हाँ, हाँ, ओके खुशी रहेला मैं हिया तो लड़का आगे आवेला तब वो आवेला तो सकेला गो वशत करे कि मर उ जाए तो उकमा जे ऐतेल बुतवा जोन ओकर धुआ का दे के बोले मर हो बेटवा के छोटका मर है के नेवेवा के सीपा मर नातिया के सजिए ओके दे दे हाँ तो उ जाके और जाके सके पर ओकर भाई कर दे ओकर तेस्तामा सब कब मर जाए तो बुतवा मिलबे आर कभी होएला बोले लनसन कि है बुतवा एगो माँ बाप बोले ला है बुतवा जाने ले ऐतेल के दे दिए तो ओकर लड़का कब पताश करेला तो उकमा जे है माँ बापवा के बोलिया ओके कुमा जे रखेला बोले नहीं मर बाप हमेशा बोले ए ओके दे दिए तो कुछ बात नहीं हम अपनी के अपन पार निकाल लेब सर मैं हो बुतवा जोन रगल बा हमने ओके दे दे ओइले ओके दे देब सर
1: अच्छा तो इस ई भी सकी होई
0: हां ई भी सकी ला
1: होई बरेले आगे मान रहते सामो नहीं होल बा दुगो बेटा हो मन जा और बोले तुन सके हमने के बहिन के जोन बेटवा रहल मन बा ओके पापा के मन रहल ओके दे के है जमीनवा तब हमने जब अपन लापतास करब से तब वो जमीनवा ओकर खाते ओ लोग के दोनों दोनों भाईवन के धुआ है कि अपन बहिन के बेटा खातिर वो जमीन निकाले के
0: हां अब वो लोग चाही तब बपवा तो बोल देले बा अब ई लोग के मन हो
1: ई लोग के मन रही
0: हां तो
1: खुशी को वाजा के लायक रही
0: हां हां
1: धुआ
0: हां धुआ
1: हां जब एक करवा बा ओ लोग के धुआ
0: हां बस की काहे कपोता सजवा करी हम पंतेरवा जाए हुआ बोली उल्ले के दुगो परुआ निकाल दे हाउ भूतवा जो शिव जो रही तो कुमा जो हाउ नमुआ जो जेके मिले ओकर नामे हई कर दे प्लो सब कर दे सब तब जयन से नोते रही तो सकल दाई करे ई दुगोवा भैया ऐते नैते लई हाउ भूतवा जोन हुई जेकर नामे दिले बा ओके मिल जाए। अब आई ला सर हमी के सीजेवा में ए जीविशो में मतलब जैसे हम बोली माँ बाप का गुजर जाला जीबियाँ छोड़ के जाला

0: या जमीन ही एगो है बोली ला छोड़ के चल जाला तो ऊ जो ओकर कुमा जे जिबियावा पाथी मान जैसे हमने बोली ला सर छोड़ के जल गलबा और जो ऊ ओकर रखल तो सब जेरीचिए के मिलेला सब लेखा के गो माँ बाप के कुमा जे कब छोड़ेला ऊ लोग के हक होला ऊ जमीनवा में और ऊ लोग एज भी जेल में देखब ऊ लोग सब जेरीचिए के मिलेला जब एगो माँ बाप गुजर जाला ओकर धन में। अब देखिला सर हमने के जेगिचे अभी तो पताज नहीं होल बा जब पताज नहीं होल बा एगो जमीन के जो माँ बाप छोड़ के चल गल बा एकरे नाम है एजिविजियो। एजिविजियो हो जाला रह जाला एगो जमीन जहां सर भाई बहन लोग के हक बा उस जमीन में जो ओकर माँ बाप छोड़ के गल बा और पताज कब हो जाला तो उस जमीन एजीवीज अब नहीं रहेला बस कि पोताज हो जाला तब तक ले पोताज नहीं होल बा माँ बाप जोन जमीन छोड़ के गुजर गल बा ऊ जमीनवा में देखबा सब लड़का लोग के हक दबा सब लड़का के एगो पार मिले के बा अनमन पारे ही पारे आ तब ले जैसे हमने बोले सा कोट पाव मतलब एगो भाग हर जेविचिए के बा ओ है जमीन में। मॉरिशस में एक बार हम देख ली का करेलन सन ये अभी तो हई बोली सब माँ बाप के कब ऊ गुजर जाला एक बार हई रहेला अरे भाई बहन एगो बोली के हम कहाँ दूसर जगह हमने तो बहुत बार भी दूसर आदमी कहाँ करी एगो जमीन देखी तो ऊ बोली ओकर यहाँ पैसा नहीं बा होतना बस एक से गुजो मांगता दू दे मिलियों के ऊ जमीन वहाँ बेचाता ये लोग कहते ऐसे बा दूगो हई भाई या दूगो जिससे पा गए आदमी कैसे हमार तू है जा हमने के मन बाक मजा उस जमीन वहाँ किने के तो तू बोले है कपिल देव भाई द एक मिलियों हम एक मिलियों दालीला चल संगे उमटिया किन अब हाँ। तब गईला कोतरवा कब बनैला संगे किन ले हुआ तो उस जमीन वहाँ जोन बा एजिविजियो में बा बस कि संगे किन ले सकर पोवा मैं पता जुआ तो नहीं बोलवा कि आधा तुअर बा आधा हमर बा में किनल में एजिविजो तोरो नंबा उमटिया में
1: हाँ।
0: हमरो नंबा उमटिया में
1: हाँ।
0: तो हमने के भगवान दोनों के उई में
1: हाँ।
0: तहिया एजिविज ही बोलेला तारे देखब सब आदमी जिवोस करेला तो कैसे ओकर घर कब चलेला कैसे ऊ में एजिविजो में होवेलन सन। अब हिया देख ला हई के हई भाई बहन लोग सब कोई के जाने लन सन माँ बाप कब गुजर जाला उस जमीनवा में उ लोग के एगो हक बा ये लोग के पार बा और उ लोग के आत्मीय होवेला एक एक गो पार। अब ई में देखब एजिविजो बा और मेम दुआ हर लही के भाई बहन के मेम दुआ होवेला उ जमीनवा में एगो बोली के हमने के चार आदमी है सब हमने अब चार भाई बहन है सब हमने के बाप छोड़ दे बा चार बीघा तो हर एक एक बीघा चाहेला हमने के मिले के भाई बहन के ऊ तो फसकियाँ बपुआ तो हिया ओकर वसियत टूट माजे कुछ नहीं बनाई ले बना मर त गल बा तो जमीनवा खाली छोड़ के चढ़ गल बा कब हमने पताज करब सर तो हमने के चाहेला पताजे करे के एक बराबर में इक्वल वैल्यू नहीं सकी तुहरा मिले है जहाँ एगो हई जमीनवा बा कुमा जो ओकर वाले है कैसे कभी आगे घर के आगे ओकर वाले सीमा के आगे तो ज्यादा है वाले बा
1: हाँ, हाँ,
0: पाछे वाला जोनो के मिलेला देख बा ओके कुमा जोकर तो कम वाले रुआ हुई ना मिसेल मा जब अपेरवा इलेक्जेसिसवा करेला तो जोन के आगे बा एगो बोली के ओके बोलिया ले तोर दापे मा दसे पैस मिली
1: हाँ।
0: जो पांचे बाकर वाले हुआ के इक्वल करे के तो दे 15 पेस
1: अच्छा
0: हाँ बस की काय ओकर वैल्यू के चाला दे
1: कानून में
0: हाँ नहीं हाँ। ये ओकर कानून के
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इक्वल ना इक्वल के ऐसने हुई दूसरा चीज सकेला बोली ओके तो कि मिलता है यहाँ 10 पेस अच्छा बा 10 पेस हुआ के बा एक एक मिलियों से बा 2 मिलियों वो बा हाउ के मिलता बड़ी कमती तो एगो शुल्क तो के दे के चाहेला शुल्क एगो पैसा है हो भाई वा के जोन कमती मिले तो अगर वाले है तो के चाहे एगो पैसा दे के
1: अच्छा
0: हाँ तब ना इक्वल हो बस एक तो यहाँ मिला था 1 मिलियन अब ओके हुआ मिला था से बुझो है 800,000 तो यहाँ तो 200,000 के कम मिला था तो नहीं चाहेला कुमा जिया ओकरो मिले के अनमन एन मिलियन ईयर तो एन मिलियन से बोली देखो तुहरा 200,000 चाहेला हो बहनिया के या हो भैया के जो पाँचे बगल के मिले था ओके पेये करे के ये कब देखवा पसाज हुएला नहीं कॉमन सेंस हम तो बोलती चाहेला कब कोई के दे के कुमा जाए मिसलमा एक बार भाई बहन बा वो रेगौदा नहीं

0: करी। हाँ। वो बोली देख तो के मिला था कुमार आगे है 10 पैस उतना के वाले हमके कमती मिलता पाछे कुछ बाई नहीं हम
1: सीमा दे दिए पस की चना सीमा छोड़ के ना।
0: हाँ नहीं उस सीमा में हर एगो सीमा की बात बोला हर कब एगो पहताज होवेला पहताज में नहीं बात कर रहे समय आप सब पितार पहताज में हर एगो जमीन का पहताजे होवेला जेगिचिए में तो चाहे ले एगो सीमा नहीं सके नहीं कोप्ते में से आवियों में से आगे सीमा से जाके पाछे भगा
1: सही बात बोल
0: तो के चाहे ने गो सीमा ए अरे गो सीमा चाहेला निकाले के जो पाछिक बा कि सकल जाए सिबोजो दुगलो तो फासिल आले तीने पिए के सकले निकाली तभी गोद में गुजर जात रहल। हाँ। गो लो तो शादी हो गल त जाता हुआ मजे काहोस करे त कैसे लो तो हुआ जाए हिया को मजे है आई के जाए के आदमी के मुश्किल होत हल त हां त ई खातिन कानून भी मजे बदलल बोलन सन के गो सीमा मिनिमम चाहे ले गो 5 पिए के मैं अभी के लिए त जैसे चला था आदमी त 5 पिए में भी नहीं सैटिस्फाई बा वो खोजता एटलीस्ट 8 पिए से 10 पिए एगो सीमा निकाले के
1: चाहिए जाए
0: के फासिल हो जाए आली तहिया देख ल जब माँ बापवा छोड़ देले बा एगो है जमीन है चल गल बा गुजर गल बा हर भाई बहन लोग के हक बा उ जमीनवा में बराबर। एगो दूसरा एग्जाम देला माँ बाप के दुगो लड़का रहल। हाँ। अब दुगो लड़का रहल एगो घर बा एके वो घरवा दूगो लड़का के तो उन्हें छुरी से नहीं सिपा कुत्तो से काट दे घरवा ना यहाँ बस के ओकर पता जो के मिले के चला ओकरो हक बा तो यहाँ देखब उ घरवा जोन बा उ घरवा में नी प्रोप्रिएटी मतलब कि प्रोप्रिएटी हौ दूगो लड़कुआ बा। हाँ। बपुआ तो मर गल। हाँ। अब तो महा कोतल नहीं होल बा दूसर बात है मैं ओकर हक बा दोनों भैया के उ सिपा बहनिया के उ घरवा में हिया देखब कि दोनों के उ घरवा में हक अनमन बरबा तब ले पताज होई पितार होवेला पताज नहीं सकल लाई होई उ घरवा जे कुमा जे जीविजे करब तो कुमा जे नहीं सकल लाई जीविजे उ भी देखब सर अभी के लिए देखत हैं सर कि एगो घर कब एगो कुमा जे माँ बाप छोड़ के चल दला दूगो लड़का बा उ घरवा में दोनों के हक बा। हाँ। मैम की वो कीपे कर ले बा हाँ वो की पे बताइए एगो भैया और बहनिया ने यो की पे कर लेवा दूसर जगह रहता कर पति से वो घरवा में वो करो हक बा बराबर आदमी बोले नहीं तो अपन पति संगे रहते हुए तो तक कुछ नहीं बा हिया
1: तोर तो घर हुआ बा।
0: हाँ तोर तो घर हुआ ही का यही बोले रंसन तोर तो घर हुआ बा नहीं ओकर हक बा बहनिया के अन मन जैसे हो भैया बा रहता वो में नहीं रहता में ओकर बहनिया के अन मन बराबर बा ओकर हक तहिया देख ला उ लोग एजिविजो में हो अनसन तब लिख पताज नहीं हो एगो सिक्सेशियो में और जब जे एगो सिक्सेशियो में ओकर हो जला पताज सबके मिलेला जैसे सब कोई हमने जानी ना सर एगो कोतरा जब ओके कोतरा मिलेला तो देख बहिया मजे खत्म हो जाला एजिविजो अरे तेरे लोग बोली ना पति पत्नी शादी कर ले हो अनसन मम्मी तो बड़ी खुशहाली की बात है मैं कहा हुएला अरे बाप झनक पटक तो होते हुएला एगो शादी में देखब पति पत्नी में लिमन से चलेला नहीं तो ही खातिन कानून बनाई ले बा जीवोस। हाँ। अब कहा हुएला पति पत्नी दोनों कुमा जब जब शादी कर ले रलन सन तो का कर लन सन एगो घर बनाई लन सन और एगो जमीन खरीद लन सन मतलब एगो जमीन खरीद लन सन दोनों संगे। हाँ। और दोनों संगे बनैलन सन एगो घर तो उ लोग के दोनों के यहाँ एजिविज में वन सन घरुआ और मटिया पतियों के है और पत्निये के है तो दिखब हिया खाली पापिये में भी लिखल बा तो पताज नहीं बा दोनों के हक बा उ में बस की किनले वन सन संगे शादी में तो दिखब हिया उ लोग के मजे जमीनवा एजिविज में है वन सन नहीं जन हई बगल क्यों के मिलता कि पाछे के मिलता कौन बगल हई बगल घरवा कि हऊ बगल नहीं दोनों के अनमन जैसे स्प्लिके कर ले रही तरेलुआ एगो गातो बा पक्कल बा गथुआ हुआ

0: अब कोई के आधा आधा कटबा में काटे के गाड़ी उगतुआ में दोनों के हकबा। तो यहाँ देख ला पति पत्नी जब उ लोग कुमा जैसे शादी करे लनसन को ओकर नामी ऐसने तो ऊ देख बा पति और पत्नी दोनों के हक बा उस जमीनवा में उ घरवा में। ई एक में कभी हुए ला पति पत्नी शादी कर ले वनसन कोई बिया नहीं सेपारेशन जी बिया। एक बार आदमी बोले ला खाली ही बुट में देखे ला बोले सेपारेशन बिया तो ओकर जमीन ओकर हमर जमीन हमर है। नहीं कभी पति पत्नी शादी कर ले वनसन सेपारेशन जी बिया में सेपारेशन जी बिया कब शादी कर ले वनसन कभी बोले अनसन अरे हमने तो शादी कर ले खाली पापी में सेपारेशन जी बिया में हमें तभी लोकातेर रहते हैं सर लोकातेर वा के घरवा तो होकर नहीं है ना को नामे लोकातेर। तो बोली काहे ना चल हम आर तू हमने के आधा आधा पैसा डाल के एगो जमीन खरीद सा संगे और एगो कुमा जो घर बनाई सा तो मेम की शादी कर ले वन सन से पागासियों जी बियाए हिया तो संगे बना कुमा जो है घरवा बनाया हो तो वन सन जमीन वा तो संगे की लन सन
1: नाम तो दोनों के बा
0: नाम की तो दोनों में के बा
1: दोनों के नाम से हुए
0: ना हमेशा हम बोले थे अरे बोली ला सहिया यही तो एगो मीडियम है। जब एगो पति और पत्नी मेम की सेपारेशन जीबिये है कुमा जे में शादी कर ले वनसन वो बोली पस की हमने की बा ना कोई बिया सेपारेशन जी बिया शादी कर बोतरा में है ने उन्हें अरे तो का करे के चाहे ला कब शादी कर ले सेपारेशन जी बिया और कब सेपारेशन जी बिया शादी कर ले तब कुछ खरीद ल कैसे जैसे बोली हो जमीन हुआ हमेशा हो पति हो या पत्नी हो बड़का एगो कौन से ही बोलती सब चीज जब कुछ किनब
1: ऐसी रखा
0: बोल दिला रेसी रख तू अपन हाथ से का किन ले कुमा जे जमीनवा में कितना पैसा ले लेबा तीसरा कौन लोन ले लेबा अपन नाम में लबंकवा से सब रमास के रख उ सदिया तब ले जाला चले ला आज के जमा में नया में नहीं सकब बोली एगो शादी कुरेक सकी हमेशा के जाए या काल दिखब कुमा जे टूट जाए में कब आई पताज करे के उ जमीनवा की तू तो बोली नहीं आधा तोर आधा हमर बोली आधा तोर आधा हमर लोन तो हम ले ले रही अपन पैसा से कोरेक बा
1: मासो के तो हम पे कर रहे घर बनाए के हम पे
0: है का बा मासो सी ने कर
1: हमर लोन ले ले हैं हमर तो यहां पर पे बा तू मासो के पे कर ले तो कौन पे बा
0: हां
1: ये सब सवाल उठेला
0: ताई देखला कब उसे उठेला कब और कौन कौन डिपोज कर ली बा कौन कौन चीज अपन से है किन ले बा अरे को मैं भोई सोफा तो बड़ी झोली बा 300,000 के सोफा किन के रख ले बा वो बता नहीं बस कि कब पता से होला दोनों में होला मैब ए इमैब मैब के मतलब है
1: सब हाँ
0: हाँ पाखी सी बगा लिली
1: फर्नीचर
0: हाँ फर्नीचर और दूसरा तो है घमनी जाने से घर हो या माटी हुई तो हिया बोलिए ना सोफा हुआ है का देख हम यहाँ तिल यहाँ से मगजों से किन ले रही है का बा नहीं हिया अब जो प्रॉब्लम हो पताज के विषय में तो कैसे ऊके बोली बोली इतना हमर बा तीन कार तो हम किन ले रहे बोली का बोलत हुए तीन कार तू किन ले है का देख हम अपन ऋषि रख ले रही ओके सुख हो गल तो हियाँ कानून नहीं सकी कोत जाए कि कब एगो पताज होई ओकर कुमा जे मिले के ओके कितना के हक माजे ओकर उभा हक कितना बा तो देखी ना कौन कौन ई किन ले रहल
1: हाँ
0: तो ये देख लो हियाँ उकमा जे बतैलक कोई ओकर फेव बा कि ई चीज वा अपन पैसा से आ रहल ते ही कौन सी वा हम बोलती जब शादी कर ल हो से पारेशन जी बियाह से तू कब कर ले हुआ बाप लीमन से अपन पैसा कुमा जे कबर किनब ते अपन हैसी रखिया जे गईल नोटेर हियाँ हुआ बोलक ते कुमा जे हम ते बोलती नोटेर कभी नहीं लिखेला मैं हाँ तू नहीं बोलबा तो का लिखी
1: हाँ
0: एगो जमीन किनलक कुमा जैसे बोझो एगो है एन एक मिलियों में पति पत्नी में अरे पत्निया डालता 700,000 और हिया मिशेवा डालता 300,000 तो कल तो पताज होता ओके तो आधा आधा मिली
1: हाँ
0: तो यहाँ तक कुमा जैसे शिष नहीं बा ना तो नोतेरुआ के ओके बोली कि हम कौन तो भी बे करते हैं मटिया किने में 700,000 हम डालते हैं अपन पैसा

0: पैसा और उदालता 300,000। जब एक दिन प्रॉब्लम हो उस विषय जमीन वहां के तहिया तो प्रभुआ बना कौन कॉन्ट्रीब्यूशन जब पतजुआ हो तक मजे उलोक में कोई बेच दे कोई दूसरा आदमी किन ले मटिया तो बोलिया हाँ करे
1: सेपरेशन जो बिया में जब बोला था वह कि मान लो कोई 300 दल लेबा कोई 700,000 दल लेबा या तो फिर कोई सोफा किन लेबा या तो फिर कोई अलमारी किन लेबा या तो फिर कोई ला क्विजिन में के सब जितना बा सब कुछ कर लेबा यानी कि जब सेपरेशन जो बिया करत हो तो हर जितना रिसी बा सब फैव के तौर पे तोरा चाना रखे के इन्हें बोला थे जा कि जब शादी हो जाए तो तोरा जिवोसवे जाना करेगी लेकिन काल की कब कोनो प्रॉब्लम हो तो जाना था इस सब तोहर संगे बा। अब मान कि जे लोग कोई भी शादी कर लेवा
0: हाँ जी
1: तो लोग तो त्राका नहीं लिया सा जो घरवा में तो जो चीज की ना आधा आधा हुई
0: ना
1: हाँ। तो कबो कबो ई भी होवेला कि घरवा में मान ला जब कोई भी बोला थे जा तो मान ला कैसे पति पत्नी के लुतुक इनके दिलक तो अपन नाम पर अपन नाम पर ले लेबा वो पे करता लेकिन गाड़ी मदाम की किन लेबा तो जब जिवोस होवेला तो गाड़ी तो मदाम के बा लेकिन
0: ओकर नाम में बा
1: ओकर नाम पर बा
0: हाँ तो ओकरे ही मिली यही तो बोले ला देख के सोचू के देखे के जाना एक बार हई पति नहीं करेला सिबोजों सेपरेशन जी बिया अभी ताल को बिया में से सेपरेशन जी बिया कर लेबा अब सेपरेशन जी बिया कर लेबा तोहर जमीन तू रखा एकर जमीन ई रखी ये तो बड़का आते रह बोल फिकिर का करत हुए हम तो के काल दू बीघा जमीन हम किन के तो के देवत हई तो कोतरवा होल केकर नाम में जोन के दे देलक ना ओकर पत्निया के सुबो दे देलक नुतीर तो ओकर नाम में दे लेबा ऊ किनलक ओकर पैसा से काल एगो को मजा प्रॉब्लम हो उस सदिया में तब जमीन में तो जाई ऊ है मेम की मिशे वा किन के ओके दे दे लेबा नमुआ में तो कर समझल न ये एगो चीज बड़ी है बढ़िया कभी एगो चीज करबा गो शादी में बहुत चीज जान मजा सोच के चला नहीं जानब ये जमाना चल गल हमनी के बाप रहल था कुमाजर माँ तो पहले सब कहाँ रखल
1: नहीं
0: रहा भी अभी के जमाना में नहीं जन्म अभी शादी कर लो आज बाप एक समय की बात का सके लो एक समय के नहीं हम तो देख रहे हैं आज ही शादी वाला काले शाम तक टूट गल वस दिया मैं ये सब हम नहीं जाते हैं सर मैं चाहेला सोच विचार के कभी कोई चीज किनब या देब जब जाने के तोरा का करे के चाहे
1: काहे कि जब तोरा रिसी नहीं रही वो खुशी कोई ब्याह में किन ले हुआ कुछ भी चीज करने हुआ मान लो तोरा ऐसा ना ना कि ढेर को जब लानी व्यस्त रहला फिर दिमे रहला तमासे नाला भी किन दे बेलन सा जो सेवी कर लन सा दोनों जना मान लो कि एगो एगो एगो फुजी दिया किन दे लग ते सब बोले के रहला कि देख तोर फिर मामा बा चल तोर खातिर को फुजी दिया किन दे ला चल तोर खातिर को टेलीविजन किन दे ला तो मैं शुरुआत अपन नाम पर किन ले बना
0: जे किन ले बा आर जैसे बोला था जब एगो किन ले बा ओ ओकर नाम में
1: तो सेपरेशन जी में सब ओकर हुई
0: नहीं सी बुझों अभी हो सिया तो बोलता ओकर नाम में बोले खोजत हुआ
1: हाँ, लेकिन जब एगो को
0: मैं कब नहीं कब दिलक पत्निया के बोले जाने ले नहीं रहल हमने के घर में एगो वॉशिंग मशीन तो चला हम तो गिर देवत हैं यहाँ को दान देवत एगो कादो देवता
1: हाँ लेकिन ऋषि तो पति के नाम पर बजा
0: कफे नहीं ही बोली ला हाँ। ही बोले खोजत हैं जब एगो आदमी एगो चीज खरीच के तो खरीच ओकरे नाम में रही बस के गई जाय मगजवा मगजवा तो बोलबे करी नौकर मेकअप एगो चीज दे देवेला कादो में एगो दान में तो ओकर संग के हो जाला आली अभी हमारे एगो है जमीन बा अब हम देखते हैं उस जमीनवा में कोई कुछ नहीं सकल जाई करे करे मर जा उस जमीनवा इसने रह जाई तो बोली मर तो लड़का फैका कोई नहीं बा है न पत्नी न बा अकेले हैं उस जमीनवा हम कोई के दे नहीं खोजत हैं अरे काहे नहीं एगो ऐसा काम करब कि बोले लनसन मोक्ष हमके मिली एगो दनुआ एगो है शिवाला के दे दिला एगो शिवाला बना दिए अनसन तो दनुआ हम दे दिली न अमर रखल तो ओके न है शिवलवा के दे दिली तो प्रोप्रिएटर के बनल जोन अदमिया हो तो पतिया दे दिलक कदुआ कादो बताई जे पटनिया के आओ हिया तो एगो वॉशिंग मशीन दिला आओ एगो गाजो हई बाग तो
1: सोना के कंगन दिला
0: हाँ ये भी हो जाला तदवे देख हाँ एगो ही बोला था ये खातिर अब एगो चीज बोलती तोरा याद हो गए जी हुए जाते हैं सतिनकार एगो है पति पत्नी या एगो बिलमेय का करी एगो शादी होता एगो छोकड़ी से तो ओकर बेटा तो शादी करता ना तो कब शादी करेला तब देखेला बिजू है गहना गहना देवेला ना हुकुमा जाऊ छोकड़िया के कब गहना देवता तो गहनवा कौन चीज देवता कौन चीज के है ओके है मडमवा के एगो मजा कादो पछि

0: कविता नहीं देखे वो साड़ी देवेलन सन एक बांध देवेलन सन बिजू हर बताई ओके देवता उछो कड़िया के सदिया में ओ ओकर हो जाला ओकर कादू है एक बांध का करेला शादी कब हो जाला एगो जीवो सो जाला तो जालन सन सास मांगे हौ पतो से जो नौकर रखल बोले जाने ले कब भाई फियांसे कर ले या शादी कर ले हम तो के गहना दे ले रही उठाओ हम अगर गहना
1: हाँ हवे सवाल करे हुए तेरे हम तोर से कि जब शादी हो गल अब पांडा सास जुनबा कंगन देख ले रख हार दे दिलक सब जानो दे दिलक तब जीवोस हो गल तो हौ जुन गहना हुआ बा वो बहुए के रहला या तो फिर परेला लौटाए के सास के
0: ओकर पतो के कुछ नहीं बागी तूने करे के ससुआ के कानून है हम नहीं बोली ला हम नहीं कहते जैसे हमेशा बोले ना हमने तो थोड़ा ओ क्या खस की काहे हुआ दे दे ले बा एगो कादो नियर में तो ओ चीज हुआ ओकर संगे हो गल बा तो ओके दे के चाहेला है कदोआ नहीं गे तू ने करे के मैं बांध जाला लड़ाई करी हम तो दे ले रही हम मांगे आल हई नहीं ओके मन नहीं हुई दे के तो सकी नहीं दई
1: चला हाँ बिल्कुल तो एक साथ एगो तनिकुन एगो गीत सुन ले ला जा आज के दिन बहुत खास बाज रक्षाबंधन सबको मनावत हो जा तो एक साथ हमनी जो हमनी के जो श्रोता दर्शक लोग बन जा तो चलो उनकर खातिर हमने एगो कादो एगो गीत दे ला जा गीत सुनने के बाद फिर मिलते हैं।

0: इस समय आप लोग देखत हुआ कार्यक्रम आज की चर्चा और जितना भी हमने की दर्शक लोग हमने की श्रोता लोग हमने की सुनत हुआ जा बहुत बहुत धन्यवाद साथ देवत हुआ और हमने के बीच कपिल देव रघुनंदन जी हवन हमने के वकील और हमने बात कर रही जा इंडिविजन के बारे में यानी एज विजन के बारे में इतना सब कुछ तो बतिया ले लीजा अब चला इकर से निकलब जा कैसे
1: एगो के शौक तू पूजे कर लो मिलियों के बाले
0: अच्छा।
1: पहला चीज तक बात कर ली सा एजिविजियों के बाद कि यहाँ पहुताज नहीं होल बा तेरे कैसे में निकलब सा ई एजिविजियों में तो पहला चीज ये कि चाहे पहताज करे के
0: अच्छा
1: और पहताज जब हमने सब कर सर कोनो मेम की एक गो जे विचे रही दस गो में हुई हमेशा खुशी रहा दस गो बोलो ढेर लड़का अच्छा तो आली सुपोजो दस गो लड़का बा तो एक एक गो जेगीचे बस तो जेगीचे बा और बाप के में जमीनवा में एक एक गो जेगीचे सकी बोले देखा हम चाहते हैं अपन पार्क ही करे के हम चाहते हैं अपन कोथा बनाए के जो हमार बाप छोड़ के चल बा हमार हक जोन बा उमें हम मांगत हैं वही बुतवा जमीनवा में तो हम मांगत हैं पहताज करे के आलू तो का हुएला कोनो वक्त कैसे बपुआ गुजर जला आदमी के नहीं चला आतान करे के एक बार तो देखिए बोल के नहीं हम आतान कर ली 3 महीना 6 महीना 10 महीना नहीं पहला चीज कैसे तू कुमार जब बपुआ हो गल गुजर गलिया महुआ कुमार जब माँ बाप का गुजर जला तो वो लाफी दाविद सिक्सेशियों करे के चाहेला तो कैसे वो बन गल पसी तब न उ पपीवा से कोतरा उ सब बनेला ओकर जानल जाला के ओकर जेविचे है कौन के है ओकर लड़का तो कैसे उ बन गल कोनो वक्त तो देखब एगो जेविचे वा सकी मेम की दूसर एंटी से नहीं बा ओके देखब स है दूसर हला कैसे होला उसे अब हुआ उ मांग करी एगो है जेविचे वा के कि कोनो वक्त जैसे हमने बोले सा आ तू मो म
0: हाँ
1: एगो आदमी एगो जेविचे सकी पताज मांगे के बोली देख हमें जीविज में नहीं रहे को तई हम के चाहत हैं अपन पार करे के हमर जो मिले के बामर माँ बाप बगल से ऊ बुतवा के हम चाहत हैं हमर पार मजे निकाले के इस सकी और अब का मिला कभी देखब बहुत सा जेविचे जोन बा अरे बाप बहुत सा पलाब नियर करी मेम क्यों के मिलता का करी ऊ बोली हम नहीं डाको हई पहताज करे के मतलब दे जाको ऊ पहतजुआ करे के बस की देखब तो कोनो बोले ला नहीं बस ये ओकर बा तो के उन ऐसे ऐसे नहीं बा अभी नहीं सोचा था काल गुजर जाए तो ऊ लड़का के प्रॉब्लम कैसे हुई नहीं बोली कि देख ये जो रही जमीनवा बा हम तो लोग के मन बना पहताज करे के

0: जा से तो लोग यहाँ पता कर स हमर यहाँ पैसा बा कि नहीं बा, हमर यहाँ नहीं बा पैसा जब रही तो हमने देखब स तो एगो रीजन नहीं है। जब है भाई बहन लोग सिबोजों एगो एक्सेप्टे बा पताज करे के, दूसरा कुमा जे नहीं एक्सेप्टे वन सन पताज करे के, मतलब नहीं कि पताज नहीं सकल जाय होई। हियाँ कब दे सीधे कर दिले बा कि कोमको अकामे में एगो जिग छे आगे आई को जता ओ के मन बा है करे के पताज, तो उस सबकी मांग करे एगो पताज करे।
1: लेकिन मांग करे की कर से मांग करे, कैसे मांग करे?
0: अरे एगो चीज हमनी हौ मजे हौ अलाप शतक मजे है में कुतब एक्सप्लिके कर सकाल ते ये कई पूछला कैसे करल जाए ओकर पताज हुआ। जब उ लोग डाको नहीं है बा एगो आसी पा दू गोवा, तो साहेब चाहेला ओके देखे के चाहेला जो उनके पताज हुआ करे को जता, एगो देखे के चला एगो आबू आबू काके।
1: अच्छा,
0: तो आबू आबू का करी एगो पिटिशनियर एगो ड्राफ्टे करी कि देख मांग मांग कर था कि ओकर आबू या बोलियो कि एगो जीवी चेवा ओकर सर्विस ले ले बा, वो मांग कर था कि पताज करे कि पताज जे नहीं सकल जाई होई तो ओके लिसिटेशन में डाले के यही पपीवा में डालेला यही है में अल्टरनेटिव प्रेयर जैसे हमने बोलेला सर पसी मंगलक भाई पताज करे के ना, तब नहीं देखब सर पताज आज हो जाए दूसरा हाला सी तीसरा हाला कब आप सर तब लिसिटेशन देखब सर, तो बोले जे पताज नहीं सकल जाए हो सी बुझो एगो एक गो घर बा यहाँ पाँच गो है सर, तो कैसे सकल जाए कुमा जे एगो एगो घरवा पताजे करे के, तब लिसिटेशन वेला लिसिटेशन वोट ऑन ऑन शेयर एक नाम देख ले रही सह वाला अब जाए हुआ बेचाई पूछे होई तब पैसवा जोन कुमा जे मिली
1: तब पैसवा मिली पताजे होई तब पैसवा जितना लइका बा लोग के संगे लाइक बराबर सब लइका में पताजे होईला।
0: करेक्ट, तो देख लहिया पताजवा कुमा जे मेम की एगो दिसाको हो अनसन जिगी चेवा एगो अजे आखो हो जाए पताजवा करे के, तो खाली क्या वो अबका देख के उकेस डाल के लाकुर में हुआ पताज मांगे के लाकू हुआ देसी दे करेला कुमा जे पताज हुआ कौन मानियर से हुई और कौन कंडीशन से हुई, तो देख लहिया जब एजिविजो में से निकले के तो ला एगो केस डाले लाकुर में जाके हुआ मांग कर कि पताज करे खोजत हुआ, तो हुआ पताज हुई आने हिया ते एगो दिजा को बना एगोवा ते नहीं एक्सेप्ट ते बाद दस गोवा में सकेला भाई कबो के बोला चल देख माँ बाप तो छोड़ के चल गलवा जमीन काल तो देखबे ना तो छोड़ छाड़ देबे तीस बरिस के बाद देखबे दूसरा के पुस्किया कर दे वो लोग बिन जाई हर पोपिये तेर क्या टार दे करत हुए चल हम नहीं अपन कोतरा बनाई सा तो का करियन सर सब जिजे जो उनके हगित बा ओकर माँ बाप के है जमीन में ओकर पैट्रिमोनी में जैसे हमने बोला सर आको इते से पताज करी, तो कैसे आको इते से पताज होल तो वो एजिविजो में से निकले ला बस की तो पताज हुआ हो ही ना बस की तो सब दाको एजिविज रहल पताज नहीं रखल तो अब तो पताज एजिविज में नहीं हो सन, तो यहाँ पताज करियन सन जब वो लोग सब दाको होन सन एक वा में देख ली सर डाको नहीं होला, अब हिया देख लेलन सन कि जीवी छे डाको हो गल बा तो हिया निकले के एजिविजोआ में से तो पताज हिया करेला। अरे पताज कब हुई एजिविजो में से निकले के हर जीवी छे जोन बा एगो लोह मिली एगो प मिली एगो बुट मिली कितना रही सिबोजो दस रही तो दस मान लो निकालल जाए ऊ मटिया में कब हर के मिला करे, और जैसे बोले रही सब पहला शुरू ना चाहे ला एगो जमीन एगो जेगी चेवा के मिले के एगाल सब बराबर, और जो एगाल नहीं रही तो एगो शुल्क एगो पैसा दे के चाहेला जो उनके कम मिलता समझ ला ना, तो ऊ का हुई ओके कब कौपे हो गल औसन ज में तो देखब हियाँ ओके कुमा ज सबके अनमन बराबर मिल गल, जब हियाँ मिल गल तो उ लोग के है अपन अपन कोथा बना दिलन सन तो निकल गईलन सन हियाँ एगो है काली। अब दूसरा एगो चीज है बोलियन सन जान ले माटी कमती बा में हमने बहुत हई सर तो कैसे हुई ओ हौ के तो पूछबे कि नहीं के तो के बता पैसे ही नहीं बा शुल्क नहीं सकी पिए करे तो इमें एगो प्रॉब्लम हो जाला, तो कभी ये होवेला बहुत है भैया बोली ए जाने ले भगवान हमके बहुत दे देले बा हमके नहीं चाहेला कुछ हमर पार हम तो के दे देवा थे।
1: अच्छा, लेकिन बहुत कम
0: होला आजकल तो हो भी नहीं करेला। मैं बा माँ हम देखी रा कुमा जी हम ये तक आवेलन सन देखे तक आवे हमने बस एगो

0: चितनी से कहला पता से करे बहन जी तो बोले फिकिर नहीं बा हमार तो भगवान देले बा और कोनो जोन बोले अपन दिल से और बोले देवत है के हमार भाइयो के देवत है सिपाही हमार बहनिये के देवत है ना तो बोले कोरे के बा हम आक्षेपते हैं दे के आले थर दिखले रहे सब पहला शुरू एगो भाई बहन अवन सन घर हुआ था बा खाली एगो एक के गो दू गो और घर हुआ नहीं सकल लाई पता से करे तो हियाँ सकेला एगो पैसा दे हो भैया या बहनिया कि जोन गे घरवा लेवा था या तो हो सके बोले नहीं फिक्र नहीं कर तू हमके कुछ नहीं दिए तू हम ही हमार पार खुशी दिल से दे देवत हैं ऐसा काम करते हुआ जो एक दिन रहब तो सकल दाई बोले कि देख कबर अली हियाँ तो कुछ न कुछ दान पर दान देले हई महाकल्याण
1: बहुत बढ़िया
0: तो हियाँ देख लो ओके दे दिलक तो एगो भैया के दिलक या बहनिया के जाके उकर परवा जो ओके मिले रहल तो रह तो ऊ भैया उसके ऊपर हुआ अपन नाम में डाले ओकर संगे डाले ओकर संगे रहे जैसे नहीं बोली ना एगो पियोते है कभी एगो परुआ बहनिया भैया या के हुई ओकर परुआ बेच दे ऊ जे छिवा से हुआ रही तो जोन किनलक तो ऊ जाके मांग करी कि देख ई हमर नाम में हो गल तो है हम पवित्र बन जाई
1: एकरले आगे कि हम ये कार्यक्रम समाप्त करब सा कुछ और बा एकर में जोड़े के
0: आले थू है मजे का बोले खोज से ई एगो चीज है हमने के चाहेला जब एगो एजविज बा एगो है जमीन बा ओकर चाहेला उ है एगो जमीन उ कमे एगो आकोहिते से हम त बोलती कैसे हुई और जे भई करब सा एक दूसरा हला पुरगमवा करब सा त ई सिविलाइजेशन दे बिए कैसे सेर विला अरे हमार तू भाई बहन है सा अब तू एगो जमीन हम ओकिपे करत हई हम ओकिपे करत हई जमीनवा कभी तो तू सब नहीं खुशी होई बोलिए बाप छोड़ के चल गए बा होता ना बीघा कान सब चीज होता जमीन ए बड़का बड़का लैजिस्ट्री बड़का बड़का बुटीक बना के बिजनेस छोड़ गए बा हाँ तू ही ओकिपे करत हुए तू ही सब पैसा जो मिलता ले ले हुआ तो वे तो ये गोरे के नहीं बा तो हो भैया से कि बोले देख आओ एगो पापिये करी ला सा हम ओकिपे करब मैं जो मिली पैसा तो के बांटब सा
1: बहुत बढ़िया तेकरे साथ हमने की आज के जो कार्यक्रम बा ये समाप्त होता एज विजयों पर हमने बात कर ले हैं जा कपिल देव रघुनंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा और हमें के सभी जितना दर्शक लोग हों जा श्रोता लोग हों जा लोग के सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है अगले शुक्रवार को एक ऐसे कार्यक्रम के साथ हम फिर आएंगे और आप लोगों को एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं नमस्ते।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सभी को हमारा नमस्कार. वर्ल्ड निट्स में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है. हालांकि कामकाज

0: आंशिक रूप से फिर से शुरू हो गया है, लेकिन कई मजदूर अभी भी तकनीकी बेरोजगारी के कारण काम से बाहर हैं और वेतन मिलने में लगातार देरी हो रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि देरी कम करने और स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कल से पंजदेसनी इलाके में सार्वजनिक समुद्र तट तक जाने के रास्तों के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। उन लोगों को नोटिस भी दिया गया है जिन्होंने रेत पर अपने बोर्ड और अवरोध लगाए थे। ये पहल आवास और भूमि मंत्रालय की है। इसका उद्देश्य होटलों और अन्य बंगालों मालिकों द्वारा हमारे समुद्र तटों पर किए जा रहे कब्जे को रोकना है। आज भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन को का त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसके सुखी और स्वस्थ तथा लंबे जीवन की कामना करती हैं। शान कुमार चुलन, जो मिटुन से ज्यादा जाना जाता है, ने आज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। गांजे की तस्करी के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। और विदेशी खबरों में तिब्बत की ओर स्थित पानी का बांध एक बार फिर टूट गया है। इस घटना के बाद बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते नेपाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने तत्काल नोटिस जारी कर बचाव और राहत कार्यों में जुटे सभी सुरक्षा कर्मियों और आम जनता से तुरंत सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: RM3 Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन की लहरों पर इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल शाम के 4:08 हो चुके हैं। मैं हूं रत्ना, पहुंची हूं आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर जहां पर आपकी भावनाओं से भरा हुआ ये सेगमेंट हम प्रस्तुत करते हैं और जहां आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं ऑन 4028070 पर अपनी दिल की बात इस कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। मैसेज भेजना चाहें तब भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं।

कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, मैसेज भेजना चाहें तब भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैसेजेस हम तक आए हैं जो एक बार फिर हमारे दिल को बहुत ही गहराई से छू चुके हैं, और सच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बयां करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम के माध्यम से, इन प्यारी प्यारी चिट्ठियों को, इन प्यारे प्यारे मैसेजेस को हम आपके समक्ष रखते हैं। और आज की ये पहली सी चिट्ठी आई है बहुत ही प्यार से, बहुत ही कह सकते हैं कि दिल खोलकर आपने अपने भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। आप लिखती हैं कि आज सभी ओर रक्षाबंधन का पर्व इतना प्यार से मनाया जा रहा है। मैंने सभी ओर देखा है बहनें अपने भाइयों के लिए इतनी सुंदर सुंदर राखियां खरीद रही हैं, और भाई अपनी बहनों के लिए तोहफे खरीद रहे हैं। सब कितने खुश नज़र आ रहे हैं, हंसी खुशी कितनी खूबसूरत यादें बना रहे हैं दोनों मिलकर। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक भाई होने की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। मैं सोचती हूँ काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी उसकी कलाई पर राखी बांधती, उसे छेड़ती, उससे लड़ाई करती, उससे चिढ़ाती, और फिर भी वो हमेशा मुझे लाड करता, मुझसे प्यार करता, मेरे सर पर हाथ रखता, मुझे हमेशा मेरी रक्षा करता, लोगों के तानों से, लोगों की शिकायतों से मुझे बचाता। राखी का त्यौहार हर साल मुझे बस यही सोच से दुखी कर देता है। मैं सबके लिए खुश हूँ, मेरे दिल में कोई गिला नहीं, पर अकेलापन मुझे दुखी कर देता है। एक त्यौहार आपको ऐसा कैसे फील करवा सकता है, खासकर उसके लिए जो कभी मेरे जीवन में था ही नहीं, मेरे जीवन में कोई भाई था ही नहीं। मैं पॉजिटिव रहने की हमेशा कोशिश करती हूँ, पर अंदर ही अंदर एक अकेलापन मुझे हमेशा चुभता रहता है, और खासकर राखी का जब ये त्यौहार आता है इस दिन को लेकर मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। सब परिवार एक जैसे नहीं होते, माता पिता का प्यार, कजिन, दोस्तों का प्यार, उन लोगों का प्यार जो आपकी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, पर फिर भी भाई बहन का रिश्ता सबसे स्पेशल, सबसे अलग। काश मेरा भी कोई भाई होता। पर आपकी चिट्ठी कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही प्यार से प्रार्थना करती हूँ कि आपका भाई, आपकी बहन जहाँ हैं, बहुत ही प्यार से इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखिए। कितने कम शब्दों में आपने कितनी प्यार से ये बात रखी है, थैंक यू सो मच। अगेन आपने अपना नाम नहीं बताया, पर कोई बात नहीं, आप अगर इस कार्यक्रम को सुन रही हैं तो हम ज़रूर यही कहेंगे कि कुछ रिश्तों में बस भाई नहीं होते, कुछ रिश्तों में बहन नहीं होती, कुछ रिश्ते होते हैं भाई बहन के पर वो रिश्ता नहीं होता। ज़िंदगी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं पर हम सीखने में देर कर देते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में आपने अपनी इस भावना को रखा है। और मैं समझती हूँ जितने भी लोग इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अगर आज अपने भाई और बहन के साथ हैं तो इस रिश्ते को बहुत ही प्यार से आप मनाएं, और ना केवल आज के लिए पर जहाँ तक ज़िंदगी, जहाँ तक जान है, बस इस रिश्ते को यूं ही प्यार से संजो के रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि ये रिश्ते ही हैं जो हमें ज़िंदगी में जीने के लिए, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। ये हमारे ज़िंदगी की गाड़ी का पेट्रोल है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, उसको रफ्तार देता है। ये रिश्ते ना हों, ये प्यार ना हों तो जिंदगी खोखली हो जाती है। जिंदगी में प्यार की अहमियत बहुत ज्यादा है, पर प्यार के साथ साथ रिश्तों की अहमियत
को हमेशा बनाए रखिए, उस मान सम्मान

को बनाए रखिए। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ प्यारी प्यारी चिट्ठियाँ, कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस, और डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ ऑन एयर भी जुड़ना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपका है। आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 4028070 या मैसेज कर सकते हैं 5250620 पर।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: बिल्कुल, आज एक बहुत खास मौका है रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर। बहुत सारे श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, और हमारे साथ एक ऐसी श्रोता जुड़ी हैं जो कि खुद गायक कलाकार है, स्थानीय कलाकार है, और साथ ही साथ उनके कई सारे ऐसे भोजपुरी गाने हैं जो हमारे आए दिन कार्यक्रम में हम उनके नाम करते हैं, उनके परिवार के लिए चलाते हैं, और साथ ही साथ वे भी, उनके साथ साथ हमारे कई सारे ऑडियंसेस हैं जो उनके गानों को सुनना बेहद पसंद करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में जानते हैं कि वे क्या कहना चाहती हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते पूर्णिमा जी, पूर्णिमा फुकीरा जी।
1: नमस्ते जी, कैसे हैं माई?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं थोड़ा ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: थोड़ा खुश भी हूँ।
0: हाँ,
1: आर थोड़ा थोड़ा दुखी भी हूँ।
0: काहे दुखी, काहे हवा बोला था?
1: दुखी तनिसन चलते घर में घाव लगा ले है गोड़ में, अब हमारा के दर्द होता था, हमारा कुछ नहीं सूझा,
0: नहीं सूझा
1: में हम जब दुख जाता है
0: हमारा के तनी दर्द दर्द भुला भुला जाता हुआ।
1: हाँ, नहीं बा, नहीं
0: बा। सच्चे के, सच्चे के। और ये आज के, आज तो एगो बहुत पावन पर्व है, और रक्षाबंधन के हई पावन पर्व के अवसर पर कुछ बोल ब?
1: हाँ, बहुत चीज बा बोले के, सलमा तो फुर्सत ना मिली इतना बोले के।
0: हाँ,
1: मैं सलमा संक्षेप में थोड़े थोड़े बोल देगा था।
0: हाँ,
1: हम नीचे पांच गो भाई में एगो गुजर गल बा, अभी चार गो भाई बा।
0: हाँ,
1: बारा के नाम बा ज्ञान, और सेगो के नाम बाते रोहित, पाजम के नाम बाते गुरु, काप्रियम के नाम बाते अशोक।
0: अच्छा, हाँ हाँ,
1: चार गो भाइयों हमारे के जिंदगी में, हमने के रक्षाबंधन के दिन चारों को ना हमने के लेमन लेके खा रहा हूँ।
0: अरे वाह, ये जाने ल जितना जे जे चल गल बा उ तो हमने के हाथ में नहीं है।
1: हाँ,
0: पर जित जे जे हयात हवन, जे भी जीवित हवन, हाँ, उनकर खातिन जिए के, उनकर खातिन, उनकर खातिन प्रार्थना करे के, और भगवान उनकरा बहुत लंबा उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे, ये जस्ती जस्ती जरूरी है। हाँ जी जी,
1: और चार बहन है सर, बड़की बहन के नाम बा शोभा, और सेगो बहन के नाम बा माला, और वाजन बहन हम है अनीता घरे के नाम, और हमर चरवा बहन बा मुनुन, भागो में पेशान परिवार से।
0: तो चला आज
1: सोचता है एक जगुन जब जूता सता कितना भारी परिवार हो जाए।
0: हाँ, तो नहीं चाहिला कोई बाहर के आदमी के तरह डुकाई के कुमाजे, जितना जाने लो हाँ, परिवार
1: हाँ,
0: हाई सब नहीं चाहिला, एगो चटाई लेके नीचे बैठ जाब, बैठ जाइब, ये क्योंकि जाने लो प्यार से जब एगो परिवार जब जुड़ जाला तो नहीं नहीं खुशी रह खोजे के कहाँ बैठा कैसे बैठी कैसे, वो अपन अपन जगह खुद बनावे बना देवे लंसा परिवार में। हाँ,
1: हम कोई के बुलाए ला ना, हम मिला अया जहाँ हमारे घर में सेज नहीं रही ना।
0: हाँ,
1: हम अपन
0: दिल में, हाँ, दिल में जगह चाही ला, जाने ला घर बड़ा रही पर दिल में जगह नहीं बाता, वो कह कोई नहीं आई तोहर यहाँ, मैं जे तोहर घर
1: बराबर आपका।
0: सच्चे के, सच्चे के। चला आज के
1: बुलाये
0: चाही ला माँ, जीवन में जाने ला पैसा जरूरी है, पर पैसा से जस्ती जरूरी है प्यार, जब प्यार रही तो कोनो भी संबंध कैसे भी रही, रिश्ते रिश्ता रही, वो बहुत नीमन से चल जाए आगे ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, हमने के संगे जुड़े के हाई मेहसास विदा करे के
1: हाई प्यार सबसे सर्वश्रेष्ठ मानल गल।
0: सच्चे के,
1: माँ के मान मिला सा और से भाई बहन के प्यार मानल।
0: सच्चे के, सच्चे के।
1: हम खुशे हैं जितना कोई हमरा सुना था, सब कोई से बहुत सारा प्यार रक्षाबंधन के।
0: हाँ,
1: हम खुशे एक दिन सब कोई हमरा हमार भगवान लगे जाए के आगे हमरा से भेंट करे,
0: हिम्मत करे। सच्चे के, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्णिमा जी, आज के कार्यक्रम में तू भाग लेलन, बहुत बहुत प्यार तोहर भी, और चलो एगो बहुत प्यारा गीत तोहर खातिन और तोहर भाई लोग खातिन जरूर चलाओ अब जा। हाई एगो अनसुना गीत है, फिल्म दीदी से लेवल गई, बहुत पुराना गीत है, आशा करब जा कि तोहरा बहुत अच्छा लगी। आले बहुत बहुत धन्यवाद,
1: यार हमें हमें सुना था राजू।
0: हाँ हाँ, जरूर आले, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, चलो शुभ रात्रि तोहरो भी। तो चलिए एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए और कुछ अनसुने गीतों के साथ आपके दिल को खुश करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से।

0: लता जी की प्यारी सी आवाज़ और बिल्कुल ये गीत था फिल्म दीदी से लिया हुआ लाजवाब गीत। और इसी के साथ चलिए हम अपने इस प्यारे से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर हमारे साथ एक और ऐसी प्यारी सी श्रोता, एक और प्यारी सी आवाज़ जुड़ी हुई हैं जो हमेशा कार्यक्रमों में भाग लेना बेहद पसंद करती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हाँ मृगनयनी, नमस्ते, श्रोताओं को भी नमन।
0: नमस्ते

0: सभी
1: सुनने वालों को
0: हाँ
1: रक्षाबंधन त्योहार
0: हाँ
1: के लिए मंगलमय हो सभी भाई बहनों के लिए।
0: जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत प्यार श्यामा जी। और आज के इस कार्यक्रम में आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना पसंद किया, आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज क्या विशेष कहना चाहेंगी?
1: जी मैं ये कहना चाहती हूँ रत्ना जी,
0: हाँ
1: रक्षाबंधन का त्योहार सभी भाई बहनों को मंगलमय हो। यह बंधन तो जन्म जन्मांतर के लिए है। यह भाई बहन का जो रिश्ता है ना, कोई नाजुक रिश्ता नहीं है, नहीं कोई नाजुक बंधन है। यह तो खून से खून का रिश्ता है,
0: बिल्कुल।
1: यह तो अटूट बंधन है। बहन हमेशा अपने भाई को दुआएं एवं बलाइयों देती है, अपने भाई के लिए व्याकुल हो उठती है, भाई भी अपनी बहन के लिए सारा प्यार लुटाता है और हमेशा उसकी रक्षा करता रहता है। रक्षाबंधन साल में एक ही बार आता है, पर भाई बहन का प्यार तो हमेशा दिल में जलाए रखते हैं ना। भाई बहन का प्यार अमिट है और अमर है। यह सावन महीने का पावन महीने, यह सावन के महीने के पावन पर्व है। कुछ यादें रह जाती है रत्ना जी, और कुछ भुलाए नहीं भूली जाती है,
0: बिल्कुल।
1: और इन यादों एवं गीतों के सहारे हम जी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, हम यही कामना करते हैं कि सभी को भगवान हिम्मत दे, जो कुछ बीत गया है उन्हें हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, क्या बिल्कुल। करेंगे ना, जो कैसे जो होनी है तो हो के रहता है,
0: सही बात है,
1: सब पर गुजरता है। और हम यही आशा करते हैं कि यह जो त्योहार है सभी के लिए मंगलमय हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी आपके प्यार भरे शब्दों के लिए, आपके बिल्कुल साहस भरे शब्दों के लिए, क्योंकि जो है जैसा है जीवन है, और जो हमारे पास है उनके लिए हमें जीना है, और उनके लिए
1: जैसे कि मैंने कहा ना,
0: हाँ
1: अभी कैसे कि कल जो ला गई है किसी की बहन चली गई है,
0: बिल्कुल,
1: आज जो है किसी का भाई भी चल गया है,
0: हाँ
1: तो क्या करेंगे, भगवान उन्हें हिम्मत,
0: ये हमारे हाथ में नहीं है,
1: हमारे हाथ में नहीं है,
0: हाँ।
1: भगवान के वश में है, और वही हमें रुलाता है, वही हमें हंसाता है,
0: वही हमारे,
1: वही हमें
0: रक्षा करता है, हमें संभालता
1: है, भी वही करता है।
0: सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही कहा श्यामा जी। हाँ जी,
1: और इसी प्रकार हर भाई बहन के हृदय में हिम्मत श्रद्धा एवं शक्ति प्रदान हो,
0: बिल्कुल सही कहा। चलिए, भाई बहनों की रक्षा हमेशा होती रहे, और बिल्कुल ये एक ऐसा प्यारा सा पर्व है जो साल में एक ही दिन के लिए आता है, लेकिन ये जो रिश्ता है आपने कहा ना, ये अमिट है, ये मिट नहीं सकता। चाहे हो सकता है कि किसी बात की वजह से भाई बहन से नाराज या बहन भाई से नाराज हो जाए, पर ये रिश्ता हर साल जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है हम अपने भाई को बहन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो जब तक जान है इस रिश्ते को समेट लीजिए, सम्मान के साथ मना लीजिए, और हमेशा प्यार के साथ इस रिश्ते को और भी खूबसूरती के साथ हम सजाने की कोशिश करें।
1: और एक बात है रत्ना जी,
0: हाँ
1: कैसे
0: जी?
1: कहते हैं ना, सावन के जो पूर्णिमा है,
0: हाँ?
1: यह पूर्णिमा तो बार बार हमेशा आता है, लेकिन यह जो पर्व है बार बार नहीं आएगा। जो रक्षाबंधन का त्योहार है, जो सावन के कैसे कहते हैं महीने के का जो ये पर्व है, ये
0: हाँ,
1: बार बार नहीं आएगा,
0: नहीं
1: और
0: आता
1: नहीं
0: है,
1: आता
0: सही
1: है, एक ही बार,
0: एक ही बार आता है, और
1: इसे हमें आनंद उठाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, परस्पर आपस में अपना प्यार बांटना चाहिए,
0: बिल्कुल, गिले शिकवे मिटाकर, हाँ जी, एक दूसरे को माफ करना, माफी मांग लेना, अगर कहीं कुछ गलती चूक हो चुकी है तो माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, और रिश्ते को फिर से एक मौका दीजिए, क्योंकि ये रिश्ते जो है जिंदगी बहुत छोटी है। और चलिए आज के इस कार्यक्रम में
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी।
1: हाँ
0: जी, शुभ दिन आपको। और बिल्कुल आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है, और रक्षाबंधन का ये पर्व यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है एक प्यारा सा ऐसा परिवार जिसका हम ज़रूर नाम लेना चाहेंगे। और यहाँ पर है हमारे साथ दागन, श्वेता, रवीश, प्रीशा, लविशा और आपादु परिवार खुशनुमा से, जो हर कार्यक्रम में अपना नाम ज़रूर जोड़ते हैं, और बिल्कुल आप लोगों की बदौलत ही ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है। तो हम तो यही कोशिश में लगे हैं कि आप हमेशा यूं ही प्यार से साथ दें। सुदेवी जी मौका से साथ दे रही हैं, उनके प्यारे भाइयों का नाम जोड़ना चाहती हैं, रामनाथ, प्रेमनाथ और विनोद, और उनके प्यारे बेटे हैं प्रीतम, बेटियाँ हैं रेशमा, युदिशा और शीतल।

कल शोभा जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं उनके सभी परिवार के साथ और लाजवाब ये कार्यक्रम बिल्कुल भाई बहन पर आधारित आज हमने रखा है क्योंकि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और ये पर्व बिल्कुल सभी भाइयों को सभी बहनों के नाम ये पर्व जाता है। भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्यार वही रहता है। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार का कोई वजन नहीं होता, प्यार की कोई क्वांटिटी नहीं होती, प्यार को नापा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा एहसास है जो हर रिश्ते को बड़ी ही मजबूती के साथ जोड़े रखता है।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम को जारी रखते हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर, और इस वक्त 4:43 होने जा रहे हैं। लाजवाब एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज आया है। आप लिखते हैं, मेरी राखी में है दुनिया समाई, तेरी बहन भेजे तुझे ढेर सारी बधाई, मेरा हाथ पकड़ के संभालना मुझे, वही हाथ पर बांधूंगी मैं राखी, तू मेरी जिंदगी का वो फूल है जिसकी मैं हूं एक छोटी सी पंखुड़ी, आंगन हमारा सदा महकता रहे, रहे ईश्वर की कृपा हर घड़ी तुझ पे, हृदय की गहराइयों से देती हूं मैं आशीर्वाद तुझे, तेरा साथ हमेशा मिले मुझे, चाहे हूं आंखों में खुशी के आंसू पर दिल में सदा तेरे लिए प्यार रहे, तू मेरा भाई है और हमेशा रहे, यही उपहार सदा जीवन में मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलता रहे। बहुत ही प्यारा सा मैसेज और बिल्कुल दिल को छू जाने वाली बात। थैंक यू सो मच, आपने व्हाट्सएप के द्वारा इस मैसेज को हम तक पहुंचाया। अगेन यहां पर हमारे साथ अनीता लाल जी भी जुड़ चुकी हैं, अपने तीन प्यारे भाइयों का नाम जोड़ती हैं, विकास, जज और संजीव, और बिल्कुल बहुत बहुत खुशियों के साथ आप अपने भाई को बस बधाइयां, दुआएं, प्यार, प्रार्थनाएं। भाई बहन का रिश्ता एक बहुत ही प्यारा सा गहरा सा रिश्ता है जो छोटी मोटी नोक जोक से नहीं टूटता। लड़ाई झगड़े तो प्यार को और मजबूत बनाते हैं, और ऐसे प्यार में अगर गलती को माफ करने की भी हिम्मत रखी जाए भाई, इससे प्यारी बात और कोई हो नहीं सकती। और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल प्यार भरे गीतों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए इस अगले गीत को लेते हैं। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म अंधा कानून से लिया हुआ, किशोर कुमार और आशा जी की प्यारी सी आवाज़। ओहो, ये है गाना हेमा मालिनी और रजनीकांत पर फिल्माया हुआ गीत।

भाई बहनों में वो सयानापन, वो नटखट भाषा, वो छेड़खानियां ना हो तो रिश्ता फीका लगता है। पर चलिए इसी के साथ, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी ये जो नादानियां हैं ये कहीं ना कहीं छुप जाती है। बस इसे ही को तो नहीं छुपाना है, इन नादानियों को जारी रखना है, क्योंकि ये प्यार जो है वो बढ़ते जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और चलिए यहाँ मानती जी, हमारी प्यारी सी मानती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवल फॉन्स से, उनकी दो प्यारी बहनें अनंती और आरती, और साथ हैं उनके प्यारे भैया आनंद, जिनको वो बहुत प्यार करती हैं और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करती हैं कि वे बस हमेशा सेहतमंद रहे और अपनी बहनों के लिए एक ढाल बन के

हमेशा उनका साथ दे। तो चलिए मानती जी, आपके लिए एक और प्यारा सा अनसुना सा गाना, और ये भी बहुत ही प्यारा सा खास गाना है, फिल्म घर द्वार से लिया गया, और इस गीत को हम खास आपके नाम जरूर चलाना चाहेंगे। वैसे आपने कहा कि आज के गाने सुनकर आपका दिल और भी खुश हुआ, तो इस खुशी को हम कम नहीं होने देंगे।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
2: चलिए यहाँ पर बिल्कुल एक प्यारी सी बहन है जो बहुत दूर देश से हमेशा अपने भाई बहनों के साथ जुड़ी रहती है, पर आज का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा

दुखी कर देता है उनको, क्योंकि जब वे वहाँ से वीडियो कॉल करती हैं अपने सभी भाइयों के साथ बात करने के लिए, बहनों के साथ बात करने के लिए, कुछ दुखी हो जाती है। रंभा जी, आज का ज़माना वीडियो कॉल का ज़माना है और मैं समझती हूँ ये जो इमोशनल फीलिंग होती है ना, ये कभी कम नहीं हो पाती। आपके सभी भाइयों का नाम ज़रूर जोड़ते हैं, ज्ञान, ज्वाल, आनंद, अनिल, सुनील और अजय, आपके छह प्यारे भैया और आपकी सभी बहन, और आपका नाम भी हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और चलिए, यहाँ पर उषा जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपके भी भाई हमारे साथ यहाँ पर है किशोर राख, और उनको आप रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हैं। आप सभी सात बहनों की ओर से और खासकर बहन उषा की ओर से भाई हैं किशोर गोवर्धन, जो वैद्य रहते हैं। तो चलिए, अगर किशोर भैया आप सुन रहे हैं तो आपकी प्यारी बहन उषा और आपकी सभी बहनों की ओर से आपको ढेर सारा प्यार, और बस आज का दिन बहुत प्यार से बिताइएगा अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ। और इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं फुल स्टॉप लगाएंगे, पर मजे की बात यह है कि कलाकार के बाद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे अभी थोड़ी ही देर में, और बिल्कुल ये होगा भोजपुरी भाषा में। और इस गीत, इस कार्यक्रम में भी आज कोई कलाकार हमारे साथ होंगे नहीं, पर आज के कलाकार हैं हमारे सभी भाई बहन जो इस वक्त रेडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ज़रूर आप इस कार्यक्रम को सुनिए, इसमें भाग लीजिए और डेफिनेटली डेडिकेट कीजिए अपने भाई बहनों के नाम ये अगला सेगमेंट। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी ही देर में, कहीं मत जाइएगा। तब तक के लिए ये प्यारा सा मशहूर सा गाना आपके नाम करते हैं।

94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। कलाकार की बात

शाम के 5:02 हो गल भाग अल्लाह कार की बात कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत हैं रेडियो मनोरंजन पर हम हैं रत्ना और हमार सब प्रेम नमस्कार स्वीकार कर ला जा अभी से लेके शाम के 6 ले हम रहब आप सब कोई के मनोरंजन करे खातिर और आज तक बहुत एक खास दिन है काहे के श्रावण के है पूर्णिमा के अवसर पर हम तो है ये बोलब जा कि अभी रक्षाबंधन के पर्व धूमधाम से सब कोई बहुत खुशियाली के साथ मनावत हवन अपन भाई लोग संगे अपन बहिन लोग संगे तो आज मुरिस भर में सब कोई बहुत खुश हवन और जे विदेश में हवन हमनी के साथ देवत हवन बस ऐसे ने प्यार से साथ जुड़ल रही और जे तोरा मन बा कोई के संगे को खातिर एगो डेडिकेशन करे के तो जरूर हमनी के टेलीफोन भी करे सकब 402-807-0 पर और जे तुम मेसाज विदा करे खोजत हवा तो 5250-6200 सेकंड 00 पर तू हमनी के मेसाज विदा करे सकब रेडियो मनोरंजन के लहरों पर कलाकार के बात और जैसे हम बोलनी तोहरा शुरुआत में कि आज कोनो कलाकार हमनी के स्टूडियो में उपस्थित नहीं होल हवन काहे के आज के कलाकार हवन हमनी के जितना भाई बहिन लोग साथ देवत हवन उस सब कोई कलाकार काहे के आज तो भाई तोहर दिन है बहुत खास दिन है और मजेदार गीत संगे थोड़ा सुना थोड़ा अनसुना गीत संगे तो चला तोहर खातिन बढ़िया बढ़िया गीत भी हैजा से हम प्रस्तुत करब जा और तोहर खातिन एगो ऐसन हिंदी फिल्म के गीत हैजा पर हम चलावब जा एगो बढ़िया गीत है फिल्म जन है भोजपुरी फिल्म है और जाने ल है फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा काम कर ले बा और है गीत है बिहारी बाबू फिल्म से लेवल गयल तो चला एगो बढ़िया गीत तोहरा सुनावब जा और जरूर तोहर खातिन स्थानीय गीत भी चलावब जा और एकर संगे संगे जितना कोई हमनी के साथ देवत हवा ऐसे ने प्यार से जरूर हमनी के साथ देते रहिए जा

भोजपुरी कार्यक्रम बिल्कुल कलाकार के बात और हैजा पर हमनी के ढेर कोई श्रोता लोगन प्यार से साथ देवत हवन वाकवा से शोभा जी हमनी के बुले उनकर प्यारी ननंद संध्या जी खातिन जे अभी दूर देश में हवन दूर विदेश में इंग्लैंड में हवन और उनकर भाई छौगो भाई देवन सुधीर संस्कृत स्वराज सत्यन और राजा की ओर से बहिन के बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद हैजा से उबिदा करत हवन और साथ ही साथ ढेर कोई श्रोता लोगन हमनी के साथ संगीत जुड़ गल हवन तब बस ऐसने साथ देते रहिए जा और स्थानीय कलाकार ललिता गजाधर के आवाज़ में रखल है गीत वा चलाओ अब जा जितना भाई बहिन लोग हमनी के संगीत जुड़ गल हवन और जे तोरा खुशी हवा कोनो मिसाज विदा करे के भोजपुरी भाषा संगे त जरूर हमनी के टेलीफोन एक करे सक 402-807-0 पर बिल्कुल आज 402-807-0 पर ऑन एयर तू जुड़े सकब और जे तू विदा एगो मिसाज विदा करे खोजत हवा त 5250-6200 पर हमनी के संगे जुड़िया

चला 7:16 हो गलबा और हाइजा पर एगो बहुते प्यारा अम्मी के एगो रिक्वेस्ट मिलल बा और हाइजा पर बगालू परिवार हमनी के साथ देवत हवन लापिलूश दुस से और सब भाई बहिन संगे हवन खासकर भाई हवन रोबिन दिलीप अभी योहान और ओम और बहिन लोग हवन निरल तेजल निधि अनिष्का और तीशा खातिर हाई जोन बढ़िया गीत है लागी नहीं छूटे राम के एगो बहुत पुरानिया फिल्म में से लेवल गए गीत रखिया बंधाल भैया चला हाइये गीत करब जा जुगौपा से माला जी खातिन माला जी उनकर

प्यारा भैया ज्ञानेश्वर बिहारी जिला लोगा से हमनी के साथ है दिवत हवन और सब बहिन माला उमा ज्ञानी गीता और ललिता जी के ओर से उनका बहुत बहुत आशीष बहुत बहुत प्यार

बावरी कलाकार की बात कार्यक्रम के माध्यम से आज ढेर कोई संगे जुड़ गल हवन और सचे के आज के दिन बहुत ही खुशियाली के दिन है काहे के हई दिन में सब अपन अपन भाई बहिन लोग के याद करेलन स अपन प्रिय जन के याद करेलन स कलाकार के बात कार्यक्रम के माध्यम से आज हमनी के साथ देवत हवन पूर्णिमा फुकीरा जी जे आज उनकर माँ के बहुत याद करत हवन काहे के हई जुनगीत अभी चलैनी हई लागिना

ही छूटे राम फिल्म से लेवल गए गीत हब बहुत ही प्यार से हई फिल्म में कुमकुम एगो कलाकार के रूप में बड़ा पर्दा पर रहल और हई ये फिल्म के गीत लागी नहीं छूटे राम हई जुन गीत रहल उ उनकर माँ हमेशा गावे सुभाषिनी ओगु तो चला पूर्णिमा जी के माताजी खातिन उनकर पिताजी खातिन और साथ ही साथ उनकर नाती पोता हवन शयन कानिश स्वानिश आयान और परी खातिन और बिल्कुल हमनी के पूर्णिमा जी के चार गो बेटी पिंकी प्राविनी पूजा और पूनम और हमेशा वो भी बहुत ही प्यार से साथ दे हुए उनकर बेटा हवन भावेश पतो हवन कुशमा जितना फुकीरा परिवार हमनी के साथ है देवत हवन गिवे जुगाओं पा बगल से उनकर खातिन है ये गीत करब जा तो हंसते मुस्कुराते बस ऐसने साथ देते रहिए जा और लागी ना ही छूटे राम के है गीत जितना कोई खुशी हवन सुने के उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन

रक्षाबंधन के पर्व जब जब आवेला जाने ल हमनी के भाई लोग के बहिन लोग के बहुत याद चलावेला और कबो कबो ऐसे हो जाला जीवन में कबो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा के खातिर भाई बहिन के जो रिश्ता है वो खट्टा हो जाला पर जाने ल जब ले जीवन बा है भाई बहिन के रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है चाहिला ओकरा निमन से निभाई के और हाईजा पर हमनी के प्यारी दीदी संगीता जुड़ गल हवन लाल माटी बगल से उनकर दूगो बहिन है वीना और रेशमा भाई हवन संजय पंचाय साथ हवन नीतीश पंचाय और फिनिक्स बगल से साथ देवत हवन संदीप पंचाय उनकर बस ये प्रार्थना करत हवन संगीता जी कि जहाँ रही हमेशा खुश रही हमेशा स्वस्थ रही और ऊपर वाले का के जो आशीर्वाद है हमेशा उन पर बरसते रही और दुगो लइका दुगो दामाद संगे हवन गीता मौसी और ललिता मामी जे हमेशा कोविडों से हमनी के साथ कार्यक्रम में हमेशा सुनते रहेलन सा तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी अपन दिल के बात तू हमर संगे साझा कलन काहे के रक्षाबंधन के हई जो पर्व हई बहुत बहुत मान रखेला तो चला आज के कार्यक्रम में जितना भाई बहिन लोग संगीत जुड़ गल हवन कार्यक्रम के माध्यम से एगो बढ़िया भोजपुरी गीत तोहर खातिन चलावत हई

कलाकार के बाद कार्यक्रम के जारी रखत है और आज तो बहुत एक खास दिन और जितना कोई हमने के टेलीफोने करत हवन बहुत बहुत धन्यवाद सब कोई के बहुत प्यार से रक्षाबंधन के हाईजन पावन पर्व ओकर बहुत बहुत शुभकामना देवत है दिल से सब कोई खातिन और हाईजा पर रिपाई से जुड़ गल हवन विनती जी और सब परिवार के संगे वो हमने के साथ खुशहाली के साथ है पर्व मनावत हवन पांच को भाई हवन कीर्ति कुमार राजकुमार हेमंत अशोक और रमेश और संगे संगे हवन उनकर बेटी नाविदा और बेटा लोग हवन नीतीश अरवेश उत्तम गौरव अकुल आश्ले आशीष आदर्श आकाश तीन को भाई हवन विदेश में प्रीतम पवन और राम और एमबीसी के जितना हवन सब टीम खातिन खासकर धर्म भाई खातिन संजय भैया खातिन वेदिता शशि दुकन खातिन अभी उदोई खातिन और पूजा रामदेवा खातिन गीत के मांग करत हवा और तू बहुत खुशी से एमबीसी के हर कार्यक्रम में भाग लेवेला हर कार्यक्रम के बहुत प्यार से सुनेला तो चला इसने प्यार से अपन साथ निभाते रहिए जा और ही जाने ला है बहुत खुशहाली के मौका है जहाँ पर तू हमने के एमबीसी के टीम खातिन भी एगो बढ़िया गीत के मांग कर ले हवा तो चला है रिश्ता हमेशा प्यार से ऐसने जुड़ल रही और ही चलत ये 5:35 हो गल बात बिस्वानी दीपवा जी के आवाज़ में रखल है अगला गीत करब जा सब बहिन लोग खातिन सब भाई लोग खातिन जो हमने के साथ देवत हवन उसने खुशहाली के साथ चला सुनब जा है अगला गीत

नगरी रेडियो मनोरंजन पर कलाकार के बाद कार्यक्रम जो बहुत कोई बहुत खुशी हवन है कार्यक्रम के सुने के और जाने ला है कार्यक्रम भोजपुरी गीत स्थानीय कलाकार के गीत है कार्यक्रम में हम जस्ती से जस्ती चलाईला पर आज जाने ला रक्षाबंधन के बहुत एक खास मौका है और हमने के श्रोता लोगन बहुत प्यार से मांग करत हवन हिंदी गीत के तो चलो आज के कार्यक्रम के तनी मोड़ देवब जा एक दो हिंदी गीत चलावब जा तोहर खातिर काहे के हमने के ढेर ऐसन गीत नहीं है भोजपुरी भाषा में जे रक्षाबंधन पर आधारित है तो चला आज के कार्यक्रम के जरूर हमार प्रिय श्रोता लोगन खातिर डेडिकेट करब जा और हैजा पर शोभा जी लालमाटी से साथ देवत हवन और जितना परिवार संगे जुड़ गल हवन जितना भाई बहन लोग सुनत हवन उन सब कोई खातिर है अगला गीत के तू मांग करत हव और खास कर तू बोले हवा है गीत हमर खातिन तो चल जरूर प्यार से चलाओ अब जा है गीत और जय श्री जी सूरीनाम से हमनी के साथ है देवत हवन दुगो भाई हवन एगो लंदन में एगो मोगिस में और देव भैया और नागन भैया खातिन अगला गीत डेडिकेट करब जात चल खास बहुत मौका है और खास मौका पर खास खास श्रोता लोगन के खास खास मिसाज जे हमनी के मिलता है जा पर बहुत बहुत धन्यवाद जितना प्यार से हमनी के सुनत हवन उन सब कोई खातिन तो चल खुशहाली के साथ हम भी आप सब कोई के खुश करे के है ये कोशिश जारी रखब जा और है गीत जितना भाई बहन हवन उन सब कोई खातिन हिंदी फिल्म काजल के गीत है आशा भोसले की आवाज़ में

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

तो चला आज के कार्यक्रम के समाप्ति करे के समय हो गल बा काहे कि अभी थोड़ा घड़ी में हम जुड़ब स हमारी धरोहर कार्यक्रम जे किरण जानकी द्वारा प्रस्तुत करल जाए और एगो भोजपुरी गीत संगे आहे कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करब जाए तो जरूर है डेडिकेशन के जो कार्यक्रम है आज के है आखिरी डेडिकेशन रही संध्या जी जे हमनी के संगे बहुत प्यार से साथ देवत हवन पुदोदो विलाज से और संगे हवन उनकर बहिन संगीता जे चार गो भाई खातिन बहुत बहुत प्यार विदा करत हवन सतीश भैया मनोज भैया दीपू भैया और दियानंद भैया चला उनकर खातिन रक्षाबंधन के है पावन पर्व के अवसर पर बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद तो जितना भाई बहिन है बंधन में रक्षाबंधन बांध दिले हो राखी बांध दिले होवन या नये बंधले बा तब्बो प्यार के है नाता हमेशा इसने भगवान के कृपा से बनल रही और सब कोई बस ऐसे हंसते मुस्कुराते परिवार के संगे जुड़ल रहिया तो चला आज के है आखिरी गीत के साथ कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करब जा और आशा करब जा कि है कार्यक्रम तोरा बहुत अच्छा लगल और हमनी के ऐसन मौका मिलल जेकर में तोहर संगे हमनी के तनी बतियाए के तह तोहर खातिन बढ़िया बढ़िया गीत चलावे के हमनी के मौका मिलल तो चला रोशन भैया जे तू सुनत हुआ तो हमार ओर से तोहर खातिन भी है गीत तोहर खातिन डेडिकेट करब जा और जितना हमर टीम जुड़ गल हवन उन सब कोई खातिन है ये गीत रक्षाबंधन के है पावन पर्व तोहर खातिन बहुत खुशियाली लेकर आए है ये।

ये दिल से आशीर्वाद सब कोई के और एकर संगे हमने के बस इसने सुनते रहिए हमेशा और साथ साथ बस हैजा पर हमने के अनुमति दिया। नमस्कार, शुभ संध्या सब कोई के।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर
1: हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा।

0: आज रक्षाबंधन मनावल जाता। आप सब कोई के रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामना। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन आज सब कोई बहुत धूमधाम से मनावत है जा। जेके मॉरिशस में हमने राखी भी बोली ला जा। रक्षाबंधन मॉरिशस में कम से कम 3 पीढ़ी से मनावल जाता। अब एकर से जस्ती ही एक और पीढ़ी एकर में जुड़ गल बा। और जो रिवाज या परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने आवेला उके धरोहर हेरिटेज मानल जाला। बड़ा आदमी लोग से जो जानकारी मिलल बा ओकर अनुसार ई पता चलेला कि 1960 के आखिर के साल में मतलब जिसने 60 के जो अंतिम बरिस रहल मतलब कि स्वतंत्रता के लगभग समय से मॉरिशस में राखी धूमधाम से मनावे के शुरू हो रहा है। हमने के पूर्वज लोग के समय में तब पर्व नहीं मनावल जात रहा। उन लोग के खाली काम रह करे के और अंधेरे उठियन से जब ले घामा नहीं डूबी तब ले उ लोग काम करते रहियन से। एक दुगो जन परब उलुक मनयन सा उरहल फगवा और दीपावली। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदले लगल समय सुधरे लगल और अच्छा दिन आए लगल त जोन सबसे प्रचलित परब मनावे के शुरू कर लगल उ में होली यानी कि फगवा होलिका दहन और फिर ओकर संगे संगे दीपावली ये सब थोड़ा जस्ती धूमधाम से मनावल जाए लगल। और फिर ये जो अंतराल रहल स्वतंत्रता से कुछ आगे हमने के देश में बड़ा बड़ा हस्ती लोग रहलन जा। जे लोग ये देश में गिरमिटिया मजदूर के लड़का लोग के स्थिति के सुधारे में लगल रहलन जा। और इनकर में प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदुया भी एगो रहलन। और ऐसन हस्ती लोग बहुत जोर दिलन से ई बात पर कि अगर आप अपन संस्कृति के जिंदा रखे चाहत हवा त आपके चाहिए अपन भाषा बोले के और अपन सब पर्व मनावे के। और यही झोंक में सब पर्व मनावे के शुरू होल धूमधाम से रक्षाबंधन भी एकर में शामिल रहल। एकर से अक्ते रक्षाबंधन के दिन भाई बहिन से सक्यंजा मिले लेकिन राखी बांधे के जन प्रथा रहल सुंदर सुंदर राखी के बिक्री शुरू होल तब से ई देश में फिर कब्बो ई प्रथा पीछे नहीं हटल। बाद में बॉलीवुड फिल्म के भी बहुत प्रभाव पड़ल और मॉरिशस में सकब्जा बोले 50 60 और 70 के दशक में भारतीय सिनेमा के सबसे जस्ती प्रभाव पड़ला के साथ साथ हमने के देश में ई रक्षाबंधन के पर्व भी मनावे के बहुत बड़ा था चलल। और अभी तक हमने ये परब धूमधाम से जस्ती बढ़ चढ़ के मनाए के शुरू कर लिया जा। और देखबा आगे के बड़ा आदमी लोग के सुनबा कैसे राखी मनावत रहन जा सादगी के साथ हाथ में सूता बांध के रंगल सूता गांठ बनावल सूता और धीरे धीरे कैसे सुंदर सुंदर राखी बेचाए लगल। और फिर ई जोन परब बा एकर में नेघ देवे के भी प्रथा शुरू हो गल। नेघ आगे खाली भाई बहन के देवे लेकिन बाद में भाई बहन बहन भाई सब कोई आपस में नेघ बांटे लगलन जा। आज जेके कादो उपहार बोली ला जा। और फिर अब एगो ऐसन समय आल जहाँ पर ई राखी खाली भाई के कलाई में नहीं बांधल जला बहन बहन के भी कलाई में राखी बांधेला। और एकर में चचेरा भाई मौसेरा भाई जिके कुजा कुजिन मोलीला सा ई सब कोई मिल के ई भाई बहन के त्यौहार मनावे ला जा। और सबसे बड़ा बात तो ई है कि एकर में मजहब के कोनो सीमा नहीं बा। मजहब के पार ई परब ई देश में बहुत सुंदर रूप से मनावल जाला जहाँ पर वो भाई चाहे कोनो भी कौम के होई या बहन कोनो भी कौम के होई ये राखी बांधे के प्रथा बराबर स्थापित हो गलबा। आप सब कोई के रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामना। भाई बहन के ई त्यौहार आप सब कोई के परिवार के जोड़ के रखी समाज के जोड़ के रखी और देश के एक सूत्र के धागा में बांध के रखी ऐसन शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

के पतवा सरी थे डोले मनवा कि ही यारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में

समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां। मॉरिशस में तेज हवाओं के चलने और समुद्र में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी है, जो सोमवार को सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन मस्करेंस टापुओं की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर मौसम पर पड़ रहा है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का पांचवा संस्करण आज सुबह राष्ट्रसभा में शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, मॉरिशस तथा सेशल्स की राष्ट्रीय सभा के स्पीकर भी वहां मौजूद थे। आज भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और विदेश में, नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 538 हो गई है। तिब्बत सीमा पर हिमस्खलन से बनी झील का जल स्तर बढ़ने से फिर से बाढ़ आने का खतरा है। और अब पेश है समाचार विस्तार से। मॉरिशस में तेज हवाओं के चलने और समुद्र में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी है, जो सोमवार को सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन मस्करेंस के टापुओं की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर मौसम पर पड़ रहा है। मौसम संबंधी जानकारियां बुलेटिन के अंत में दी जाएंगी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का पांचवा

0: संस्करण आज सुबह राष्ट्रीय सभा में शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, मॉरिशस तथा सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के स्पीकर भी वहां मौजूद थे। दो दिनों के दौरान 76 युवा संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होंगे ताकि वे लोकतंत्र और सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, विश्वास और अपनापन का त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसके सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करती हैं। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और अब पेश है ये रिपोर्ट याचना मिश्रा के साथ।
1: हल्दी से रंगा ये पीला धागा, बीच में गेंदा फूल बंधा, कुछ ही पलों में इसे पिरोया गया, लेकिन इसमें छिपा है प्यार अपार। ये राखी याद दिलाती है कि भाई और बहन के बीच का रिश्ता पूरी जिंदगी साथ निभाने के लिए बना है।
2: ये रक्षाबंधन हम पहले से करते थे, रक्षासूत्र और गेंदा के फूल उसमें डालते थे। हमार भाई हमार लिए बहुत अच्छा भाई है, वो हमको दिखता है सभी बहन को साथ में, हमारा भाई अच्छा है।
1: इस परिवार की राखी भले ही वर्षों के साथ बदल गई हो, लेकिन परिवार आज भी पुराने समय की परंपराओं और रीति रिवाजों की भावना को संजो कर रखना चाहता है। यह एक दूसरे से मिलने जुलने का पल है, लेकिन साथ ही उन अपनों को याद करने का अवसर भी, जो अब उनके बीच नहीं रहे। कुमार के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, उनकी बहनों का उनके जीवन में एक खास और अनमोल स्थान है, और ये दिन उनके प्रति अपने प्यार और लगाव को व्यक्त करने का दिन है।
3: हमारे लिए हाई फेटवा एक बड़ा फेट है, सेतु पुनु हमने के लिए, हमने के हिंदू भाई लोग के, हमारे बहन हमारे लिए बड़ा चीज है। छोटा से हमके देखल छा, हमारे माँ बाप जब गुजर गए तो लोग हमारे माँ बाप हम छोड़ के बिना हमार कुछ नहीं सकेला करे, हमारे सब चीज में आगे रह।
1: राखी बांधने के बाद बारी आती है भाई की, जो अपनी बहनों को उपहार देता है और इससे ज्यादा आजीवन उनकी रक्षा करने का वादा करता है। एक छोटा धागा जो परिवार के इस मजबूत रिश्ते को और भी गहरे बंधन में बांधता है।
0: रक्षाबंधन भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार से जुड़ी कई प्रसिद्ध कथाएं हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की मानी जाती है। वीडिमा सिबुरन।
4: प्रचलित मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उनकी उंगली पर बांध दिया और रक्त बहना रोकने का प्रयास किया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ स्नेह से श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि संकट की घड़ी में वे उनकी रक्षा करेंगे। बाद में कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान करने और उनका चीरहरण करने का प्रयास हुआ, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण की कृपा से उनका वस्त्र बढ़ता गया और उनकी मर्यादा की रक्षा हुई।
5: ये एक दिन रक्षाबंधन का जब आता है ना, तो ये दिन हमें याद दिलाती है कि कोई ना कोई, कभी ना कभी तो बहन हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, कभी ना कभी तो भाई ने बहन के लिए कुछ अच्छा किया हो, तो उन सब छोटी छोटी बातों, टूटी फूटी को छोड़ो और आगे बढ़ो, भाई चारा रखो और भाई बहन में ये नाता, ये प्यार हमेशा, क्योंकि ये तो अटूट बंधन है, अटूट बंधन है, लड़ाई झगड़ा करने से ये बंधन टूटने वाला नहीं है, ठीक है, ये अटूट बंधन है। तो हमें अपने जो अहंकार है, उस अहंकार के जैसे कि राजा बलि को अहंकार था, तो उसी तरह से हमें अपने अहंकार को नीचा करके हमेशा अपना कर इस नाते को, इस

0: भाई बहन के नाते को और भी बढ़ावा देनी चाहिए।
1: श्री कृष्ण और द्रौपदी का ये प्रसंग रक्षाबंधन की गहरी संदेश को सामने लाता है। ये पर्व केवल भाई और बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये प्रेम, विश्वास, सम्मान और संकट के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहने के संकल्प का प्रतीक है। इसलिए ये पर्व आज भी भारत में और प्रवासी भारतीयों के बीच प्रेम और विश्वास के उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
2: और जैसा कि हमने पहले कहा था, नेशनल यूथ पार्लियामेंट का पांचवा संस्करण आज सुबह राष्ट्रीय सभा में शुरू हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, मॉरिशस तथा सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के स्पीकर भी मौजूद थे। दो दिनों के दौरान 76 युवा संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होंगे ताकि वे लोकतंत्र और सुशासन के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। नेशनल यूथ पार्लियामेंट युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का मंच देता है, साथ ही उन्हें अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिलता है। आज सुबह प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का मुख्य मुद्दा मॉरिशस के युवा स्नातकों का विदेश जाना और प्रतिभाओं का के देश से बाहर जाने की समस्या थी। इनमें प्रतिभाओं को देश में बनाए रखने और युवाओं की शैक्षणिक योग्यता तथा उद्योग की जरूरतों के बीच के अंतर को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने उनसे कहा कि जीवन में वे जो भी काम करने का फैसला करें उसे दृढ़ विश्वास, साहस और इच्छा शक्ति के साथ पूरा करने की कोशिश करें। ज्यादा जानकारी रजनी बिकर के साथ।
3: नेशनल यूथ पार्लियामेंट के पांचवें संस्करण का उद्घाटन सत्र निर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण के साथ। इसके उपरांत स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चयन हुआ।
4: While this assembly will inevitably witness fierce clashes of ideas, let us consistently elevate our debate and uphold the true nobility of our democracy.
3: सभा के नियमों का पालन करने की मांग की गई, जिसके बाद सत्र आरंभ हुआ सबसे अहम चरण के साथ।
4: Leader of the opposition, your private notice question.
5: Within regard to the issue of brain drain,
3: private notice question PNQ. चर्चा का विषय डिग्री प्राप्त करने वाले नौजवानों में कईयों के विदेश चले जाने का विषय। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के विपक्ष नेता ने कहा,
6: 70% of graduates who go abroad to study do not return. It also identifies the gap between tertiary education and the job market as a root cause of brain drain.
5: The minister has stated that l'air n'est pas plus vert ailleurs. Mais la vraie question, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement prend réellement soin de l'air qui est dans son pays?
6: Education must align with labor market needs. Employment policies must facilitate the transition into work. Economic policies must create high value opportunities. Research and innovation policies must allow talent to progress. And diaspora policies must keep our original expertise connected to the country.
3: अपने जवाब में Deputy Prime Minister और उच्च शिक्षा मंत्री ने सामाजिक और आर्थिक चुनौती से निपटने से संबंधित विषय पर बात की। PNQ के बाद सिंथेटिक ड्रग्स, सामाजिक वार्ता, मॉरिशन समुद्री क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से मछली पकड़े जाने से जुड़े आदान प्रदान के कार्यक्रम भी PMQT Prime Minister's Question Time कार्यसूची में शामिल।
7: The proliferation of synthetic drug is a national emergency that strikes at the heart of our republic, our youth. Monsieur le Président, se relever de l'addiction aux drogues synthétiques est un parcours éprouvant et douloureux. C'est un combat de tous les jours pour ces jeunes et leurs familles, une épreuve qui déchire le tissu social de notre pays. À travers ces initiatives, nous veillons à ce que nos ressources financières soient à la hauteur de cette crise nationale. L'avenir de notre jeunesse n'a pas de prix et notre engagement financier reflète cette conviction absolue.
3: नौजवानों की संसद के इस पांचवें संस्करण की बदौलत 76 प्रतिभागियों को संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित होने का अवसर मिला ताकि वे लोकतंत्र और प्रशासन के सिद्धांतों को बेहतर रूप से समझ सके।
8: You will be stepping into our shoes in order to capture the essence of parliamentary democracy. You will do so in the presence of your parents or next of kin, who have surely encouraged you to do everything which favors your overall development. Here, you will have been trained to speak

0: defend your ideas with respect for your opponents of the day.
1: I dare say that this youth parliament is a manifestation of cross-generational efforts where those who have done the work are providing a clear pathway for those who wish for the chance to continue in their footsteps.
2: दोपहर बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खाद्य सुरक्षा से संबंधित दो मोशंस पर बहस चली।
3: आज 28 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। संस्कृति को देवों की वाणी कहा जाता है। इसी भाषा में हमारे शास्त्र लिखे गए हैं। एक ऐसी भाषा जो समय के साथ अब कम ही लोग बोल पाते हैं, लेकिन समझते उससे कई ज्यादा लोग हैं। मॉरिशस में विश्वविद्यालय के स्तर पर भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी संस्थाएं भी हैं जहां छोटे बड़े सभी एकत्र होकर सरल तरीके से संस्कृत सीख पा रहे हैं। देश की पहाड़ियों में लालोहा गांव में ऐसी ही एक संस्था है, सुलभ संस्कृत संस्थान। याचना मिश्रा की रिपोर्ट।
4: कोई कापी, न पुस्तक और न ही कलम। यहाँ सीखने का तरीका अलग है, लेकिन उतना ही प्रभावी। खेल के माध्यम से बच्चे संस्कृत में गिनती सीख रहे हैं। ये विचार यहाँ के आचार्य और उनकी पत्नी को कोविड-19 संकट के दौरान आया, जब सभी घर पर रहने को विवश थे।
5: जब कोविड की बातें होने लगी थी, लॉकडाउन लगने की बात हो रही थी, तो हर कोई व्यक्ति अपनी तरह से समाज की और देश की सेवा करता है। तो मेरे पास भाषा थी, तो मैंने कहा भाषा की मदद से मैं समाज की कुछ काम आऊं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तभी मैंने संस्कृत क्लासेस ऑनलाइन शुरू की थी। समाज में कितनी सारी बुराइयां फैल रही हैं, बच्चों के लिए कितनी मुश्किल है, तो बच्चों को एक कम्युनिटी दी जाए, एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी, जिसमें वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकें और अच्छी बातें एक दूसरे से रहे, एक अच्छी संगत रहे, जैसे कहते हैं ना सत्संग। तो वो जब यहाँ आते हैं तो उनका सत्संग होता है।
6: Mes deux garçons qui join classe, j'ai commencé suivre classe et en même temps moi aussi me dire que j'ai pas besoin ensemble avec eux pour moi aussi me comprendre.
4: संकट की समाप्ति पर उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखी और लालोहा के मंदिर में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन सुनकर वे सीख पा रहे हैं।
7: C'est pas juste sanskrit, c'est une culture, c'est une heritage, nous man ancêtre, nous man grand immune. Sanskrit, ce qui est difficile avec lui, c'est qu'il lit bien, surtout pour moi, il lit bien based le hindi. Alors pour moi, à cause de mon bien à la base de hindi, là, je me trouve plus challenging. Mais ce qui me trouve plus rewarding, qui challenging, c'est quand finalement, nous peut comprendre man man chose à qui je peux dire.
8: Hindi or sanskrit.
9: संस्कृत में हम संस्कृति भाषा बोलते हैं और हम मंत्र सीखते हैं।
10: संस्कृति देते मैं तो बुकू हवन भजन मंत्र मैं अपन बुकू जो डिसिप्लिन का मैं अपन संस्कृत।
11: अब लोग मंत्र पढ़ते हैं, बस ना आपको समझ ही नहीं आता आप उसके पीछे क्या बोल रहे हो। थोड़ी बार आ सकता है आप घर पे जा रहे हो, आप एक मंत्र पढ़ रहे हो, बस हो सकता है आपको उसका मीनिंग नहीं पता, आप उसको ऐसे ही बोल रहे हो बस। तो आप संस्कृत सीख लिया आपने और संस्कृत पढ़ने लग गए आप, आप मंत्र बोलोगे आप उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे आप क्या बोल रहे हैं। आप सच हाँ मैं ये बोल रही हूँ भगवान ऐसे कुछ, आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट फील करेंगे।
12: मैं संस्कृत इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी संस्कृति और परंपराओं को और गहरे से समझना चाहता हूँ।
4: मंत्रों का उच्चारण और उनका अर्थ जानने के साथ साथ बच्चे अपने धर्म और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहने के लिए भी संस्कृत सीख रहे हैं। भारत की ऐसी भाषा जो सदियों पुरानी है, लेकिन अभी भी अत्यधिक महत्व रखती है।
3: वर्ल्ड मीट्स में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि कामकाज आंशिक रूप से फिर से शुरू हो गया है, लेकिन कई मजदूर अभी भी तकनीकी बेरोजगारी के कारण काम से बाहर हैं और वेतन मिलने में लगातार देरी हो रही है।

0: हालांकि प्रशासन का कहना है कि देरी कम करने और स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। करुणा लालू।
1: कई महीनों से वर्ल्ड नीड्स के कर्मचारी रोजाना अनिश्चितता में जी रहे हैं। वित्तीय संकट के शुरुआती संकेत जनवरी से ही सामने आने लगे थे, तब से स्थिति लगातार बिगड़

0: que la fin du mois d'août, nous pas connaît qui pour la situation de Banzo qui peut venir.
1: दो जून को कंपनी को रिसीवरशिप के अधीन रखे जाने के बाद से कर्मचारियों के वेतन में देरी जारी है। हालांकि जब तक कंपनी प्रशासन के अधीन है, कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना जरूरी है।
2: Travailler quand il travaille, les supposés gains sont payés d'après la loi. Le ministère a des supervising ban officier qui est délégué à supervising officer. Vous êtes capable de prendre une requête de ce staff là. Les là, je channelle vers l'administration pour lui, vous êtes faire, vous êtes ban procédure qu'il a à faire. Mais pas ça veut dire qu'il quand l'accompagnant en administration, c'est-à-dire travailler, qui peut faire ce travail, il n'est pas gagné sur la paye.
1: प्रशासक राजीव बसगीत ने कहा, हमने स्थिति को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किया, क्योंकि कपड़ा उद्योग उन क्षेत्रों में से एक है जो उत्पादकता में सबसे अधिक योगदान देता है और देश में विदेशी मुद्रा भी लाता है। बैंकों के सहयोग से फरवरी से बंदरगाह पर फंसे कच्चे माल को आखिरकार हासिल किया जा सका। ऑर्डर पूरे करने के लिए कुछ मशीनों को दोबारा चालू किया गया, जिससे निर्यात गतिविधियां भी फिर से शुरू हो सकी। कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें वेतन की कुछ ऐसी बकाया राशि भी शामिल है जो कंपनी को प्रशासन के अधीन रखे जाने से पहले की थी। जुलाई महीने के वेतन का भुगतान फिलहाल अंतिम चरण में है। इसका भुगतान निर्यात से होने वाली आय पर निर्भर है।
3: और विदेश खबरों में, नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 538 हो गई है। तिब्बत सीमा पर हिमस्खलन से बनी झील का जल स्तर बढ़ने से फिर से बाढ़ आने का खतरा है, इसलिए सावधानी के साथ खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल पुलिस ने एक बयान में कहा है कि अब तक 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारियां सुमेरा अकबर अली के साथ।

0: हिमालय की छांव में प्रकृति की गोद में नेपाल का ये दर्दनाक हादसा कुदरत का ही किया कराया है, जो पहले किसी दूसरे देश ने देखा ना जाना है। सब कुछ बह गया, समुद्र की सतह से 5000 मीटर ऊंची बर्फीला चट्टान नष्ट हुआ। अचानक सैलाब उतर आया और बम जैसा लगा। दूर से नदी छोटी लग रही थी, लेकिन देखते देखते अचानक वो उमर आई और सब कुछ अपनी चपेट में ले गई। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, बचाव और खोज कार्रवाइयां की जा रही हैं। जमीनी और हवाई मिशन को सक्रिय कर दिया गया है। प्रभावितों को खाद्य चीजें और दवाएं दी जा रही हैं। काठमांडू से अतिरिक्त 40 हेलीकॉप्टरों को सहायता के लिए भेजा गया। नेपाल की सेना पूरी कार्रवाई का संचालन कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर एक जलजले से बर्फीला चट्टान गिर गया होगा, लेकिन अमेरिका की जियोलॉजिकल सेवाओं ने कहा कि वादियों में चट्टानों के गिरने से ये घटना पेश आई। माहिरों के मुताबिक त्रिशूरी नदी में सिर्फ आधे घंटे में पानी का सतह 9 मीटर से बढ़ा। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमन कॉक्स बताते हैं, आपदा की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में क्या हुआ होगा और कैसे, एक बात स्पष्ट है कि 5200 मीटर वाला बर्फीला चट्टान वादी में 1200 मीटर की गहराई में गिरा। एक बड़ा मलबा बनकर वो पानी में गिर गया और बांध तक पहुंचा, जो उसके टूटने की वजह बन गया। नेपाल में सैकड़ों पर्यटक मृतकों और गुमशुदा लोगों में शामिल। भारत ने चेतावनी जारी कर ली है, क्योंकि बिहार यूपी सरहद के पास वाले इलाकों में खतरे हैं। सन 2011 से नेपाल की ये बाढ़ सबसे जानलेवा रही है, बावजूद ये कि लगातार गंभीर कुदरती आफात पेश आती रही हैं। नेपाल की इस आफत के चलते कई देश मदद का हाथ आगे कर रहे हैं। यूरोपीय संघ भी सहायता पहुंचा रहा है। रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट संगठनों ने एक बयान में कहा कि वो $1.24 million का दान दे रहे हैं।
1: फूड पैकेट्स वाज हैंडेड ओवर टू महावीर।
2: और बुलेटिन के अंत में पेश है मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
3: मॉरिशस में ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, जो सोमवार 31 अगस्त सुबह 10 बजे तक बरकरार रहेगी। इसके अलावा एक जोरदार एंटीसाइक्लोन

ट्रोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, ऊंचे इलाकों पर और हवाई ढलानों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। तेज हवाओं के कारण यहां वहां उड़ती चीजों से बचने, ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा सावधानी बरतने और खासकर सड़कों पर क्रॉसविंड्स के कारण सतर्क रहने की मांग की जाती है। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिणी और पश्चिमी समंदर में लहरें तटों तक पहुंच सकती हैं। दूर समंदर में और खासकर लगूनों में भी न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15, अधिकतम 17 से 20, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:21 पर, शाम को सूर्यास्त 6 बजे होगा।

और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। जेबिया रोड रोजबेल में 79 साल की 79 ईयर ओल्ड की मिसेस बीबी नाजमून मुरली, पैदाइश नाम गिरधारी और जो नाजमून से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 9:30 बजे उनके बेटे इमरान मुरली के घर जेबिया रोड रोजबेल से उठाकर यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9:30 PM। आंखें कातों बिस्नात लेन ओकुले में 71 साल के 71 ईयर ओल्ड के श्री पदुमन लोलजाविया, जो सुरेश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनकी पत्नी बीना लालजाविया के घर आंखें कातों बिस्नात लेन ओकुले से उठाकर सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9 AM। बाशेरी मुक्का में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड की श्रीमती विद्यावती रामा, पैदाइशी नाम अंगत सामी और जो विवेक से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर बाशेरी मुक्का से उठाकर अलीब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। रॉयल रोड बोबासा में 76 साल की 76 ईयर ओल्ड की श्रीमती बिडवंती सोवांबिया, पैदाइश नाम रामदोस और जो पहले नंबर 11 हुई सेंट जेम्स पोर्टविस रहती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासा से उठाकर शिबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। अस्तोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 साल के 95 ईयर ओल्ड के श्री हरिलाल कालिसा, जो पानी से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी सती कालिसा के घर अस्तोरिया रोड गुडलैंड्स से उठाकर बाघोश गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

रेडियो मॉर्शस पर लाइव प्रसारण जारी है. आइए सुनते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां. क्यूपिप के रहने वालों को, खासकर लिटलेजियो स्ट्रीट के कुछ हिस्से, हिगिनसन स्ट्रीट, हसावी सिंह स्ट्रीट और वहां आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल शनिवार 29th of अगस्त को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी. अब सुनिए दूसरी विज्ञप्ति. बॉशेरी, ग्रांबोआ, ले ग्रां रोड, एनएचडीसी ग्रांबोआ के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल क्षमा करें फिर से सुन लीजिए ये विज्ञप्ति. बॉशेरी, ग्रांबोआ, ले ग्रां रोड और एनएचडीसी ग्रांबोआ के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से वहां उन सभी जगहों पर बिजली में कटौती लाई जाएगी. और एक विज्ञप्ति. आले जिवेजे रोड पेरेबेया के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 30 अगस्त 2026 को ही सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से आले जिवेजे रोड पेरेबेया में कटौती लाई जाएगी मरम्मत कार्यों की वजह से. और एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही. स्विचेस, सिटी लालुमिया, गांवे और गांवे पुलिस स्टेशन के आसपास, आसिया पैराडाइस और रुई ओकिदे, उन सभी निवासियों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 30 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी. तो उन सभी जगहों पर मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली में कटौती लाई जाएगी और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी. ये इस असुविधा के लिए, उन सभी असुविधाओं के लिए सीबी क्षमा प्रार्थी है. तो ये थी कुछ विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से.

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: शनिवार 29 अगस्त को श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की तत्वधान में इन सब शाखाओं में यज और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। विवेकानंद सभा तोंबुबे शाखा नंबर 2 श्री दयानंद गणपत तखीजीदास रिवरव्यू कॉम्प्लेक्स तोंबुबे में होगी 3 बजे से सुबह के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक। और आर्य रविवेद फेडरेशन नंबर 7 पीटों रिवेज रोपा ये होगी सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक आर्य रविवंश भवन न्यू रेलवे रोड रिवेज रोपा में। वेल आर्य रविवेद सभा शाखा नंबर 26 और ये होगी शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक सर ए आर एम रोड अपवेल। प्रवचन मोहनाचार्य श्रुत भांडु द्वारा जो कि अर्श गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम एमपी भारत आर्यवर्त से हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री चैतन्य सरस्वत मत शनिवार 29 अगस्त को रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है जो दिन के 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी और ये शुरू होगी कैंकारी कैलाश वालतों से और SCS मत लॉन्ग माउंटेन तक जाएगी।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: Nee so.
3: शुक्रवार 28 अगस्त, घड़ी मिला लीजिए शाम के 6:35, रेडियो मनोरंजन पर, RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ सुमी और आप सबका साथ देने के लिए हम आ गए हैं अभी से लेकर रात के 9 बजे तक। चलिए, आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत से लोग जो है आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहे हैं। इसकी ढेर सारी बेस्ट विशेस, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भाई बहन का ये जो रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत होता है और ये रिश्ता हमेशा बना रहे, हमेशा इस रिश्ते में मिठास हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और नई सोच ये जो प्रोग्राम है चलेगा अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक और 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। सो आज का ये दिन हमें यहाँ पर आप सबसे जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए अभी से लेकर जो है खूबसूरत गाने आपके लिए चलाएंगे। और आज तो फ्राइडे है, इंडीड फ्राइडे का दिन लोगों के लिए खुशियों से भरा होता है क्योंकि उनको पता है कि आने वाला वीकेंड जो है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। अभी के लिए खूबसूरत गाने यहाँ पर आपके लिए हम चलाने वाले हैं और इन गानों के साथ जो है मतलब कि अगला जो तराना हमारा होगा करण अर्जुन फिल्म का गाना है ये बंधन, तो प्यार का बंधन है। इस खूबसूरत गाने के साथ नई सोच की शुरुआत हम करते हैं।

0: नई सोच।
1: यकीनन ज़िंदगी का सफ़र बस चार दिन का है। कभी कभार ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा वक्त जो है हम बेकार की चिंता में, बेकार की टेंशन में, बेकार की परेशानी में जो है इसे बिता देते हैं और फिर बस अफसोस करते रह जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जितना भी टाइम मिलता है, जितने भी मोमेंट्स मिलते हैं, हमें इन्हें खुलकर जीना चाहिए। हर एक पल को, हर एक मोमेंट को मेमोरेबल बनाना चाहिए ताकि कल को हम अफसोस ना करें कि भाई समय तो निकल गया। चलिए यहाँ पर अभी के लिए नई सोच इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन और मैं सुमी आप सभी का साथ दे रही हूँ।

0: नई सोच।
1: और चलिए नई सोच के इस आखिरी गाने की ओर बढ़ते हैं और इसी के साथ नई सोच ये सेगमेंट खत्म हो जाएगा और इसके बाद शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। तो जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए टिल 9 PM ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
0: You're listening to RM3 Radio Man.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चले घड़ी में ला लीजिए, शाम के 7 ऑलरेडी बज चुके हैं। आज है शुक्रवार 28 अगस्त। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। और चले यहाँ पर दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को लेकर हम आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, आपका साथ देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं। और रात के 9 बजे तक हम आपके साथ साथ रहेंगे। सो वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके इस लवली लवली साथ के लिए। और चलिए रक्षाबंधन का ये जो पर्व है, आप सभी बहुत अच्छे से मना रहे होंगे ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और भाई बहन के बीच ये जो नाता है, ये जो रिश्ता है, और भी गहरा हो और प्यार से हमेशा भरा रहे। और इसी के साथ चले इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। HS Visual

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए आपके दिल की आवाज हम तक बेशक पहुंच रही है आपके डेडिकेशंस के जरिए, आपकी फरमाइशों के जरिए, आपके मैसेजेस के जरिए। और इट्स फ्राइडे टुडे और फ्राइडे के दिन को इस एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं हूं सुमी। ऐसे तो हर मंडेज को हम आपसे मिलने आते हैं इन योर दिलों की आवाज़, लेकिन आज फ्राइडे भी हमें आकर यहाँ पर आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। तो चलिए यहाँ पर इस पल को हम साथ में मिलकर जीते हैं, खूबसूरत गाने साथ में मिलकर गुनगुनाते हैं। और यहाँ पर आप शायद इस समय अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को मना रहे होंगे। तो चलिए जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। और खूबसूरत गाने तो है ही आपके एंटरटेनमेंट, आपके मनोरंजन के लिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और चले दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं. नॉट टू फॉरगेट, यू कैन सेंड योर डेडिकेशंस ऑन 5250600, यू कैन इवन कॉल अस ऑन 4028070. और साथ ही इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, सो आप वहां पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी जो रिक्वेस्ट है हम तक पहुंचा सकते हैं. आपको तो पता ही है दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में हम 90s के तराने चलाते हैं, कुछ रोमांटिक गाने चलाते हैं और यहां पर आप सभी को एंटरटेन करते हैं. सो शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए. और यहाँ पर पापोन की आवाज़ में ये खूबसूरत सा तराना चल पड़ा है आप सभी लवली लिसनर्स के नाम और साथ ही हमारे तमाम फॉलोवर्स के नाम जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं.

0: दिलों की आवाज़।
1: चलिए यहाँ पर देखते ही देखते शाम के 7:28 ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज़ योर दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन एंड मैं हूँ सुमी, आप सभी का साथ यहाँ पर दे रही हूँ। बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे हमारे लवली लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके मैसेजेस हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी मिल रहे हैं और साथ ही आपके डेडिकेशंस हमें इस लाइव के ज़रिए भी मिल रहे हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं सहजेंद्र राय हूँ इंडिया गोरखपुर से, एक गाना चला देना।

ऑलराइट, चले अगला गाना सहजेंद्र जी आपके नाम होगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। संजीत जी कनाडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। रॉबिन वुड जी, कैसे हैं रॉबिन वुड जी? सायरा दाहू जी इस समय काम करते करते हमारा साथ दे रही है, तो थैंक यू सो मच। लक्ष्मण मलू, आपको भी हम नहीं भूले हैं, इंडीड यहाँ पर आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। वी हैव यहाँ पर अस्मित सिंह जी हमारा साथ दे रहे हैं, अनुज है यहाँ पर, मनोज जी हमारा साथ दे रहे हैं, वी हैव अनीता, अमिता रोजी, आपने कहा कि रक्षाबंधन पर कोई गाना हो जाए, तो ऑफकोर्स अगला गाना होगा सभी भाई बहनों के नाम जो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को मना रहे हैं। और यहाँ पर बस ऐसे ही साथ देते रहिए हमारा, और रक्षाबंधन फिल्म का ये तराना आप सभी भाइयों और सभी बहनों के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: तेरे साथ हो मैं taken up from the movie रक्षा बंधन. यस, हम भी आपके साथ हैं और आपके साथ साथ रहेंगे रात के 9 बजे तक. और चले, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस समय प्रकाश यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं. वी हैव मेधा, स्वरूप जी वाकवा से हमारे साथ कनेक्टेड है. वी हैव विजय जी जो बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं यहाँ पर. और यहाँ पर विकास जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है. और कवि किशन जी, वी हैव राजेश, जितिन, स्वीटी, रोहन, रजनी बड़े ही प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड है. अगला गाना देवी जी आपके नाम हम करते हैं. हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले. तो चलिए ये प्यारा सा गाना आप सभी के नाम यहाँ पर.
2: You're listening to RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए यहाँ पर हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। इंदी प्यार भूलने वाली चीज़ थोड़ी ना होती है। और चलिए यहाँ पर बड़े ही प्यार से अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तराना सागर फिल्म का ये गाना होगा ओ मारिया, जिसकी रिक्वेस्ट आई है वेदना जी की ओर से, जो इस समय कटरबोन से हमारा साथ दे रही है। थैंक यू सो मच। और बहुत से लोग रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को मना रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भाई बहन एक साथ है इस पर्व को तो मना रहे हैं। कभी कभार कुछ लोग एक दूसरे से दूर होते हैं किसी भी वजह से, तो एक साथ इस फेस्टिवल को मना नहीं पा रहे हैं। चले कोई बात नहीं, कहते हैं ना प्यार जो है दिल में होता है, और ये जो प्यार आपके दिल में हमेशा रहे, आपके अपनों के लिए, आपके भाइयों के लिए, आपके बहनों के लिए। और यहाँ पर अगले तराने की ओर पढ़ते हैं। शोभा जी सभी को हैप्पी रक्षाबंधन विश कर रही है। बबीता जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है। अरमान है, हेमा गंगा है, प्रिया जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी हैव वी हैव इंदिरा जी जो इस समय हमारा साथ दे रही है। ललिता जी आपका भी मैसेज हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गानों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। और प्रकाश जी थैंक यू हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। देवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग द लाइव। हेमा गंगा जी आपने एक गाने की फरमाइश की है, लेकिन आपके गाने के जो लिरिक्स है जो आपने हमें लिख कर भेजा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप दोबारा से अपने मैसेज को भेजें और बताएं कि कौन सी मूवी है तो हम ज़रूर आपके गाने को चलाएंगे। स्वीटी जी थैंक यू सो मच, आपने जो गाना मांगा है थोड़ी देर में हम चलाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट थैंक यू सो मच। अनिल राजन जी आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जैस्मीन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सॉन्ग। Thank you, Devi ji, for your message.

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: चलिए, खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और फ्राइडे जो है बहुत स्पेशल होता ही है क्योंकि सप्ताह भर काम करने के बाद ऐसा लगता है कि कब वीकेंड आएगा और कब हम घर पर थोड़ा सा आराम कर पाएंगे या कब क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सैटरडे संडे भी काम करते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हर एक दिन अपने आप में खास होता है और यहाँ पर हर एक दिन को थोड़ा सा और ख़ास बनाने की हमारी कोशिश होती है खूबसूरत गानों के ज़रिए और अच्छे अच्छे प्रोग्रामों के ज़रिए। और आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, हमारा साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, यहाँ पर मैसेज आया है रजनी जी की ओर से, कहती है कि फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर जितने भी प्रोग्राम्स चलाए गए उन्हें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है ये, मतलब आप है तो हम हैं और बस आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे, आपका विश्वास ऐसे ही हम पर बना रहे। और चले अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। डंकी फिल्म का ये तराना अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में ये गाना जाता है। सूट जी, आपके नाम फ्रांस से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी आपके दोस्तों के नाम वहाँ पर जो आपके साथ हैं। वी हैव जासमीन, जासमीन जी पुराने गाने इस प्रोग्राम में हम नहीं चलाते हैं, लेकिन पुराने गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो बेशक रेडियो मनोरंजन पर दोपहर को जो सुहाना सफ़र प्रोग्राम चलता है आप वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं और साथ दे सकते हैं। प्रकाश जी, थैंक यू सो मच और थैंक यू हमारे लाइफ को शेयर करने के लिए। प्रवेश, वी हैव रेशमा, सरिता, विकी, संध्या जी बड़े ही प्यार से साथ दे रहे हैं। और चले ये तराना चल पड़ा अरिजीत सिंह के सभी फैंस के लिए।

0: दिलों की आवाज़
1: चले दिलों की आवाज़। इस प्रोग्राम में इस समय विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, जिनका भी जन्मदिन है, आपने उनका नाम शायद ठीक से नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं, जिनका भी बर्थडे है उनको आपकी ओर से और आपके पूरे फैमिली की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और हमारी पूरी टीम की ओर से भी। एंड यहाँ पर रक्षाबंधन के मौके पर बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स है गाने की फरमाइश कर रहे हैं, तो चलिए अगला जो तराना है खासकर किशोरदा की आवाज़ में होगा। यहाँ पर किसी ने कहा था किशोरदा की आवाज़ में कोई गाना अगर हो सके तो चला देना, तो यही गाना आपके लिए भी हम करते हैं। वी हैव सोनम रतन नवीन नुमायार जो हमारा साथ दे रहे हैं, संजना जी है, माला जी है, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं, यही गाना रजनी जी, थैंक यू सो मच। संध्या जी, राखी सॉन्ग, ऑल राइट, अगला गाना रक्षाबंधन के मौके पर हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का है, तो ये गाना आपके लिए हम करते हैं। हेलो नमस्ते दिनेश गोपी जी, कैसे हैं आप? संध्या जी, थैंक यू सो मच, कटरबोन से आप हमारा साथ दे रही हैं। संजना तोताराम जी रोड्रिक से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, और अगला गाना आपके भाई रितेश के नाम, और उनको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नर्मदा यहाँ पर हमारा साथ दे रही है, वी हैव जेवीना, गुड इवनिंग जेवीना, थैंक यू। जितने भी लोग हमारे इस लाइव को फॉलो कर रहे हैं, साथ में इस लाइव को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी इंदिरा जी, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। और अगला गाना आपके सभी के फैमिली मेंबर्स के लिए, और यही गाना नर्मदा जी आपकी ओर से एशले के लिए।

0: दिलों की आवाज,
1: चले दिलों की आवाज़ का ये जो सेकंड आवर है इसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे रात के 9 बजे तक। राष्ट्र रक्षाबंधन का ये पावन पर्व है जिसे आप अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस समय आप अपने फैमिली के साथ होंगे, इस पल को इंजॉय कर रहे होंगे, एक साथ जो है मिलकर इस मेमोरेबल पल को बिता रहे होंगे और साथ ही में हमारे साथ कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। और चलिए अगला गाने की ओर हम बढ़ते हैं। करुणा जी साथ दे रही है, अलंकार जी गानों को पसंद कर रहे हैं, वी हैव अरविंद अफीजा जुबेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राफिक मोहित जी आपका भी मैसेज हमें मिला, रेशमा बंधु जी आपको भी हम नहीं भूले। और चलिए खूबसूरत गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं।
2: रक्षाबंधन
3: चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।
4: मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना।
3: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए यहाँ पर हम भी यहीं पर है, आपके दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, आपके मैसेजेस के ज़रिए, आपके फरमाइशों के ज़रिए, आपके डेडिकेशंस के ज़रिए। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिखा है, ये मैसेज आया है, सभी आपादु फैमिली की ओर से आउटस्टैंडिंग शो। और अगला गाना जाता है दारेन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुविश्ता, सभी आपादु फैमिली के

नाम जो रोशनुआ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। संध्या जी ब्रिटानिया से हमारे साथ जुड़ी हुई है। संध्या जी, जो गाना आप मांग रही हैं वो हमारे पास नहीं है। अगर कोई और गाना सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे। अभी के लिए जो तराना है आपके नाम भी हम करते हैं। संबंध फिल्म का ये गाना इतना भी ना चाहो मुझे, कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: चले इस समय बड़े ही प्यार से रिहाना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और अगला गाना जो है इन्होंने मांगा है हमारे तमाम लिसनर्स के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारा साथ दे रहे हैं। इस समय माला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो सो मच। एंड चलिए इस गाने को आप सुनेंगे अभिजीत जी की आवाज़ में, बेवफा फिल्म से लिया गया, इश्क छुपता नहीं छुपाने से।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़।
1: चले इसी के साथ दिलों की आवाज़ का जो खूबसूरत सफ़र रहा ख़त्म होने को चला शाम के 6:30 से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बार फिर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करते हैं इस सफ़र को आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा जितना हमने किया। आपका प्यार भरा साथ हमें यहाँ पर सभी लिसनर्स से मिला, साथ ही टिकटॉक के हमारे फॉलोअर्स के ज़रिए भी जो साथ हमें मिला इसके लिए शुक्रिया। जल्द हमारी आपके मुलाकात फिर होगी। जाते जाते ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम हम करते हैं। 9:00 जो है आप सुनेंगे सीधा प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस से। तो रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही साथ देते रहिए, हमें सुनते रहिए। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। अभी के लिए नमस्कार आप सभी को, गुड नाइट एंड हैव अ लवली लिसनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन।

परवीज़ा का साथ है उर्दू नशरियात महफिल शब में रात के 9 बजे तक। मज़ीद सामीन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हुस्न रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे, काफ़ी हो लेकिन हशर तक नाते हजरत का ज़बानों पुर सुखन रह जाएगा। हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा आफाकी उसूलों अदल रहमत अखवत और अमन को अपने माशरती सियासी और तहजीबी ढांचों में राइज करें। ये दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ऐसे रिश्ते में पिरोता है जो ईमान की बुनियाद पर इस्तवार है और जिससे का महवर सिर्फ और सिर्फ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी है। सामीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए एक मुकम्मल और जामा नमूना है। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा सलामत रखे, इत्तेहाद अता फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अतात में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर व ममनून है हम। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षा बंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षा बंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day.

0: भोजपुरी की धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज 28 अगस्त सुख के दिन, बल्कि अब रात्रि हो गए। आप सबको के नमस्ते, सबको के स्वागत भोजपुरी तड़का में। 9:07 होलबा और आज देश भर रक्षाबंधन के रंग में रंगल बा। रक्षाबंधन के मिठास के आनंद उठावता। देश भर में सब कोई के देखते जा जोली जोली कपड़ा पहन के, सब कोई घूमता भाई हिया जाता, या भाई समान जोन भी व्यक्ति बा ओकर से मिले जाता वन। आप सब कोई के रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामना। भोजपुरी तड़का में आज हम किरण आपके साथ देवब शुरू करी जा भाई बहन के एगो प्यार होला गीत के साथ, भैया आने तीन गुजारी।

रात के 9:13 होलबा आप सुनत हवा रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और ई बखत 9:00 जिसे तोहरा बोली 13 हो गल बा और अभी से रात के 11 तक हमने के साथ रहे होला बा। आज हमारा आय के दिन नहीं है लेकिन रक्षाबंधन जब आवेला ऐसन परब त जैसे जानेला एगो पारिवारिक ई परब है, एगो ऐसन त्यौहार है जहाँ पर मेल मिलाप होवेला, जहाँ पर परिवार लोग फजीर से रात भर भेंटालन जा और ऐसन में फेर बदल तो होते रही, वो चाहे काम में रही चाहे घर पर रही। तो ऐसने ही आज हम आपके संगे है और हमके पूरा यकीन बा कि आपके सुरेखा के उतना याद आज नहीं आए, हम उनकर जगह पर आपके साथ देवब, आपके मनपसंद गीत चलावब और अगला गीत आप

सब कोई के नाम, जे लोग के घर में अभी पारिवारिक माहौल चला था, जे लोग हर मेसा से भोजपुरी गीत सुने लजा, पसंद करे लजा, और जे लोग के जो भोजपुरी कलाकार बा उ लोग के हीरो हवन जा, उ लोग के हीरोइन हवन जा। तो चला मॉरिशस में जोन पहला टीम भोजपुरी गीत के धूम मचेले रहल, जोन पहला ग्रुप रहल उ रहल भोजपुरी बॉयज, उ लोग के बनावल ई सुंदर गीत आप सब कोई के नाम।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sangi.

ये उम्मीद करत है जा कि आज के ये प्रोग्राम आप के पसीन आवा था। आज सब कोई परिवार में बैठल हवा जा और मेल मिलाप के घड़ी बा, खुशी के घड़ी बा, ऐसन समा बंधल बा जहाँ पर आपसी प्रेम, आपसी मिठास बांटल जाता। रक्षाबंधन के आज विशेष पर्व बा। आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और

क्रिश हृदय की आवाज में ये अगला गीत के आनंद उठावा और आपके फरमाइश भी अलते आवा था, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपन फरमाइश आप सकबा जैसे जाने ला व्हाट्सएप पर भी भेजे।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट

आज जैसे तोहरा बोलली एगो पारिवारिक दिन हा, एक सुख के दिन बा, फिर वीकेंड बा, ऊपरे से रक्षाबंधन, और आप सब कोई परिवार के साथ हवा जा रक्षाबंधन मनावत हवा जा, और साथ में जो संबंध है, आपसी संबंध, वो चाहे नाना नानी के घर में रही चाहे दादा दादी के घर में, आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। अगला जन गीत चली पूर्णिमा फकीरा, हमनी के देश के दूसरा हीरोइन के आवाज़ में सीता सुहागिन, और फिर एक बाद आप लोग के जितना फरमाइश आवा था वो भी चलते चली।

0: इबखत 9:42 होलबा और अगला गीत चली छोर की मोरिस्वा। ई गीत के सुनने के इच्छा रखत हवन भाई अब्बू। भाई अब्बू बोलत हवन कि उनकर जितना भी, सबसे पहले था आप MBC के जितना भी आपके बहिन बा बोलत हवन, जेकर से भी यहाँ पर बतियाला आपके संपर्क होवेला, सब कोई के आप बहुत बहुत शुभकामना देवत हवा, बहुत मुबारकबाद देवत हवा भाई अब्बू। और आप ये भी कल्पना करत हवा कि यहाँ के जितना बहिन हमने हई सा आपके फ़ोन पर बतियाई ला जा, रेडियो पर आपके गीत चलाई ला जा, आपके नाम चलाई ला जा। आप कल्पना करत हवा कि हमने सब कोई आपके कलाई में, आपके हाथ में राखी बांधत है ऐसा। तो ई एगो ऐसा ही त्यौहार है जहाँ पर धर्म मजहब के कोनो सीमा नहीं बा। वो कोनो भी कौम के रही, कोनो भी मजहब के व्यक्ति रही, भाई बहिन के रिश्ता कहाँ कबो खून मांगेला। यहाँ पर तो अपनापन, प्रेम, मोहब्बत, आदर भाव के जगह है। और यही भाव के साथ भाई अब्बू सब कोई के नाम ई गीत करत हवन। और ख़ास तौर पर अबू अयाज, अफेज़, जहीरा, रईस, कलाचोटी, आपी और उनकर पत्नी के नाम ई अगला गीत।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:50 होल बा, मतलब कि 10 बजे में अभी 10 मिनट कमती बा। और अगला जो गीत चली भाई बहन के प्यार पर, ये गीत बिस्वानी दीपा के आवाज़ में बा। और ये गीत के मांग करत हवन थ्रियोले से ललिता जी, अपन सब भाई लोग खातिर। भाई लोग के नाम बा सुन, सुरेश, रवीन, विदेश, सुनील, ततुन, हरीश और आत्माराम। और आप बिस्वानी दीपा के आवाज़ में भाई भैया बहनिया ये गीत सुने चाहत हवा। अब एक अलावा हमने के सुनत हवन अमृता गणेश पितों से। और अमृता जी ये गीत नाम करत हवन अपन बेटा और बहू के नाम, मीनाक्षी और विशान के नाम, और उनकर नातिन सोनिया परी और अपन बेटी पूनम के नाम। और ये बखत जितना कोई भी हमने के सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत चला था भैया बहनिया। और ये गीत ख़ास तौर पर बुआशेरी के कल्याणी जी खातिर भी, कल्याणी जी ये गीत नाम करत हवन अपन चार गो भाई के। और बोलत हवन कि उनकर एगो भाई अब ये दुनिया में नहीं हवन, ता आप प्रार्थना करत हवा कि आपके भाई के आत्मा के हमेशा शांति मिली, जहाँ भी ऊ होयन अच्छा होयन सुरक्षित होयन। त जैसे देखत हवा ये जोन परब बा, ऊ भाई चाहे ये दुनिया में रही कि नहीं, उनकर आत्मा जहाँ भी रही बहिन उनकरा आशीर्वाद देवेला और उनकरा प्यार भेजत हवन।

भाई बहन के गीत अभी जारी रही, अगला जन गीत चली अयोध्या के राज, सिया मांगे अयोध्या के राज, महेन हरपाल के आवाज में। ये गीत खास तौर पर कल्याणी जी के ओर से, ये गीत के मांग कर ले हवन कल्याणी जी अपन परिवार लोग के नाम, और इमे हवन फूलो और अमिता, और खास तौर पर गीता राधा की सुन।

आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाएं। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाए, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi. और अभी लफलोहा से बात कर लन राजन लक्ष्मण जी और राजन जी बोलत हवन कि अब तो पूजा पाठ हो गल, जितना भी व्रत रहल वो पूरा हो गल, पूर्णिमा भी गुजर गल और अब शादी के जश्न मनावे के बखत चला। बसंत सुपौल के आवाज़ में दुल्हा शादी कर जाला राजन लक्ष्मण जी ई गीत नाम करत हवन उनकर पत्नी माला, बेटी प्रार्थना प्रगति और उनकर बहिन मानती के नाम, साथ में भगिनी उर्मिला तुलसी के भी नाम।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

इबखत रात के 10:36 हुआ था और 11 बजे तक हमने के ये साथ रहा बा 11 बजे तक रही। आप लोग बहुत प्यार के साथ हमने संगीत जुड़ल हवा। आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको के आपके फरमाइश खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लिकॉन फ्लक्स से हमने के सुना थवन अनिता जी बोला थवन जितना भी भाई बहन बा सबको के आप शुभकामना प्रकट करत हवा रक्षाबंधन के। आपके भी अनिता जी बहुत बहुत शुभकामना। और ये जो अगला गीत चला था खास तौर पर अनिता जी के नाम।

चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं, भाई बहन के दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ती। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार आपके रिश्ते में और प्यार, सम्मान और खुशियाँ लाए। MBC रेडियो की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो रंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi. Zindagi ke anmol lamhe, Radio Mauritius ke saath.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi. सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से स्वागत है इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर, किशोर दा और मुकेश दा के गीतों को दिल से पसंद करते हैं, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए एक खास तोहफा है। तो चलिए शुरू करते हैं सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है। इनमें मोहब्बत है, इनमें जज्बात है और जिंदगी के हर रंग छुपे हुए हैं। तो आज रेडियो मॉरिशस पर हम मिलकर सुनेंगे वो गीत जो हर जनरेशन के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। बिल्कुल जी, सुनहरे पल में कुछ गिने चुने नगमे खासकर हमारे प्यारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

हम तो चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचे वो जमाना जब कैसेट चलती थी, रेडियो पर गाने रिकॉर्ड किए जाते थे और हर गीत दिल में उतर जाता था। आज सुनहरे पल में हम उसी खूबसूरत दौर को फिर से जिंदा करेंगे, तो साथ बने रहिए और लुफ्त उठाइए इस संगीतमय सफर का, गिनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आपके प्यार और साथ के बिना ये महफिल अधूरी है। आज फिर हम लेकर आए हैं यादों का, जज्बातों का और सुरों के सजी एक अनोखी महफिल। सुनहरे पल में आपका दिल से तो हमने स्वागत कर लिया। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अगला नगमा हमारी तरफ से खासकर आपके लिए सुनहरे पल में।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

जिंदगी कितनी भी क्यों ना आगे बढ़ जाए मेरी जान, कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें वापस लेके जाते हैं उन दिनों में जब जिंदगी थोड़ी सी मासूम थी, रिश्ते थोड़े से गहरे थे और खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में मिल जाती थी। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं यादों को फिर से महसूस करेंगे, तो बस दिल को हल्का कर लीजिए, मुस्कुराइए और चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर जहाँ पे हर एक गीत हमने कर दी है आपके नाम।

उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आपने आज दिल से एंजॉय किया। फिलहाल के लिए हमारा तो वक्त हो चला जाने का, आप हमें इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, एंड बस ऐसे ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: MBC रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: सर से सरक गई तेरी चुनरी,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी।

ममा के कंच पकड़ मच्छी।

कहाँ जाला बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेस बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।